0: अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना ये नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर और राइट टाइम पे ले, ठीक है? ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वो कैसे आती हैं, जब हम पिछले जो पांच स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें। अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी। ठीक है, सो विद दीज 5 E's यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं यही कहूंगी कि इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा, लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आवर माइंड वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आवर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सलूशन निकाल लेंगे तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, कुछ मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारी दिनचर्या ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं। हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात करें कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, वो इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत 4 अक्षर की स्टेटमेंट है, पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा, और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की, हमारे हाथ में है। अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इंबाइब करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है, वो मैं शिवानी को दे दूंगी, या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ,
2: यस
0: वेरी गुड,
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड,
3: मैम अंजू द्वारका सेंटर से। आज
0: हाँ जी अंजू,
3: का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम आपका, लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है, इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर
0: हाँ
4: इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि
0: हाँ
4: बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है, ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल
4: एग्जाम
0: बिल्कुल,
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। गुड
5: आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम।
0: तुम्हारे
5: आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं। आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया, 15 दिन, 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है। तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी, और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए। हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी, पढ़ के नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहाँ फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे, अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियस आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियस से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक
0: थैंक
5: यू।
0: यू फरा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ऑन ट्यूसडे राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिंपल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वाज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फर्रा रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया, और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फर्रा, आई अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन, आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही। दैट वाज अमेजिंग फरा, यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द
5: थैंक यू
0: कम्युनिटी
5: मैम,
0: वेरी वेल, वेरी
5: ये सब
0: वेल।
5: आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत
5: थैंक
0: अच्छा
5: यू।
0: लगा उस दिन मुझे, डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी, आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी, और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
6: मैम, मैं गरिमा गृहस्थी शशि।
0: हाँ जी शशि,
6: यस मैम, मैम लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं, लाइव हैं, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून।
7: हम जो प्रिपरेशन सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं शशि मैम, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत
8: धन्यवाद
7: मैम। हमने कभी सोचा भी था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गर्ल्स सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना था ना सुनना, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, सती मैम से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम।
0: वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा ग्रह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है और पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये सब औरतें इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना। जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है, ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ?
9: थैंक यू मैम,
0: बोलिए।
9: थैंक यू सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: अब फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है, तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना?
9: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है पिछली जब लाइफ याद करती हूँ ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई मैं। बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। Sana, you also came online and then you closed. Yes.
10: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
10: How are you, ma'am? Happy Eid.
0: Happy Eid to you all. सबके परिवार को बहुत मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज मुझे पता।
10: Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the session, for taking out time. हम लोगों के लिए इतना time निकालने के लिए thank you.
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
10: मैम। एक्चुअली ये सेशन होता है इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो, वीडियो कॉल पर हम दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: और बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपनी थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स

0: हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
1: वेरी ट्रू मैम,
0: थैंक यू सना,
1: थैंक यू
0: थैंक
1: मैम।
0: यू।
2: मैम मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रेवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल। जो जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है, सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और शायद ये लोग ही मुझे एनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सुमित, बस में सेशन सुनने का थैंक यू सो मच, थैंक
2: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक
0: यू,
1: यू मैम।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक और सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।

एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में. आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है. फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आपको अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं. चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है. ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं. तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं. सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स. तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इसे सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए. उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं. क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन

0: भी हैं, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली. जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं. तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा. तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ, अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है. अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे. तो देखिए, जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में. या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं. सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं. फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं, ठीक है. कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं. फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसीज आती है. तो ये एक स्किल होता है. तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं. तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं. तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहां पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे. जो सी टेट होता है, इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक के टीचर आप बनते हैं. और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है. तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद में होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक. तो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है. और ऐसे ही जो 9th से लेकर 12th तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं. तो 9th से 12th तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, 6 to 8 में टीजीटी, और क्लास 1st से लेकर 5th क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं. अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है. सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में. क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है. मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती है, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है. अब हम सबसे पहले ये समझे कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है. सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. और सीटेट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है. अभी इस साल कोविड-19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है. बट जनरली सी टेट का जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए. तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सी टेट का एग्जाम होता है. इसमें 2 पेपर आपके होते हैं, 1st is paper 1, 2nd is paper 2. paper 1 जो आपका होता है वो होता है क्लास 1 से 5 के लिए, और paper 2 होता है 6 to 8 के लिए. इसका मतलब अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं. तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे paper 1 और मैंने अनम्यूट कर दिया है. तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, paper 1 और paper 2 अपीयर करते हैं. दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं. जैसे आपको क्या होना चाहिए, 12th में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो 12th में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और 12th विद 50%।
1: सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो 12th में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो फाइल करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सी टेट आपने क्वालिफाई करना है, और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सी टेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे एक, वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सी टेट के बारे में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सी टेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में
0: उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे देखेंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि 12th के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये 12th के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप 12th के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशंस। आप अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती है, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती है, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए हैं,
1: जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबव। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एनटीटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो इसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं, इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एचटेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एसटेट 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 ईयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एसटेट का आपको पैटर्न बताऊं। एसटेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है चाहे पेपर 3 है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर 1 देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर 2 देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर 3 देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम जो सब्जेक्ट का पैटर्न है, कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती, आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं।
0: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हैं, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एस एस साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपीयर करते हैं, ठीक है। तो एसटेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एसटेट का पेपर होता है, एसटेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एसटेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एसटेट सीटेट एसटेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी इसको 7 साल के लिए कर दें तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज आल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एसटेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में रीट 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एसटेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडी रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में यूपी में राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है
1: ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और वेन यू गो इन टू द साउथ। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर वन है, ऐसे ही आपका पेपर टू होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर टू होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, तो ये रेगुलर अफेयर है। हर साल दो साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप दो तीन चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो ट्वेल्थ के बाद आप कुछ ना कुछ अपना जेबीटी करिए, चाहे आप बेटे एनटीटी का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप डीएलडी करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल थ्री की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल टू में तो वो साइंस और एसएसटी में च्वाइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली एट्थ क्लास तक का मैथ्स करना है, एट्थ क्लास तक की आपको साइंस करनी है, एट्थ क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी टू इयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको दो साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो पांच साल ट्वेल्थ के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको ट्वेल्थ के बाद कम से कम फाइव इयर्स लगाने पड़ेंगे, तीन साल का ग्रेजुएशन और टू ईयर का बीएड। और वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम सेवन ईयर ट्वेल्थ के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं, कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है,
0: बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है, और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे। महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, या आपका जो आरटीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना। वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया, जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है। जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती हैं। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है। हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनकी भी वैकेंसीज आती है। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये एक सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेट मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया अब कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेट तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती हैं, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले जैसे मैं आपको बताऊं आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसी आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था, फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई। अब पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो जो टीचिंग की वैकेंसीज है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना अपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है तो आप वहां अप्लाई करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उसपे होते ही है। डीएसएस की वैकेंसीज आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसीज आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशंस पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वहीं फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती हैं, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती हैं जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है तो आपको बीएड करना मस्ट है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के, तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है। एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं, और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है। वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशंस पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने बीएड नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर। तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
2: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। exactly, कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है। ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है।
2: नहीं है,
3: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप कहते हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
4: गुड आफ्टरनून सर, फरा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सी टेट का एग्जाम है ना वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सी टेट करेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करना है आपको।
4: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सी टेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी तीन नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी, हाँ जी।
4: मैं पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद सुपर टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जब स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
4: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये? यूपी का
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है तो मतलब आपका चल जाता है, पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें क्योंकि देखिए क्या है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सी टेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
4: अच्छा सर, जो सुपर टेट है यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी
4: जी।
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई है, फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है। जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है, पहली चीज। ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको टू ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है? क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, तो वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है, और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज आने की उम्मीद नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन दो सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी बोल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर, ठीक है। क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो टू टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है, तो वहां पर आपका चल जाता है। मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें, जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए नहीं, वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज। तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज, और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है। तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन में नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है, किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करने
0: इतने अच्छे से
1: जाती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: है।

0: तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो। तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझे पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर
1: थैंक
0: लगता है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम। मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं?
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून।
1: आबिदा रामपुर कलकत्ता से।
0: अच्छा आबिदा जी,
1: जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी। बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है, इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है। इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं? कोई बता सकता है क्या होता है अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कॉन्टैक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है, और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है, और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम

0: ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा क्लास भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे ही आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं, और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ, या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
1: नमस्ते
0: नमस्ते ईशा जी।
1: मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में, कुछ बोलने के लिए असेंबली में कि कुछ पोयम सुनाओ, तो बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते। अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, ना एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है, या दूसरे जो टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है, जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं, बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें पब्लिक स्पीकिंग. मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है. अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है. मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है. इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो ही सच है. हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए. अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे. अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से, तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा. अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए. जब आपको पता है आपने क्या बोलना है, तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि आ, आ, सोचेंगे नहीं. ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं. अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं. तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है. तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ. तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं. ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है. जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं. बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें. अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं. आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ. और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है. कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं, या ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है. जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज. तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए. इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है. तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी थी कि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
2: यस मित्र जी, वेरी नाइस
3: जी मैम।
4: यस मैम,
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
4: यस मैम,
3: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे ना आपने, छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं, किसी ने देखा है क्यू कार्ड, क्या होता है क्यू कार्ड?
2: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है, छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने, पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना। तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे पांच या छह क्यू कार्ड्स रख लेती ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये पांच पॉइंट लिखते हैं अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जांपल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
5: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी
5: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए तो वो गलत नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को दो सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना। और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था, तो अगर आपके टॉपिक में छह पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो यू कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
5: की,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है।
5: जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट कवर करने में। अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके दो तीन दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
5: थैंक यू मैम।
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
6: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं कर रही थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं बातें कर रहे हैं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं. उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर.
0: फियर ऑफ जजमेंट.
6: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं. Absolutely. और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके, आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस. बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही अपनी चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने.
0: है ही नहीं, बिल्कुल. जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके. लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे. उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे. बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवरपावर किया. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में खवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही. अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं. आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए. उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए. अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे. आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ. दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए. अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली. प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं. बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ. ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे. कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए. एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी. अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे. खाना खाइए, हल्का खाना खाइए. अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं. अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए. पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताई, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे. नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा. टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली. मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है. अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं. कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं. मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए. हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है. हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो घबराइए मत. अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत. स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस. सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा. बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए. ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है. बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते. वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट. तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं. जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है. तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा, वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाएं. बहुत इसपे पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं. अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए. मेरी आदत है, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग, 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजिशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कॉन्टेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कॉन्टैक्ट, मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है। अगर ऐसा है तो आई कॉन्टेक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टेक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए, ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट है वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं, बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था, आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए, पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है, हमने पीपीटी पे बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में। आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये प्रैक्टिस से ही जाएगा। और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है, 75-80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पर काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। मेरे पास कोई शेर वशायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो।
7: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: यस अंकल।
7: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है। इन तीन या चार मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में, पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
8: मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया अभी जब हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम आई रिमेम्बर दैट सो दैट आई एम फेंट बट आई कैन से देन यू हेल्प मी सो मच even speak your name, your family about all that, and after that day ma'am I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है जो मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा मुझे लगा ये क्या है, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है। आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है। रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है तो उनको भी है। वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई। तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
9: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता क्योंकि जैसे हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं, बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई। मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई।
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ, डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा तो वैसे ही रहेगी, उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी।
9: जी मैम इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं,
0: एग्जैक्टली
9: exactly. मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती।
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो दूसरे के पास नहीं है, जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं?
9: हाँ जी मैम।
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ, बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है। आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो। अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही, नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
1: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल देती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। तो
0: गुड इवनिंग पहला
1: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत दगदग, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात ना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इस पे आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
6: आई थिंक शायरी भी करती है
0: परा शायरी
6: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
1: जी।
0: और उनकी जो
1: जो सुन भी नहीं रहा है ना, मुझे मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: एब्सोल्युटली, किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ।
1: ऐसे भी मिला था मैम, हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: तो क्या तो आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
1: हाँ मैम, मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मामा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी मैं कैसी लग रही हूँ?
1: मैम भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था, तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा।
1: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई लाइक दैट। दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
10: जी मैम, जैसे ट्रेनिंग में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सत्र में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं, अक्सर शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया। तो भी कोई भी, जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th की लड़कियां हैं, वो करीब 17 या 18 से ऊपर होती, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत न बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना है, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है। अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माई वर्क डन। सो प्लीज ये शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा। शीशे के सामने मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रुक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
somehow we are able to realize our dreams, somehow we are able to ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं, राइट? तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर, ऊपर टॉप में पहुंच गए. एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहते हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं.

कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर। तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी, और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा। पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से। इज बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं। पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेस करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटीज को चेस हम तभी

0: सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन। ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन, they can see into the future, they have a clear exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. Maine bahut simple words mein pehli do slides mein bataya, ye definition hai ki great leaders vision hoti hai, hum bahut der se baat kar rahe hain iski, they can see the future, wo jo main ray of sunlight ki baat kar, they have a very clear exciting ideas, unke ideas bahut clear hain, bahut excited hain, and they are going where they are going and what they are trying to accomplish wo unko sab clear hai, and they have very excellent, very good strategic planning also. To jo leaders hain unme ye sab hunar hai aur in hunar ko shape deke wo kaise aage badh sakte hain वही विजनरी कहलाते हैं। दूसरा क्या है? करेज। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टावर पे क्लाइंब कर गया। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स With no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ। क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम ICT प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं। तो करेज था कि हम कैसे करें। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, because we are taking the risk. Why risk? Risk is not only for my own job, risk is for the work the whole all the centers of Read India is doing in India. They are reaching to 400,000 plus people. Unka kya hoga, wo kaam kahan jayega, wo goal to achieve karna hai hame, to wo collective goal hai jo hame achieve karna hai, to hum risk bhi le rahe hain, राइट और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की। मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं। क्या है? ट्रस्ट है। क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने, जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला। तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो। दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता। आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड। समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट. राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. Because if you have this humility as your personality trait, then the response is 100% sure. You will definitely get the response. उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. The best qualities में तीसरा आ रहा है ये strategic planning. Leaders have the ability to anticipate trends well in advance of their competitors. कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं. एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months or 1 year or 2 years. They do this through thoughtful strategic planning. For example, अब आप सब लोग production units भी चला रहे हैं और vocational centers भी चला रहे हैं. अब आने वाले time में जो NGOs policy level पे काम कर रही हैं उनको funding नहीं मिल रही है. Because सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि grassroots में काम चाहिए. राइट? तो हम लोग क्या हैं, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉर्ट्स एंड मेक श्योर दैट एवरी वन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ देयर टाइम इज एसेंशियल टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट। द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन, गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलॉन्ग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे। रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that. Right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट। लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको, अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट, दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है, पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के, फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट, और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है। तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहेगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं, हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम, हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन 3ों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट। हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने की जरूरत है, राइट। बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको, ठीक है? 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज्ड फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स। आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा
0: पता
1: कोई
0: है
1: चीज हो जाती है, घट जाती है।
0: क्यों बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना
1: जी
0: सुनने
1: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया,
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसा सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी,
2: जी
0: डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको, हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने के, राइट।
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
2: यस मैम
0: थैंक यू सो मच, और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट, बिकॉज
3: राइट मैम
0: लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकेनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम वेल्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती दो चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतनी ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।

0: प्रयासों की बुनाई सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

प्रीति लता फातेदार एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों के शासन में जीना तो दूर, उनके या उनकी पुलिस के हाथों मरना तक गवारा नहीं था। प्रीति लता का जन्म सन 1911 में चटगांव में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है। कोलकाता के बेतुन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो चटगांव के बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। यहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन से हुआ, जिन्हें लोग मास्टर दा कहते थे। मास्टर दा से ही उन्हें पिस्तौल चलाने का विधिवत प्रशिक्षण मिला। जून 1932 में चटगांव के एक मकान में अंग्रेजी सेना ने मास्टर दा, प्रीति लता और दूसरे क्रांतिकारियों को घेर लिया। घमासान मुठभेड़ में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। प्रीति लता सूर्य सेन के साथ बच निकलने में सफल हो गईं। पुलिस ने प्रीति लता की सूचना देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा कर दी। अखबारों में जब उनकी तस्वीर छापी गई, तब उनके माता पिता को उनके क्रांतिकारी होने का पता चला। इस घटना के बाद प्रीति लता का कद क्रांतिकारियों के बीच बढ़ गया। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। 24 सितंबर 1932 को मास्टर दा ने प्रीति लता को एक जोखिम भरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। ये कार्य था पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर हमला। पुरुष वेश में प्रीति लता अपने युवा साथियों के साथ पीछे की गली से क्लब में घुस गईं। क्लब के लगभग 50 सदस्य नाचने गाने में मस्त थे। प्रीति लता और उनके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए। हमला इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक यूरोपियन महिला मारी गई और कुछ लोग घायल हो गए। दोनों तरफ की गोलीबारी में जैसे ही एक गोली प्रीति लता को लगी, वैसे ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने घेर लिया। वो जिंदा पुलिस के हाथों नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत साइनाइड की गोली खा ली। इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष किया और हमेशा के लिए धरती की गोद में सो गईं।

0: में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माई स्लाइड्स। जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है, या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है, या फिर उनको पहले से वो आती थी, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है, या वो सीख रहा है या सीख रही है, या सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। लेकिन
1: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी, जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में हम डिलीवर नहीं कर पाते जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा, और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में, या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बार हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते, या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने हाव भाव को या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में। पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है, मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या वन टू वन जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है? जॉब इंटरव्यू बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है। तो खासा ये जॉब इंटरव्यू क्या होता है?
1: मैम
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: आकांक्षा,
0: जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा?
1: महाराष्ट्र।
0: महाराष्ट्र जी
1: मैम,
0: बोलिए।
1: जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत

0: मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, कौन इस जॉब के लायक है।
1: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपियर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
0: मैम, मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
1: तो आप
0: इट्स
1: बिल्कुल
0: लाइक
1: सही।
0: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सुटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है? अब हमारे सामने एक केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है। तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं करा। आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून जी।
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर।
1: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
1: सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए।
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है।
1: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवेल्युएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा? हाँ
2: हेलो मैम, रेनू
1: जी
2: बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा सेंटर से। नमस्ते
1: नमस्ते रेणु जी, बताइए।
2: मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार मैसेज आया है, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है।
1: वेरी गुड।
2: और आई
1: तो
2: थिंक सो
1: हमारी
2: जी।
1: दो या तीन चीजें आ गई। पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे। वेरी गुड। सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम
1: गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं?
3: जी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनालिटी इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं, और अवेयरनेस अबाउट द जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग रिटन भी हम देख सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारी जो स्कूल था प्री स्कूल का, उसका एक इंटरव्यू किया था। तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था। एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं। हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते, या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते। तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स। और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने पॉइंट सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है, वो एनवायरनमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता. इट्स अ टू वे प्रोसेस. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं. कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं लेडीज जा रही हैं उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा हक बनता है कि आप देखें, इवेल्युएट करें अपनी सूझबूझ से. सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है. बट यू हैव टू इवेल्युएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट, कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और सामने वाला एज एन एम्प्लॉय, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया. ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है. हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इतने सवाल पूछ रहे हैं. आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए. बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा. वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था. लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, कोई एडवर्टीजमेंट होती है या कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है, लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए. बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती हैं कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए. कई कई जॉब्स ऐसी होती है जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे. जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए. तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे. अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए. तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं. आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए. बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा. तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं. बट जो भी बात कहें उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए. जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुटअप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है, ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है. उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं. तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए. अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना रिसीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं. आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले. कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था. आपको प्रिस्ट में बताना है. गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है. कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहेगा. अगर 100 लोग बैठे हैं यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर. बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है. कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए. इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में. आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं. ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं. आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ. किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है. सैलरी कितनी लेंगे, हम लोग हिचकिचा जाते हैं. कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे. तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं. कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं. ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है. तो आपको ये पता होना चाहिए. इंश्योरेंस होती है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा. 3 months का प्रोबेशन होगा, 6 months का प्रोबेशन होगा. जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 months का प्रोबेशन था. 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद उसी बैंक में 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद 6 months का प्रोबेशन था. तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 months का हो गया था. बट दैट्स देयर रूल. किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं. बट डोंट गिव अप. हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है. इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं. अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी पर्क सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे. So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. और लेकिन basic question prepare करके जाइए लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए. अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पर practice, उस पर focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है. हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन के साथ या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं या कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप मॉक इंटरव्यू करिए. अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वाले उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चंस हमने बोले एक इंटरव्यू और बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए. कोशिश करिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यूअर मत बन जाइएगा. आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए. आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे ही रहता है. कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदी होते हैं क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं. उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है. जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसकी लेक्चर की, जो भी टॉपिक होता है प्रिपेयर होती. क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते. तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से या कैमरा से खड़ा करके किसी जगह पे, आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है. बहुत जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें. अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे. अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स है उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं. आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से. और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए. जस्ट अ सजेशन, नो There is no right or wrong, but as a mature person, हमें किस तरीके से अपने आप को professionally show करना चाहिए या conduct करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. But पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे iron करना है iron करके रखिए, देखिए उसमें कोई button तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पले पहनना है, shoes पहनना है, पूरा एक दिन पहले prepare करके रखिए, ताकि आप mentally और physically prepared हो. आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज. इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे. हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज. आप जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मत करिएगा कि उसने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी. जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं, उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं, और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी. तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट. आपको आता है, नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है. बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू. तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल, या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी. अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोलें तो सही बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पर ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए. लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवैल्यूएट हो रहे होते हैं, या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं. तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम करते हैं, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे. और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है. आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं. रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें. तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी. बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा. आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें। मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो। कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इनमें, मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग।
2: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है।
1: इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट?
2: मैम अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट।
1: करेक्ट हो सकता है। क्या होता है कि कई बार ही ना, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100-100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है। जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे। ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा। तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये HR वालों का काम होता है। तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी। आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना हो के बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है तो आप इंटरेस्टेड लगिए। अब ये जो लास्ट में फोटो है ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है। उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया। तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देखना देख रहे हो, या आप CCTV लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कैसे रखते हैं? ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत। नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वैसे आप बैठिए। कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग। कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करें जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है, जस्ट ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंप्लिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है जो आप पहनने वाले हैं आप पहले से डिसाइड करके रखिए, थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन आल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये है कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं, कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू नो यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई है, लेकिन साफ शर्ट डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उसमें जाती कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड एज अ लिटिल बिट मोर मैच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन, फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए। ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाएं, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए, कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है। आप अपनी नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है, ट्राई and stick to clothes that you are most comfortable in. कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए। कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो, बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का। आप देखिए वो IAS के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं, ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने CV में लिखा है उस पे एम्फेसिस हो, उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे। अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। आपका हेयर स्टाइल जो है मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं. अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा. ट्राई एंड नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी. आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए. बेसिक बेसिक जो चीजें हैं आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आई लाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए. इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम वॉट यू आर सेइंग. दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट वॉट यू कैन वियर. किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे. वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स. मैं टाइम देख रही थी कि मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ. अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है. जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें. सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है. प्लीज अवॉइड दैट. जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं. या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है. अवॉइड करिए. अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं. हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर. या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ. तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है. अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो. हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को. कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है. ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग. यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट. आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं. डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज. पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर. We should follow those things. कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है. आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है. तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है. मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती है. तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है. हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ. बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ. अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रही है, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं. हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए. आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए. ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं. प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर से मैं कह रही हूँ, कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है. कई बार HR के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि सारे जो एचआर के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे, तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा. ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है. अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए. अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ या मैं जल्दी सीख लेती हूँ. अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा. बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते. कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए. ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ कहने के लिए, जॉब्स एक्वायर करने के लिए नहीं. अगर आपने एक बार कमिटमेंट करिए तो आपको सीखना भी पड़ेगा. सो इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन से दैट आई डू नॉट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बट आई कैन डू द रिसर्च एंड गेट बैक टू यू. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं पता है. अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए. आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं. एक अच्छा सा, महंगा नहीं, अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए. फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए. कोई पूछता है, कोई मांगता है तभी उसे दिखाइए. बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेस करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है. आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं. बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है. तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी एचआर में जमा कराने पड़ते हैं तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं, मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए. अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है. कौन फॉलो अप करेगा, नहीं करेगा, हैंडी रखिए. कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए. अपना आई कॉन्टैक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ. हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था. इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है. बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रश अप करके जाएंगे. टैली का इंटरव्यू है, आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे. हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है, आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं. आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है, आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ. आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा, बट जो एज ए नर्स, एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा. आप टीचर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए. जो हम सैंपल रजिस्टर वो बनाते हैं, आपका रजिस्टर, उसको साथ लेके जाइए. अगर जैसे कि मैंने बताया वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए. अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में, आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए थोड़ा फर्क पड़ता है. रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं. ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता. रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है, आप प्रेशर है, लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब टेंथ जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरनमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए। आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपीयर होंगे, एंड योर रेफरेंसेस आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेस होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती आपको सुइंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती आपको स्टिचिंग एंड सुइंग है, या स्टिचिंग एंड सुइंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड सुइंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते टैली आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर। नो, दैट वॉज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है? अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है, तो आप बोल सकते हैं कि देखो बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज ए प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया। एमएस ऑफिस क्यों हमेशा? क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। बेसिक इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमें उस इंग्लिश में बात नहीं करनी। बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आए, आपने बोली मेरी समझ में आए, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वाज इट। आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है। आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं, तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे।
4: थैंक यू सो मच मैम।
1: बाय बाय।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है यूपीआई के 10 वर्ष, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक अहम माध्यम बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया यूपीआई अब अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 10 वर्षों में यूपीआई के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए वार्षिक लेन देन की मात्रा 1,78,00,000 थी, वही वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री बताते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये नीति, प्रक्रिया और वितरण का एक शक्तिशाली संगम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।
1: तो सवाल है, यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को किस तरह बदला? छोटे से छोटे दैनिक भुगतान से लेकर बड़े धन हस्तांतरण तक इसकी भूमिका कैसे बढ़ी और भारत का ये डिजिटल भुगतान मॉडल किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और व्यापक बनाने में यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूपीआई का ऐसा अंतर संचालनीय भुगतान माध्यम है जिसके जरिए लाभार्थी को राशि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इस अवधि में यूपीआई लेन देन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 188% रही। वहीं वार्षिक लेन देन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 155% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन देन की मात्रा में वर्ष दर वर्ष 30% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 84% रही और वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। यूपीआई का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। यूपीआई के शुरुआती महीने अगस्त 2016 में 90,000 लेन देन हुए थे। आज वही प्रणाली एक दिन में औसतन 66 करोड़ लेन देन संसाधित कर रही है। ये बदलाव केवल तकनीकी विकास का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डिजिटल भुगतान किस तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यूपीआई की सफलता को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह के भुगतान में हो रहा है।
1: यूपीआई ने भुगतान को केवल तेज और आसान ही नहीं बनाया बल्कि छोटे छोटे दैनिक भुगतानों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुकान पर भुगतान हो, किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हो या किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान करना हो, यूपीआई ने इन सभी को एक ही डिजिटल ढांचे से जोड़ दिया है। लेकिन यूपीआई के लेनदेन की प्रकृति क्या है? पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेनदेन में क्या अंतर है और छोटे भुगतानों में यूपीआई की भूमिका कितनी बड़ी है? आइए सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
4: यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यापक और विविध इस्तेमाल। यूपीआई के लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन कुल लेन देन की मात्रा का 63% है। इससे पता चलता है कि छोटे और बार बार होने वाले खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन मूल्य के मामले में सबसे अधिक है। कुल लेन देन मूल्य में P2P की हिस्सेदारी 71% है। यानी UPI एक तरफ रोजमर्रा के छोटे खुदरा भुगतानों का माध्यम है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच बड़े धन हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वहीं P2P लेन देन में 59% भुगतान 500 रूपए से कम के थे। इसके साथ ही 500 रूपए से अधिक लेन देन की हिस्सेदारी 41% रही। यूपीआई ने डिजिटल विभाजन को कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। लेकिन यूपीआई की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आज यह कई देशों में संचालित हो रहा है और सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है।
1: भारत में शुरू हुई यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई को लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। तो किन देशों तक पहुंच चुका है ये यूपीआई और आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है? आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
4: वैश्विक मंच पर यूपीआई और डिजिटल भुगतान का अगला दशक। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरू हुआ यूपीआई आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यूपीआई की अभूतपूर्व वृद्धि, विश्वसनीयता और अंतर संचालनीयता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। भारत में यूपीआई के जरिए हर दिन औसतन 66 करोड़ से अधिक लेन देन संसाधित किए जा रहे हैं। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। यूपीआई अब सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यूपीआई 11 देशों में संचालित है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल है। इसका अर्थ है कि यूपीआई का प्रभाव अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है, ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की वैश्विक पहुँच को भी दर्शाता है। यूपीआई की सफलता को केवल लेन देन की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसकी बड़ी उपलब्धि ये भी है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों और व्यापारियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को यूपीआई पारितंत्र में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।
1: भारत में यूपीआई के 10 वर्ष डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कहानी बताते हैं। यूपीआई से जुड़े सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 44 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 703 हो गई। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाना यूपीआई के अगले दशक की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस

सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था। जैसे देखिए, अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है, तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है, वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें, तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा हम ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस।

0: होता है, वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती हैं, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस है डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमाज की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहाँ से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है। छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है। आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्रिटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमा होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। अब देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे, हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया, और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है, हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते हैं एक तरह से, ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मई हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना एनसीआर एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजिली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी है जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ COVID-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूँ, जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो, अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है, भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो तो ये भी एक स्कोप रहता है और हर स्टेट में पेपर होता है। मैंने तो हरियाणा का आपको बताया, जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही डीटीई केरला के अंदर होता है। वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है, एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी, गेल, इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है, ओएनजीसी में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की, तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है, तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे आर दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड, जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर, जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस 2 करके भी, जैसे इंडो डेनिस टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके, प्लस 2 पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस 2 करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है। ठीक है, वो एक स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट, जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं। एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं, और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती हैं, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है 10th पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे खाने का सही तरीका और कुछ खास टिप्स। ड्रमस्टिक, जिसे मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है, एक पौष्टिक पेड़ का फल है। इसके पत्ते, फल, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में एक वरदान माना गया है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ड्रमस्टिक के स्वास्थ्य लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। ड्रमस्टिक में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। ड्रमस्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रमस्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी। ड्रमस्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप। इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर। ड्रमस्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय। ड्रमस्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, हालांकि ड्रमस्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे ड्रमस्टिक के अद्भुत फायदे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक पेड़ है जिसके नीचे सिंदूर से रंगे हुए कुछ पत्थर रखे हैं। ये पेड़ और ये पत्थर स्मृति हैं उस शख्सियत की जिनका नाम महान देशभक्तों में प्रमुखता से लिया जाता है। नेपोलियन की तरह सैन्य दृष्टि रखने वाले इस क्रांतिकारी ने इसी पेड़ के नीचे फांसी के फंदे को गले में डालकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। 8 अप्रैल 1859 का दिन था जब पहली बार इस नरकेसरी को अंग्रेज गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। 15 अप्रैल को सैनिक अदालत में न्याय का नाटक रचा गया और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। एक देशभक्त की देश के प्रति मोहब्बत की पराकाष्ठा की दास्तां।

नासिक जिले के यवला नामक स्थान पर 1814 में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामचंद्र राव। बालक के पिता पेशवाओं के धर्मगुरु थे। वेदपाठी ब्राह्मण पिता ने बालक को पुरोहिताई की शिक्षा देनी चाहिए, पर बालक तो स्वाधीनता क्रांति का इतिहास लिखने के लिए ही जन्मा था। शस्त्र विद्या में उसकी निपुणता को देखकर बाजीराव पेशवा ने उसे एक रत्न जड़ित टोपी प्रदान की और इस तरह रामचंद्र राव तात्या टोपे बन गए। वो तात्या जो युद्ध भूमि में ही आगामी युद्ध की रणनीति बना लेते थे। विलक्षण गुणों से युक्त विलक्षण मानव।

1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने कानपुर को अंग्रेजों से वापस हासिल किया था। झांसी की रानी की सहायता के लिए वे कालपी

पहुंचे थे और ग्वालियर पर अधिकार करके स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। छापामार युद्ध शैली के लिए विख्यात तात्या टोपे का नाम क्रांतिवीरों में खास उत्साह पैदा करता था। एक ओर वे महारानी लक्ष्मीबाई का आदर्श थे तो दूसरी ओर आदिवासी जननायक टंट्या भील और भीमा नायक भी उनके शौर्य को प्रणाम करते थे। एक बार भीमा नायक ने जंगलों में भटकते हुए तात्या टोपे को पावन सलीला माँ नर्मदा को पार करवाकर अपने आप को धन्य किया था। धन्य है तात्या टोपे, धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है इसके क्रांति।

हमारे देश की आजादी की लड़ाई का लंबा इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासघातों से भरा पड़ा है। तात्या टोपे को भी विश्वासघात का शिकार बनाया गया। विश्वासघात से की गई गिरफ्तारी और न्याय के झूठे नाटक के दौरान तात्या ने अपने आप को अंग्रेजों का प्रजाजन मानने से इनकार कर दिया। उनके कर्तव्य पेशवाओं और मातृभूमि के लिए थे। उन पर चलाया गया मुकदमा उनकी नजर में एक ऐसा स्वांग था जिसे चलाने का अधिकार अंग्रेजों को कतई नहीं था। इतिहास के निष्पक्ष विद्वान उनकी इस सोच से पूर्ण तरह रजामंद नजर आते हैं। हिंदुस्तान एक मातृभूमि, तात्या टोपे एक धरती पुत्र, अंग्रेज कौन, खामखा।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: Ministry, I would like to call Dr. D.V. Singh, former Chief Librarian, Delhi University, for sharing his views.
1: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते हैं कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम करती है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉप किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वॉर एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वहीं था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है यूज एंड मिस. अब बहुत सी बात है, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, श्वेत लाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया आ गई, यहां ब्रिजेश सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां आपके पिताजी किसी पे विश्वास नहीं करते थे, आप एक सत विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे की? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी. वो कैसे? कि बस मैं जाती थी लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखती थी, और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता था, मैं सर्वाइव की. तो इसका लिए तो तय होगा कि लाइब्रेरी स्ट्रेस को खत्म करती है, तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है. और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है. शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है. मेरी समझ में आता है, ये आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं? ये कहां जाएंगे, क्या होगा? मेरे गांव का आदमी आया, बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी माँ, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली? लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा, रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का? जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब हो. बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की भी इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा. और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में. रिपीटेटिव जॉब क्या है? क्लासिफिकेशन, वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है. कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है, वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं. एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम. कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मां ने, मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है, और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुई है, वो मशीन उनको खत्म कर देगी, और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए. डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नो हारी की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक. हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ हो जाए तो टाइम बता दीजिए. कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है, और बोलने वाले की सबसे बड़ी समस्या भी समय की. उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो. तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं. ह्यूमन इज ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन, मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन। डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए। अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, वो घटना में बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में ही एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं यूं, जो भी कुछ उनका है उस पर, मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। तो मैं सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेता है, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है। बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वर्ण मन निधि ध्यास, सुनना, कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या मैं आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है, उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य निधिध्यासन तो उस पर आचरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चा था, आंख से देख लिया, विचार नहीं कर सकता था कि विचारिक शक्ति उतनी विकसित हुई नहीं थी, और मैंने आचरण कर लिया। अब रिजल्ट क्या निकला, घर में सबने डांटा, पिटाई सिताई भी, उन दिनों थोड़ा पीटना एक अधिकार और साधन समझा जाता था सुधार का, आजकल तो सजा का साधन है वो, और कहते हैं इंग्लैंड में तुम अपने बच्चों को पीट दे तो जेल चला जाता है, वो अलग विषय है, सुना है सब, देखा भी है कई बार, नहीं माना। स्कूल में उस दिन सारे टीचर नहीं आए थे तो हमें किताब दे दी, और किताब मैंने जब पढ़ी, बच्चों की किताब थी, वो आई थी उस समय सेंटिनरी ईयर में, पिक्टोरियल थी, तो उसमें लिखा था गर्दन हिला के पढ़ने से बुद्धि भी खराब होती है और आई साइट भी खराब होती है, और मैंने वो बंद कर दिया। तो किसका प्रभाव था, लाइब्रेरी की किताब का। और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोगों जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में, बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लू। तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है। और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान है, यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते हैं, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ, होते आते 2009 में जाकर के ये काम NCER को, नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च जो है ITU पे, उसको दिया गया, और NPT के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई, बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है। अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ, उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पर क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ। ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, NPT से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए। सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या, एक ही चीज रिपीट होती रहती है, मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए। जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट इसके फेवर में नहीं हूं। अनइंप्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है, व्हाट इज दैट, ये जो आज चैन छीन रही है ना, आप 3 मिलियन महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए, और जब वो पकड़े जाते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनइंप्लॉयड है। अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, पोस्ट तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी और सच्चाई भी है, मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में, मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे सारे शास्त्र, उनको सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझूं, एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में, एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहां। जब गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो, उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहां बंधवा लो चाहे इसको यहां बंधवा लो, गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा मेरे भी गुरु हैं, चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है तो जस हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइव में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है, किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा, एक दो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनकी लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस जो हैव नोट्स की कैटेगरी मात्र से कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का, पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े किसको किसको दीजिए तो वो गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रही है, एक दिन रोटी खिला दी कब तक, लेकिन स्किल दे दी, वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं मुंह चेहरते हैं, हमने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला कर चले गए वहां कुत्तल पड़ी, यहां ग्लास पड़ा, यहां कुत्ते चाट रहे हैं, यहां मक्खी घूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे, वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूँ अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल को उसके बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा को दे भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा, उसका उदाहरण है। वो एसेंचर के लोग शायद चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी, लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, कौन भी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की, क्यों, क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई किया, एक पार्ट मर गया दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेंगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है, खाली किताब पढ़ा तो कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हुई हैं, एक बहुत बड़ा आदमी है मैम टाइम, ओके नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज इट, ओके। एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया, एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा उसी बात को, उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे हैं आपने कभी, बंदर को देखा होगा यहां बैठा, अब यहां बैठा, यहां बैठा, एक सेकंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा है ना, अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इस बिच्छू को अनावश्यक हमको काटना। मैं मानता हूं एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होंगी। लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंटिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सोशल इश्यू को उसने कहा, कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए। हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे हम लोग, गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना नहीं। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब करूं तो उस कोने में चर्चा होगी, उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर भी खड़ा होकर पेशाब करता है, मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है। यहां तो कहते सन्मुखी, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है, दिल्ली में सन्मुखी, हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया। गांव में ऐसा नहीं है, आज भी कोई मर गया पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता, जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है वो हारमोनी बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा, लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबूजी के कब्जे में, ये जो भी आई है सो तो मैंने बाबूजी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाली रही। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, यानी एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगी राज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर कि क्या यार फिटनेस है कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। वो इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगता जी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है जिन पे नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूखे शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक एक उपनिषद है हमारे यहाँ ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया, गलत हो गया, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा। वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तम प्रविशंति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों? कि उसका अभ्यास नहीं करते, राय बहादुर है अभी बुला लीजिए। जो अंधम तम प्रविशंति ये विद्या उपासना थे, अब ठीक से याद आ, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं अगली लाइन का। क्यों? क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते। तो वो विद्या, वो जो नॉलेज है जिस पर हम व्यवहार नहीं करते, वो अंधकार में ले जाती है। लास्ट में कह के खत्म करूंगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है। हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और लर्न करो, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए। मेरे सिर पे चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है? मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूं? बोले वो कैसे? मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद होता, तो चोटी कहाँ होती है? तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं फेंक कहां सकता हूं? सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती है, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उन्होंने मुझे अरुणाकुलम में बुलाया कोचिंग। हमने कहा यार यहाँ आदि शंकराचार्य जी, एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कार्डी गांव में, जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव वाँव भी देख लेंगे और वहां जाएंगे, उधर से गाड़ी। बोले ठीक है चलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे, अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, 10वीं जगह ऐसा हुआ। मैंने पूछा ये क्या? बोले हाँ ऐसे ही होता है, एक आदमी किताब पढ़ता है बाकी बीड़ी बनाते। मैं इसका क्या होता कि जितना वेज उन सबको मिलता है इतना ही वेज इसको ही अपने में से देते हैं। तो क्या हो रहा था? लर्निंग अर्निंग, किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू। एक आदमी चलिए तुम किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, वो कहानी पढ़ो, सब सुन रहे हैं। जगह जगह मैंने उस चीज को देखा। मैं ये कहां से पैदा हुई? बोले तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग कभी नहीं की। हम क्या हुआ जहाज में बैठे दिल्ली से बंबई चले गए, हिंदुस्तान देख ले, लेकिन पता कुछ नहीं। तो रेलवे पता चलता नहीं हिंदुस्तान का, तो हम हवाई जहाजों में उड़ करके अर्थात ये देखा वो देखा, यहां से वहां गए, बढ़िया सी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई, और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच आपने मेरी बात सुनी। टाइम दिया इसके लिए रीड इंडिया का, धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दो बात लास्ट में, बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता, तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम ही थी गुहामया, जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था, उसने कहा, और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा विमृत, इस हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेष है ना यथेसी तथा करु, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना, सुन लिया विचार करना तो आचरण, यथेसी विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए, अभी भी और जलेंगे। इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूँ, न जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।

0: आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी के जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता।
1: आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए, वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की।
2: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया। माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया, व्हाइल आई एम इन टोक्यो, आई डिजायर टू एड्रेस ए फ्यू वर्ड्स टू यू एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल गिव देम ड्यू कंसीडरेशन।
0: बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है।
1: माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है।
2: आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया शैल बी फ्री।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं। जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपये देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे, हमें ऐसा डर लगता था क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ। और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭീ ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തീ ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണീ ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭീ കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തീ ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തീ ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരീ അപ്നേ ഷോൾഡർസ് പേ ലേ സക്തീ ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭീ റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റർസ് മേ കർതീ ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹീ അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭീ ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റർസ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं बारिश का मौसम आ गया है जिसको हम मानसून सीजन कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मॉनसून स्थिर पानी, मच्छरों और रोग के साथ कई संभव स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकता है। मॉनसून क्या है, चलिए जानते हैं। मॉनसून या बरसात का मौसम मौसम की मिजाज में एक ऋतु संबंधी बदलाव है जो समुद्र से भूमि पर गर्मी, नम हवा, एक निरंतर अवधि के लिए वर्षा की उच्च अवधि बनाता है। गर्मियों के मॉनसून या बरसात के मौसम आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के साथ आता है। आइए जानते हैं कि मॉनसून या बरसात का मौसम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून या बरसात का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य चुनौतियां लाता है। बरसात होने पर हमने कई जगहों पर देखा है कि पानी जो है वो रुक जाता है, नालियों में, हमारे घर के बाहर। इससे क्या होता है कि मच्छरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा है कि बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां भी होती है कि अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें दस्त लगने की भी शंका हो सकती है। बरसात के मौसम में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं।

अगर हम अपने घर के आसपास की सफाई रखेंगे और पानी नहीं जमा होने देंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। श्रोताओं, अब जानते हैं कि भोजन और पेय पदार्थ के साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चे उत्पाद जैसे कि सलाद या फल को भी हम अच्छी तरह से पानी में धोएं। कोशिश करकर हल्के गुनगुने पानी में हम सब्जियों को धोएं। इस समय हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक से अधिक होते हैं। खुद को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी के साथ हाइड्रेट रखें, मतलब कि आपको साफ और सुरक्षित पानी पीना है और इस दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना होती है क्योंकि हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ या साफ रख सकते हैं। अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाथ में छाता होना चाहिए या रेनकोट होना चाहिए ताकि हम बारिश से बच सकें और सूखे रह सकें। कीचड़ में चलने से बचें क्योंकि हमारे पैरों के नाखूनों में ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। खुद को सूखा रखें और गंदे पानी से बचें क्योंकि इनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अच्छे से हाथ धोएं शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये हर दिन महत्वपूर्ण है। यह मॉनसून के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के प्रयास से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर अपने आप को भी साबुन से धोएं। अपने कपड़ों को डिटॉल और डिटर्जेंट में भिगोकर रखें। अपने आप को सुखाने के बाद कोई भी टैल्कम पाउडर अपने शरीर पर लगाएं। इससे हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। श्रोताओं, अपने साथ अपने घर की साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। घर को साफ रखना है, घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने देना है। घर में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से जैसे कि डेटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया उसको पानी में डालकर पोछा लगाना है। घर की सफाई करनी है ताकि हमारे घर में कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो और हमारे घर में कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए। खासकर उन जगहों पे जहाँ पर भोजन रखा है और हमें भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, कोई भी आपकी पेट संबंधी बीमारियां ना हो पाए। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं अनुजा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहा। फरहा रामपुर से आई हैं। फरहा अपने आप में एक कहानी है, एक व्यक्ति हैं जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं पूरी दुनिया की औरतों के लिए, एक ऐसे उदाहरण के तौर पर जो किस तरीके से अपने घर से बाहर निकली, छोटे से गांव से, और किस तरीके से उन्होंने अपने को आज वहां लाकर खड़ा किया है जहां पर वो खड़ी है। तो फरहा आपका बहुत

0: स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार मैम।
0: और फरहा ये बताइए कि बचपन से आप याद करिए अपनी कहानी, आज तो आप काफी बड़ी हो गई हैं, और पहले जाइए बचपन में जब आप छोटी थीं, कहाँ की रहने वाली थीं, घर में कौन कौन था और क्या करती थीं?
1: मैं आगापुर की रहने वाली थी और मेरे चार बहन भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तीन बहन एक भाई हैं और हम बहुत ही मतलब गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, जहां से मैंने इंटर पास किया था। और मेरा गांव वो गांव है जिसमें लड़कियां मतलब आगे नहीं बढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती, सिर्फ घर में ही रह के मतलब इंटर करके पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वाना बनाना है और उनकी शादी कर दी जाती है।
0: तो आपके फादर क्या करते, आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी?
1: मेरे पापा की ड्राई क्लीन की दुकान थी छोटी सी, जिसमें वो प्रेस करते हैं, और मेरी मम्मी उन्हीं के साथ काम करती थी।
0: और जब आप मम्मी पापा पढ़ने जाती थी, छोटी थी जब, बहुत छोटी थी जब पढ़ने जाने लगी स्कूल, तब तो गांव के स्कूल में पढ़ती होंगी। जब आप और बड़ी हुई और स्कूल आगे बड़े क्लास में गई, तो कैसा माहौल था गांव में आपके पढ़ाई के बारे में?
1: पढ़ाई के लिए मेरे जितने भी मतलब आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, और मेरे जो रिश्तेदार थे, वो मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि अब फर्क हो मत पढ़ाइए, काफी बड़ी हो गई है और इतना पढ़ा के करना क्या है, कोई जॉब तो आपको करानी नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जो मुस्लिम इलाका है वहां पर कोई भी लड़की मतलब बाहर नहीं निकलती है। मतलब एक सिर से जो दुपट्टा होता है हमारे यहाँ, बुरखे के बगैर लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। तो वहां पर वो मेरे पेरेंट्स से सभी लोगों ने मना करा, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कि फर्क हो मत पढ़ाइए और यहीं पर ही पढ़ाकर इसकी शादी कर दीजिए।
0: और बड़े होने की वजह से सबसे दबाव आपके ऊपर आया?
1: जी मैम, सबसे बड़ी मैं थी।
0: हाँ, तो ये बताइए कि आज आप कितना पढ़ाई कर चुकी हैं?
1: मैं आज बीटीसी कर रही हूँ, जो बीए भी कर लिया है मैंने इंटर के बाद, एमए भी कर लिया है, एमए के बाद आज बीटीसी कर रही हूँ।
0: तो ये कैसे संभव हुआ?
1: ये मैं एक रीड इंडिया एनजीओ है जिसके साथ मैं इंटर में जुड़ी, और वहाँ पर एक हमारे ही छोटे से गांव में मतलब रीड इंडिया के नाम का एक सेंटर खुला था, जिसमें काफी लाइब्रेरी थी, सिलाई था, पार्लर थे, कंप्यूटर है। तो मुझे वहीं के एक सर ने मुझे बताया कि ऐसे से वहाँ पर वैकेंसी खाली है ईसीटी टीचर के तौर पर, तो मैं वहाँ पर मतलब चुनी गई, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे ईसीटी के लिए वहाँ चुना गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे, मतलब आसपास के लोगों ने मना करा तो सब लोग मना करने लगे, लेकिन मैंने खुद से ही मतलब एक आत्मविश्वास आया कि शायद मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला मम्मी पापा से इजाजत ली कि मैं मतलब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई परेशानी हो या आपका सर मेरी वजह से झुके। तो मैं मतलब उनके विश्वास को मतलब जीत कर, उनसे बहुत अच्छे से वादा कर कि मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी, तो उनसे मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके उन्होंने उस चीज के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है आप सीधे सेंटर जाओगे, सेंटर से घर आओगे, उससे आपको किसी से मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सेंटर से जुड़ी।
0: तो कितना साल हो गया है सेंटर से जुड़े हुए आपको?
1: मुझे आज 6 साल हो गए सेंटर से जुड़े हुए।
0: क्या किया है इस बीच में? आप तो ईसीडी की टीचर के तौर पर छोटे बच्चों के संग पढ़ाने के लिए आप जुड़ी थी, क्या क्या सीखा है इस सेंटर से जुड़कर?
1: सेंटर से जुड़कर मेरे अंदर सबसे पहले बदलाव आया कि लोगों से बातचीत कैसे करी जाती है। लोगों से मतलब बहुत डरती थी कि मतलब लोगों के बीच जाना, लोगों से बातचीत करना, गाँव का बाहर का माहौल कैसा होगा, क्या होगा। तो सेंटर से जुड़कर मुझे मेरे अंदर ही खुद कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे बदलाव आए, मैं लोगों से बातचीत करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, मेरी एक गाँव में पहचान बनने लगी सेंटर से जुड़ने के बाद। फिर मतलब मेरी पोस्टिंग भी बढ़ती गई ईसीडी से, फिर मुझे कंप्यूटर टीचर, उसी बीच मैंने कंप्यूटर क्लास लेनी शुरू कर दी। मेरे माँ बापों को लगा कि हाँ शायद मेरी लड़की कर रही है तो आगे बढ़ सकती है, तो मैंने इसी बीच कंप्यूटर की क्लास लेना शुरू कर दी। वो मैंने 6 मंथ तक कंप्यूटर भी सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे फिर कंप्यूटर की टीचर बना दिया गया, मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मेरे माँ बापों को और मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिली, और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई। और एक कॉन्फिडेंस जो मतलब दिल से होता है ना, वो मतलब बढ़ने लगा कि हाँ मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक दिल से पूरी आवाज निकलने लगी, हाँ फरा आगे बढ़ और तू कर सकती है।
0: वो तो केवल घर से सेंटर तक जाने की
1: जी
0: बात थी। आज आप यहाँ बैठी हो दिल्ली में, द्वारिका में।
1: जी मैम।
0: ये कैसे संभव हुआ?
1: फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आई थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, उन्होंने कहा कि मैं मतलब दिल्ली का नाम सुन के ही मतलब मेरी मम्मी तो एक तो गांव की बात थी कि उन्होंने सेंटर के लिए हाँ कह दी, लेकिन दिल्ली का नाम सुन के तो मेरे पापा और मम्मी ने डायरेक्ट ही मना कर दिया था कि नहीं वहां तक नहीं जा पाएगी। तो फिर दिल्ली में गीता मैम से बात करी सर ने कि उसकी मम्मी आ सकती है, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई। उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की सुविधा देखी, यहाँ देखा कि सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे पहले जो गीता मैम हमारी कंट्री डायरेक्टर है वो तो बहुत ही अच्छी है, वो मतलब ऐसे लड़कियों के लिए तो ऐसे मतलब सुविधा रखती है कि यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने मतलब एक गीता मैम से मिलके और सारे स्टाफ से मिलके उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे घर के परिवार के जैसा है, और उन्होंने मुझे आने के लिए।
0: क्या उम्र थी आपकी उस वक्त जब पहली बार आप दिल्ली?
1: जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो शायद 18 साल की होंगी, 18 मतलब 19 ऐसी थी। और दिल्ली आके जब मैंने देखा मतलब मुझे अलग ही माहौल लगा, और मैं मतलब ऐसा लगे कि सारे सपने स्वीकार होते दिख रहे हैं मुझे। मतलब एक गांव की छोटी घर में रहने वाले और मतलब एकदम इतना अच्छा माहौल मिले, और फिर मम्मी यहाँ तक लाए मुझे, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि जिस वक्त वो मेरे साथ आई थी और मुझे लेकर आई और उन्होंने सब घुमाया, उन्होंने खुद देखा, उन्हें लगा कि हाँ मेरी लड़की कर सकती है।
0: तो रीड इंडिया सेंटर से जितनी भी लड़कियां, क्योंकि रीड इंडिया की तो बहुत सारी सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगी आप रीड इंडिया के बारे में, उसके काम के बारे में, और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों के लिए?
1: मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि मतलब किसी भी चीज के पीछे डरे नहीं। और रीड इंडिया हमारा एक ऐसा सेंटर है जो लड़कियों के प्रति मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास लाता है, उनको जागरूक करता है, उनको बताता है कि मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां अपने में एक आत्मविश्वास है, वो खुद भी कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम ना समझे, लड़कियां ये नहीं सोचे कि हम घर में रहेंगे तो मतलब हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं, उसे सिर्फ अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए और अपने माता पिता पर निर्भर होना चाहिए। और रीड इंडिया ऐसा एनजीओ है जो मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और रीड इंडिया के साथ हर लड़की को हाथ मिलाकर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
0: आपने बताया था कि आपके गांव में मुस्लिम समुदायों में और भी जगह हम देखते हैं कि बच्चियों की बहुत जल्दी शादी कर देते बहुत कम उम्र में।
1: जी मैम।
0: और आपको मौका मिला, आप आगे बढ़ी।
1: जी मैम।
0: तो क्या सपना लेके आप आगे बढ़ी और आगे क्या करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे माँ बापों ने मुझ पर विश्वास करकर मुझे आगे बढ़ाया है तो मैं उन्हीं के लिए ये सब करना चाहूंगी। मैं मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुद अपने पैसों से मैं अपने माँ बापों को हज करवाना चाहूंगी कि वो हज करें मेरे पैसों से। कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के माँ बापों को हज करवाते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ जो लड़कों की कमाई होती है उससे ही माँ बाप हज करते हैं, लेकिन मेरा एक अपना ही सपना है कि मैं अपने ही पैसों से अपने माँ बापों को हज करवाऊं।
0: और शादियां तो बहुत जल्दी होती हैं आपकी, आपने अभी तक नहीं करी क्योंकि 18 साल की उम्र में आप पहली बार तो शहर से बाहर निकली थी, गांव और शहर से बाहर निकली थी। आज कितनी उम्र हो गई है आपकी?
1: मेरी आज 24 साल की उम्र हो गई है।
0: तो कैसे सोचती हैं, शादी को कैसे देखती हैं, और क्या लगता है आपको कि आगे अगर करती हैं कब करेंगी और कैसे उसको जीवन को आगे ले जाएंगी?
1: शादी के लिए भी मतलब माँ बाप घर वाले सब मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, लेकिन मैं शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बापों के लिए पहले वो पैसा जोड़ के रखना चाहती हूँ जिससे वो हज कर सके। मैं अपने भाई को काबिल करना चाहती हूँ कि वो आगे मतलब मेरे घर को आराम से लेके चले, मेरा एक ही भाई है। और मैं अपनी बहनों की पढ़ाई मतलब अच्छे से करना चाहती हूँ कि वो अच्छी ही जॉब में लगे मेरे साथ, मतलब पढ़े, उनकी पढ़ाई किसी भी वजह से रुके नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के अभी इतनी मतलब
0: आर्थिक क्षमता नहीं है,
1: क्षमता नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। अभी जो भी चल रहा है मेरे ऊपर ही चल रहा है और थोड़ा बहुत मेरे भाई के ऊपर। तो मैं ये सब अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती।
0: तो आप इस पैसे से जो जो कमा रही हैं उसको बचा के अपने परिवार की मदद करती हैं?
1: जी मैम।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं फरहा कि आपके सारे सपने सच हों। और देखिए फरहा अकेली लड़की नहीं है, फरहा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत संघर्ष से निकल के आई हैं, और उनमें से बहुतों को रीड इंडिया जैसी संस्था ने या उस जैसी काम करने वाली और संस्थाओं ने और खुद रीड इंडिया ने, क्योंकि रीड इंडिया बहुत सारे प्रदेशों में काम कर रहा है, तो उन ऐसी बहुत सी लड़कियों को मौके दे करके उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उनको मजबूती दी है, उनको रास्ता दिखाया है, उनके सपने पूरे करने के लिए उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगाया है। मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा जारी रहेगी। अगले ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: Hi friends, welcome to Jeete Raho once again.
1: Kisi ki muskurahaton pe ho nisaar, kisi ka dard mil sake to le udhaar, jeena isi ka naam
0: hai. Isse kya hua hai? Tumhari tabiyat to theek hai na Bablu?
1: Of course, mujhe kya hua hai? Anyways, aapse milkar bahut khushi hui Miss Kokila MBBS, main aapke liye kya kar sakta hoon?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा?
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओह, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज घिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NSAID के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NSAID दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NSAID दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान। भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना केवल पशु स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान की आय, दुग्ध उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में टीकाकरण और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। NADCP के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है, जिससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2019 में FMD के 132 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 40 रह गए। ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं। तो सवाल ये है, भारत में पशु रोग नियंत्रण के इस बड़े अभियान को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसका किसानों और पशुधन की उत्पादकता पर क्या असर पड़ा है और बदलते समय में तकनीक, डिजिटल निगरानी और वन हेल्थ जैसी अवधारणाएं इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
2: रोग मुक्त पशुधन की दिशा में राष्ट्रीय अभियान। भारत में पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ थी, जिनमें 302.79 करोड़ गौवंशी मवेशी शामिल थे। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज बेहद जरूरी है। खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, विकास, प्रजनन और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए FMD का प्रभाव केवल पशु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसान की आय पर भी पड़ता है। दूसरी प्रमुख बीमारी है ब्रुसेलोसिस, यह गाय और भैंसों में होने वाला प्रजनन संबंधी रोग है। इससे पशुओं के सामान्य प्रजनन कार्य प्रभावित होते हैं और दूध तथा मांस उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत FMD से बचाव के लिए योग्य पशुओं का हर 6 महीने में टीकाकरण किया जाता है। वहीं 4 से 8 महीने की बच्चियों को ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनके जीवन काल में एक बार टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, इसमें पशुओं के कान टैगिंग, पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, सिरो निगरानी, बीमारी की पहचान, नमूना परीक्षण और टीकों के लिए कोल्ड चेन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बीमारी की पहचान समय पर हो, टीकाकरण का प्रभाव पता चलता रहे और जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जा सके। NADCP के तहत अब तक FMD के 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। टीकाकरण के बाद की निगरानी से भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में टीकाकरण के बाद की निगरानी में गायों की बच्चियों में 75.63% और भैंस की बच्चियों में 67.17% सेरो कन्वर्जन दर दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण के बाद बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है दूर दराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। ये टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के घर तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाती हैं।
1: पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पशुओं की संख्या, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ा सही और समय पर उपलब्ध डेटा हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशुधन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसंधान, वैक्सीन की गुणवत्ता, निगरानी और किसानों की सेवाओं की पहुँच को भी मजबूत किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: आज के समय में किसी भी बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए सही डेटा और वैज्ञानिक निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक निगरानी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दिशा में भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल पर पशुओं का पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी दी जाती है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इससे पशुओं की पहचान, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करने में मदद मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा यह है कि किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में प्रभावित पशुओं और क्षेत्रों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड और टीकाकरण की ट्रेसिबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं इस निगरानी को और मजबूत कर सकती हैं। टीकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इन प्रयासों का संबंध केवल बीमारी को कम करने से नहीं है। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 3000 किलोग्राम दूध उत्पादन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट है कि पशु स्वास्थ्य को अब केवल बीमारी की रोकथाम के नजरिए से नहीं बल्कि पशुधन की उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
1: वन हेल्थ का मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानना। अगर किसी पशु बीमारी की समय पर पहचान हो जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकता है। महामारी के अनुभवों ने हमें ये भी दिखाया है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इसी पहलू को समझते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में।
3: आज दुनिया के सामने संक्रामक और जूनोटिक बीमारियों का खतरा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इसलिए पशुओं में बीमारी की जल्द पहचान, प्रभावी निगरानी और समय पर नियंत्रण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी व्यापक सोच को मजबूत करता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है। भारत राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में वन हेल्थ से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करना है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तर्कसंगत इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बीमारी के प्रकोप की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा गया है। इसमें रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह NADCP ने भारत में पशु स्वास्थ्य को एक व्यापक और डेटा आधारित व्यवस्था से जोड़ने की नींव रखी है।
1: भारत के लिए पशुधन केवल कृषि से जुड़ी संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है और इससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश किसानों की समृद्धि के साथ साथ भविष्य की महामारियों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।
4: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
5: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
6: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने तो परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
7: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है। टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ, ये कर सकती है कुछ।

0: मैं गांव बासलांबी और मुझे आर्ट ले रखे और मैं गेम में बहुत इंटरेस्ट हूँ और मैं कबड्डी और रनिंग में बहुत अच्छा खेलता हूँ और मैं आगे इसी में भाग लूंगा।
1: आज का जो सेशन हुआ था ना बिंसी मैडम ने जो पढ़ाया, उसमें से आपको क्या क्या समझ में आया?
0: बहुत कुछ सीखने को मिला और आर्ट में बहुत चीजें बताई थी, 7-8 चीज बताई गई थी, LLB, BB और डांसिंग, रनिंग, आर्मी, पुलिस।

my name is Deepak and I read in 11th class. My village name is Jatola. आज मैंने सीखा मेरे करियर के बारे में जो मुझे आगे करना है, इसलिए मैंने कॉमर्स ले रखी है और मैम ने बहुत अच्छा बताया कॉमर्स में बैंकिंग CA और बहुत स्ट्रीम से आगे, तो इसलिए मुझे बहुत मदद मिली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।

Hello, my name is विकास. मैं सांप का से हूँ. मैंने कॉमर्स ले रखे. मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ. मैंने आज सीखा कि मेरे को पता नहीं था कि आर्ट से LLB वगैरह कर सकते हैं. आज पता चला कि आर्ट से बहुत ऑप्शन है. मैं CA करना चाहता हूँ. थैंक यू.

माई नेम इज़ सचिन, आई रीड इन 11th क्लास। मैंने आर्ट्स ले रखी है, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे को रनिंग में और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। आज की सेशन से हमें ये फ़ायदा पहुंचा कि हम आर्ट्स से बहुत सारे वो कर सकते हैं।

0: हेलो आई एम आशीष एंड आई एम फ्रॉम बासलम्बी. मैंने साइंस ले रखी है एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, बट माई ऑल्सो इंटरेस्ट इन कबड्डी एंड एथलेटिक्स, सो माई अदर एम इज टू गेट अ मेडल इन नेशनल्स.
1: मैं जितेंद्र, आई रीड इन 11th कॉमर्स, आई लिव इन बासलम्बी. आज गाइडेंस से हमें ये पता चला कि हमें अपना कुछ भी करने से पहले हमें अपना एम कर लेना चाहिए. मैंने साइंस ले रखी है तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. थैंक यू.

नाम मन्नू, मैं 12वीं कक्षा के छात्र हूँ। मैंने मैथ ले रखा और मैं यहाँ पर बिन से मैम ने करियर के बारे में बताया था कि हम 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, टीचर्स लाइन में जा सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला है।

My name is Anjali. I read in 11th class. I am 15 years old. My hobby is playing. I am interested of Hindi and math. और आज मैं यहाँ पे करियर काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए आई थी. तो यहाँ पे प्रिंसी मैम ने हमें तीन स्ट्रीम्स बताई, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. जैसे कि साइंस है उससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, कॉमर्स है अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट्स कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और आर्ट है उससे तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. गवर्नमेंट सर्विस फॉर्म तो सभी कर सकते हैं. इससे मुझे अपने करियर के बारे में बहुत सी जानकारी. थैंक यू.

पायल, आई रीड इन 7th क्लास. आज मैं यहाँ करियर के बारे में जानने से आई थी. मेरा यहाँ पे मैम ने बहुत कुछ बताया और मेरे को पता लगा कि हम अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके, और हम बहुत कुछ समझ में आया. थैंक यू.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम का विषय है ई श्रम पोर्टल के 5 वर्ष, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं। इन श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गयी। 26 अगस्त 2026 को ई श्रम पोर्टल अपने 5 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों में ये केवल श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल नहीं रहा, बल्कि रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तक ई श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 54.28% महिलाएं और 45.72% पुरुष हैं। तो ई श्रम पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इसने असंगठित श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए हैं और आने वाले समय में ये सामाजिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को किस तरह मजबूत कर सकता है, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
2: भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका काम भी अलग अलग तरह का है। कोई कृषि मजदूर है, कोई निर्माण कार्य करता है, कोई घरेलू कामगार है तो कोई सड़क किनारे सामान बेचता है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर भी इस व्यापक श्रेणी का हिस्सा है। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और उनके बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विकसित ई श्रम पोर्टल ने देश का पहला आधार प्रमाणित नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया। पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले प्रत्येक श्रमिक को 1/12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है अलग मंत्रालयों और विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ना और पात्र श्रमिकों तक उनका लाभ पहुंचाना। इसका मतलब है कि श्रमिक जब एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाता है तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है। ई श्रम पोर्टल का विस्तार केवल रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन पर 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेंट पोर्टल के माध्यम से PMSBY और PMJJBY में भी नामांकन कर सकते हैं। PMSBY के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और अधिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। वहीं PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। ई श्रम पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस यानी NCS से भी जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच मिलती है। माई स्कीम के जरिए श्रमिक अपने लिए पात्र सरकारी योजनाओं की पहचान भी कर सकते हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ई श्रम पोर्टल के 5 वर्षों में इसकी पहुंच लगातार बढ़ी है। 18 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54.28% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी

0: उपलब्धियों में से एक है इसका व्यापक कवरेज। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों में सबसे अधिक संख्या कृषि, घरेलू और हाउस होल्ड वर्क, निर्माण तथा परिधान से जुड़े श्रमिकों की है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीके में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सबसे प्रमुख माध्यम रहे हैं। इसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्थान है। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते वो इनकम टैक्स पेयर ना हो और EPFO या ESIC का सदस्य ना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना बेहतर है। श्रमिक खुद ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या स्टेट सेवा केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। राज्य सरकार के फील्ड अधिकारी भी जिला और उप जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। ये डेटा भविष्य में इन श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तैयार करने तथा लागू करने में मदद कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी पोर्टल में परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वहीं निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने की सुविधा है। इससे उन्हें संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी BOCW बोर्ड्स में रजिस्टर करने में मदद मिल सकती है। इस तरह ई श्रम का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, कौशल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: ई श्रम पोर्टल ने 5 वर्षों में एक बड़े राष्ट्रीय डेटाबेस का रूप ले लिया है। 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता केवल उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो लोगों को वास्तविक सेवाओं और लाभों से कितनी आसानी से जोड़ पाता है। ई श्रम को इसी दिशा में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
2: 5 वर्ष पूरे होने के साथ ई श्रम पोर्टल भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के डिजिटल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेवाओं और योजनाओं को जोड़ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके साथ रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन की सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक को अलग अलग सरकारी पोर्टल पर जाने की जरूरत कम हो और वह एक ही स्थान से अपने उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर श्रमिक अपनी उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं और पहले से प्राप्त लाभों को भी देख सकते हैं। पेंशन के लिए पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से जुड़ सकते हैं, जिसमें पात्रता के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। ई श्रम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के लिए बेहतर समन्वय। ई श्रम का उद्देश्य इसी तरह एक ऐसे डिजिटल सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान हो, उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें उपलब्ध सरकारी सहायता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ई श्रम ने एक श्रमिक रजिस्ट्री से आगे बढ़कर वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन का रूप लिया है, जहां सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन से जुड़ी सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है। आने वाले समय में रजिस्टर्ड श्रमिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना, नए नए श्रमिकों को जोड़ना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसी नई श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और डेटा के आधार पर बेहतर नीतियां बनाना महत्वपूर्ण होगा। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक समावेशी और तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आपका स्वागत करती हूं रेडियो रीड इंडिया में। प्रस्तुत है गांव मेहंदीपुर डाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार।

0: रीढ़ केंद्र ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एकता है और मेरी सहेलियां आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। पलक, एकता, दीपिका, अंकिता, कविता और सुजाता, हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की मेहंदीपुरा बुद्धा कला की लड़कियां कविता सुनाना चाहती हैं और हम गांव के एक लाइब्रेरी सेंटर में आते हैं और वहां पर बुक्स पढ़ के जाते हैं, बुक्स घर पे लेके जाते हैं और कंप्यूटर सीखने आते हैं। जंजीरों में बंधी पुकारे मुझको भारत माता, माँ का स्वाभिमान बचाने फांसी चढ़ने जाता। हाँ, ये शब्द तब गूंजे थे जब गोरखपुर की जेल में बंद शहीद भगत सिंह ने लिखा अपनी माँ को पत्र।

0: धन्यवाद।
1: हेलो, हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और मेरी शादी हो रखी है मेहंदीपुर डाबोदा में। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो भी मेरी ननंद ने बताया है मुझे। उन्होंने यहाँ पे सिलाई सीखा है, ब्यूटिशियन का सीख रही है वो भी। मुझे उनमें इंटरेस्ट दिखाई, इसीलिए आज मैंने भी यहाँ पे आने की सोची है। आज यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे हर रोज आऊँ, कुछ नया सीखूँ, जिससे मुझे और भी मतलब पता चले कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या मैं सबको बता सकती हूँ। मतलब इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे रोज आऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगी, जिससे मैं सबको बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। इससे हर एक इंसान की नॉलेज बढ़ेगी, उसको भी पता चलेगा, ताकि वो आगे किसी को बता सके, उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इससे हम अपने बारे में या बाहर के बारे में हमें हर तरह की नॉलेज मिलेगी। घर में जैसे हमें कुछ नहीं पता चला, वो हमें बाहर आके बहुत कुछ पता चलेगा।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है और मैं मेहंदीपुर डाबोदा की रहने वाली हूँ। मैंने इसी साल 12th की है और मैंने यहाँ पे सिलाई सीखी है तकरीबन 3 साल पहले, और मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे करीबन एक महीना हो जाएगा ब्यूटी का सीख रही हूँ, और उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए मैं अब, और रेडियो क्लास के बारे में तो मुझे पहली बार पता चला है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने सिलाई सीखने के बाद बहुत सारे पैसे कमाए हैं, और मतलब यहाँ पे सिलाई सीखने के बाद मैं अलग अलग डिजाइन के सूट वगैरह सिलती हूँ, और मुझे यहाँ पर सीखने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और मैं यहीं पे और कुछ भी सीखना चाहती हूँ। धन्यवाद।
3: हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
4: मेरा नाम निखिल है, मैं 6 कक्षा का छात्र हूँ।
3: हम आपके सामने एक कविता सुनाना चाहते हैं।

0: कुर्डाबुद्धा की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में एक लाइब्रेरी है, वहाँ हमें बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और एनटीटी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारे कोर्स आते हैं। इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहले मेरी बिग फैमिली है, ये पहले ना सिलाई के पैसे बाहर जाते थे और घर में ही रह जाते, बचत होती है इससे काफी। मेरा एम है, मैं पुलिस में SI पे कर रही हूँ, साथ साथ में अब कोचिंग भी ले रही हूँ।
1: मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव मेहंदीपुर की बहू हूँ और मैं 2014 में यहाँ लाइब्रेरी खुली हुई से जब से जुड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। जब से मैंने ये पता चला कि भाई यहाँ लाइब्रेरी खुली हुई है, तो मैं उसी दिन से आना मैंने शुरू कर दिया। सिलाई सेंटर खुल रहा और कंप्यूटर शुरू होया और किताब सारी पढ़ने लगे, घर पर ले जाने लगे। मेरी लड़की ने यहाँ इंग्लिश सीखने आई तो यहीं पर फिर मेरी लड़की नौकरी करने लगी। फिर यहाँ से मेरी बेटी ने 3-4 साल नौकरी करी है। फिर उसके शादी होने के बाद वो अपने ससुराल से दूसरे गांव में आने लगी लाइब्रेरी में। और जब से मैं यहीं से जुड़ी हूँ, सिलाई सीखती जैसे अंटरलॉक करने लग गए और मैंने दिखने से कमज़ोर होने के कारण मैं कम, वैसे जो कोई फंक्शन होता मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पर, और कुछ गाना बजाना होता जब भी मैं शुरुआत ज़रूर करूँ।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मेरी कुछ सहेलियाँ हैं पलक, दीपिका और भावना पायल। मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे गाने को ध्यान से सुनें और आनंद लें। मेरी माँ

0: मेरी माँ सोचती चोरा होगा धोल मोल और टोरा होगा। धन्यवाद।
1: मेरा नाम मानसी है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। हमारे गांव में लाइब्रेरी है जिसमें मैं ब्यूटीशियन का कोर्स करती हूँ। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी बहुत बचता है मेरा यहाँ आने पे, क्योंकि अगर हम गांव से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत स्मेल लग जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है हमें।
2: मेरा नाम तनु है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। मैं अपने गांव में उपस्थित लाइब्रेरी में ब्यूटिशियन का कोर्स करती हूँ और मैं आपको यहाँ रेडियो की क्लास में एक पोयम सुनाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे रीड इंडिया मेहंदीपुर दाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे ऋतु को दे इजाजत। नमस्कार।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज, जैसे हम कहते हैं, क्या है?
4: इसमें जो विदेशी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है, जिसे आपने कहा, वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने यह ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी न इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
5: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर, and this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services, by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
3: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
4: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
3: जी,
4: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा, और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने यह तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती है, वो करीबन 0.5% होता है कभी या 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत्व व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है
3: जी।
4: तो सरकार ने ये सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाएं जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड्स होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी, और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये एमडीआर का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
5: Will consumers pay any UPI charge? No. UPI has remained free for consumers since its launch, and every Indian will continue to make instant digital payment without paying a transaction charge. Chai wale ke upar, sabzi wale ke upar, tele wale ke upar, patri wale ke upar MDR charge nahi lagegi. Chote merchants aur kirana stores hamare inclusive financial schemes aur sarkar ke ye bahut bada commitment hai financial inclusion ka. Small merchants remain central to UPI's inclusive growth. Unke upar hum koi MDR lagane wale nahi hai. Any future MDR will apply only to a limited category of merchant transactions above a certain prescribed high threshold.
3: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान है इस विधेयक में?
4: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं, जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
3: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
4: देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो
3: जी,
4: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इम्पोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
3: जी।
4: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई।
3: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में
0: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चांद खान है, मैं राजस्थान के दौसा जिले की सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पर रीड इंडिया का सेंटर है गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूँ कि यह गांव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं, इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। तभी एक गिजगढ़ गाँव में रीड इंडिया संस्था आई जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर इस संस्था के अंदर मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलेंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गाँव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसा हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो हेल्थ कैंप लगाया गया था, रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया, होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं। तारा अक्षर में जो महिलाएँ साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था। हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को, तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था, तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद की इनकम जनरेट कर रही है, खुद का घर खर्च चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था, वो गांव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारती वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारती वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पाई, वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।
6: मेरा नाम दिव्यांश वर्मा, 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
7: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पुल, सुरंगें, मेट्रो, पानी और आवास, ये सभी सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बदल रहा है, रेलवे और सड़कों से लेकर हवाई और समुद्री संपर्क तक क्या विस्तार हुआ है और किस तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवास और रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेलवे तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
8: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
2: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1,155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्रियों की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की। वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1,728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है। ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
9: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3,291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3,030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
2: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत।
8: इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।
10: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
11: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
12: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ है ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होकर अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही होती थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा. क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एफ ए करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने. वो मुझे लेके जाते थे शादी के 3 महीने बाद ही. मार्च जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करने, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा. बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रिसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठकर लंच नहीं करते थे।

0: गीता मैम और महेश्वराय तब हम घर पे थे, इट वॉज डिसम्बर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैंने शिव लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के विमेन ने यूज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब कुछ आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, तो भी वेरी ऑनेस्ट एक इमेज थी। आप न्यूज देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वाज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियालिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोच रही थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के 3 महीने पहले, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए कितना हमारा गया था। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है रियलिटी ऐसी है। मैम का सेंटर कहता है एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जगह दे रहे हैं तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वाज लाइक मतलब मैं देख रही थी ये स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीजें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक की मतलब मैंने बहुत अच्छे से
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
0: तो बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गोसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है, इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिसपे अभी हम वर्क कर रहे करेंटली। और गोसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव आर ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनिमल वर सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो मैंने जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। वो सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो,

0: मैंने कहा नहीं, मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना है ये।
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही हैं, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है. अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ रोक भी रहा है, तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा. और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबमिशन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम. और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे, कैसे वो बच्चे के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है. तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं. ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह से. रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन है.
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं. एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे. So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
0: मैम कैलिसंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मिंट फार्मर्स. हम मिंट फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मिंट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मिंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. सो जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़े. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गाँव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं कि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग भी करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया. हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती हैं मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर. बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गांव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा. बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है. आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते. इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे. फिर ये हो चीज होती रही. फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं. फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी. हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे. उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते. उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग. कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे. फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना. मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है. हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी. तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से. फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज थोड़ी सी बीच में रह गई. बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें. एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें. अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सके.
1: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, सम हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड. ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें. वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना. आपने मैंने ये देखा है कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड. थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इशूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
0: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे. तो उसमें डॉक्टर निधि भाटी जो हमारी कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपने मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था। ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आई है, आपके लिए सेशन लेने आई है। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफी बच्चे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीजें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पे।
1: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था। चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया, बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है। So, कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
0: यस मैम, चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब भी जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, वो रेट इंडिया लिखेगा, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे सेल आउट करता है, आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीखकर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकन मकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैल्सियम्स के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे, तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
1: वेरी नाइस, ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम करें, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: श्योर मैम। मैम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं, मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, हम उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से 1 साल पहले. मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी. और जब उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया मैम, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है. बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे इंजन के जॉब नहीं मिलनी चाहिए. एंड दैट थॉट चेंज माय माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है. मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहनेंगे. मैम इतनी बड़ी, हम दो कुर्ते देते, सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वाज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लाइफ कुर्ते पहनेंगे. मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे. तो हम शी वॉज लाइक, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी. फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, कोविड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया. एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है. मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ. दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने, महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स. मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती. मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठ कर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है. देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा. उसके बाद बोलते हैं कि मैम मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है. मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो. तो बोलते हैं मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ मशीन खरीद लो. फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है. एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गाँव के मैम वो कपड़े बनाती है. एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है, अभी जल्दी एफआईआर हो गए. तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन. तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है. मैम ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को. मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
1: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में. कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई.
0: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था. पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए. जो जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं. हम इतना मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था. अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम. गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था. और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया. सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया. उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया. और एक बार ही हो गया, दो बार ही मैम कॉन्टिन्यूस 15-15 दिन बारिश हुई है, 20 दिन बारिश हुई है. ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए.
1: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट. इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए. तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों. सो
0: जी यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए. तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी. मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी, हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाए वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क। And I think this is the perfect time to call our core mentor, Dr. Geeta Malhotra, because unhi ki ye vision hai jisko hum sab milke aage leke ja rahe hain. So I welcome ma'am to the show. Good evening, ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening the discussions, Sana. Your answers were very, very encouraging. Good afternoon, and I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabank. Sana, because मुझे पूरी memories मेरी revive हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए। व्हेन वी इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर, जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडेमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। So we started that we will give a second livelihood to the mint farming community, because mint is a seasonal crop, right? And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
0: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Now there are many children in I remember one boy was there, his name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier, but when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th, now what should I do? So I asked him to learn computers, because you're a boy, you can learn computer and do something, and you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library, because, and when he came to the library, he was like, मैम इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, मैम आप ये भी किताब है, मैम ये भी बुक है, मैम अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मिल जाएगा? वो लाइक यस प्लीज आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारे डिमांड्स पर सारी बुक रेड इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है, आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए। तो मैम ही डिमांड, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. एंड मैम वो लाइक ही वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली. एंड आफ्टर दैट आई वोंट बिलीव ही वाज इन सेकंड ईयर ओनली एंड ही गॉट द जॉब इन लखनऊ इन फन मॉल एंड ही इज अर्निंग 15,000 to 18,000 पर मंथ राइट नाउ. एंड ही वाज लाइक ही केम विद टू मी विद अ बॉक्स विद अ स्वीट बॉक्स एंड ही वाज लाइक हाँ ये सब आपकी वजह से हुआ. मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये दीदी ने कहा, प्लीज से थैंक्स. मैम दीज आर द स्टोरीज दिस इंस्पायर मी अ लॉट.
2: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe. To aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chal kar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. Ma'am, आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी. बट मैम इतने ऐसे से विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं. और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें. तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
2: सना ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली. सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड. तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते हैं?
0: मैम समटाइम्स सो वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग एंड समटाइम्स दे कम लाइक दिस ओनली. सो मैम आई एम वेरी पंक्चुअल, I am regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing that when they come without any information, we all are here, we all are present in the center. So we know that abhi wo aaye hain, so I have to give my, at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children ki aap log library mein ja ke baithi, abhi main koi session nahi lungi, abhi main in logo ke sath baat kar rahi hu. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट रेड इंडिया, अबाउट बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, सो दे डोंट नो व्हाट रेड इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रेड, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द चिल्ड्रन कमिंग टू द सेंटर, वॉट सर्विसेज वी आर गिविंग एट द सेंटर, वॉट आर द फेसिलिटीज दैट आर being offered to the students in the area. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year like pandemic se to abhi tak sirf do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they're saying we're sitting over here in the office and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tum bhi aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody we aage samne se khada ho jata. I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai ye. So it happens sometimes with me.
2: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, you know, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes. two things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. I remember one story.
2: Yeah, please continue.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and wellness. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there, was continuously usko pareshan karne ja raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prereq tha hamara jo hamare liye committee mein ja ke session leta tha. I asked, I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar bike se aur aap dekho ki ma'am ko kaun pareshan kar raha hai. Phir ma'am unhone wo ja ke ghar pe chhod ke aaya, phir usne mujhe aakar bataya ki ma'am ye hai. Phir maine apne husband ko bola ek baar ko कि आप जाइए, आप एक घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आसपास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
2: Sana, major of the population in Barabanki and Badagam are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the REIT center and establish themselves, then they'll get married?
0: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me, ma'am, maine to pehle apne mummy papa ko bol diya ki aap shaadi to meri kar rahe ho, but main jab tak apna advanced teaching ka course center se mera pura bhi ho jayega tab tak main sisal nahi chahungi, mujhe nahi jana wahan. So ma'am, she was like, she stayed here for 6 months, she learned, completed her course, and then she went back. Muslim communities mein to स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th में लड़कियाँ आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो कम हियर इन बड़ागांव. आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिज. तो यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स से, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन, 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम that we have to counsel the parents, we have to counsel the girls, and they come and they you know, they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
2: Very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. Though jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to be independent and be ready to, support the family when any emergencies come in the family. So, वो भी हमारे सेंटर की तरफ से आप हमेशा उनको कन्वे करती रहती हैं. सना, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं, शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए. तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
0: Yes, ma'am. I would like to say that, ma'am, if we are going for the sub-centers or satellites, we should pay, we should make that satellite for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragaon is the center, then it has, it in its stages there are many villages. So we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefit from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Read India more powerful and more accessible to people, because they will know what Read India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
2: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
0: sure,
2: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
1: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन? कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटीफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, Read initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
0: Yes, ma'am. During last year, if you talk about COVID only, they were like, "Kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge?" So, मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि वो क्या है. आई मीन दैट वर्ल्ड, सारे छोटे बच्चों को अभी तक नवाल देवर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप मैं पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. यस मैम, आई एम, it helps, ma'am. Every child, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, the learning is never ends. I believe that.
1: And aapke parents ko kaisa lagta hai aaj wo Sana hai jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahi kar pa rahi thi aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai?
0: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath aisa such koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us, because the three of us are very, active. And my other sister, my sister who's living in Hong Kong also, she is also working for an NGO only. and she working for past 7 years. So we both are very social and we help each other a lot in everything.
1: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want to get married early, maybe any because of any reason, आपको ये चाहिए कि आप गिव अप मत करो किसी भी लाइफ के स्टेज पर. जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप लर्निंग. दैट विल हेल्प यू फॉर योर एंटायर लाइफ. नथिंग मच मैम.
1: ऑन दोस इंस्पायरिंग लाइंस, इफ देयर इज नथिंग एल्स देन वी कैन यू नो क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच सना फॉर शेयरिंग योर सच अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us, and thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Anna. Hopefully, you reach all the communities. And where your satellite centers are, they will also be as successful as your present center.
0: Yes, ma'am.
1: Thank you so very much for joining us. And we thank our viewers also for patiently viewing our program. We can end the session. We will join you again on Friday with another exciting program on Culture Knowledge.

0: डॉक्टर बॉबी, जैसे कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में डॉट सेंटर में टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी को मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, सैर पे भेजा जाए और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी का इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी पेशेंट अपना इलाज कराता है तो ये इलाज कोई महंगा नहीं है। दिन की 15 रुपए की दवाई से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है और 2 महीने के बाद ये 15 रुपए से भी दवाई जो है 7-8 रुपए की रह जाती है।
0: और इनकी जो दवाइयां हैं वो क्या आसानी से उपलब्ध हैं?
1: टीबी की दवाइयां सरकारी संस्थानों में आसानी से उपलब्ध हैं, पेशेंट को दी जाती है, बल्कि पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बना दिया जाता है हर मरीज के नाम का और दवाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। टीबी की दवाइयां हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में टीबी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है देश भर में। तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका ध्यान तो जाता है टीबी की वजह से, मतलब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आके दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारी को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
0: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
0: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है, इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
1: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
0: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
1: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शियस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था, तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
1: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयां 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे, मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयां आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करें, घर में इधर उधर ना फेंके और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
0: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या यह सही है?
1: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी, जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स ए इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
0: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

0: शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रीड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से गीता मैम, थैंक यू।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
2: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
3: यस मैम।
2: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है, थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज, काम के बारे में तो लिंक करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है, और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है, और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स और

0: कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
1: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे 2 मिनट की, बस अब नहीं
0: नहीं,
1: करेंगे
0: वो मेरी
1: बिल्कुल
0: मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो
1: जी
0: मैं
1: मैम।
0: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ, वो फिर हट जाता है दिमाग से। ठीक
1: नहीं मैम सॉरी
0: है। हाँ,
1: जी
0: तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं। जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से। बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें, तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए, एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेड़ा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
1: यस मैम
0: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी व्हाट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं, अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000

0: आना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1 लाख रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसकी वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं। अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास आपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स. कहीं ना कहीं गैप आ रहा है. तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है. अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं. और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है, हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं. मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है. बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70% जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं. वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं. और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े. उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए. और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है. और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है, अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे. आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे. 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. ये मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ. मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ. 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी. मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे. और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी. और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया. बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज. करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते. और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए. लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी. लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन. तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात कर. एक वर्ड है, आपने सुना होगा, हेल्प. हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को. आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ. ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में, अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से. हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। बट हाँ, ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीन। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेता है, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है, वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर, हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है, इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत, कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है, और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है, चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे, और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं, और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है, विथ प्योर प्योर मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें, इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है, और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन पांच छह मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे, आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ, मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है, हम सेल्फ बूस्टिंग करते, मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में। इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर देते। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है, अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है, उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा, और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने सिक्स डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं, तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के। और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी कि बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज?
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की हुई है।
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ के एक्सपीरियंस ही है।
1: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
2: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। आपकी मीटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट बताया मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए और मतलब जो एनवायरनमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
3: जैसे पढ़ाई वाला।
2: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो बस पढ़ते ही रहे, उसपे ये नहीं सोचे कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं, ये सब सोच कर रखना चाहिए ना, गोल सेट करना चाहिए।
3: आपका क्या ऑब्जेक्टिव है?
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं, और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी, पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के।
1: नमस्ते मैम, जी मैम,
0: जी
1: हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको अगर शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाते हैं, सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया जाए, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज, एक छोटी सी कोशिश है मैम।
0: तो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है वो, मैं नहीं चला रही हूँ, पर हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो, आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज में बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग
0: जो
1: सोच रहे
0: मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
1: थे।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं हम उनको कभी अचीव,
1: अचीव नहीं कर सकते मैम उनको हम लोग।
0: बल्कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: जी
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है, हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है मैंने कम से कम 100 बार ही अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100%। थैंक
0: हाँ,
1: यू
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सबको,
1: थैंक यू।
0: और आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको। और मराठी में बताएं, ठीक है?
4: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ
4: थैंक यू मैम।
5: हेलो मैम, मैम
0: जी, हेलो, नमस्ते,
5: नमस्ते,
0: मैं
5: कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
5: मैम आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच, सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? प्रॉब्लम्स
5: ओके, थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी
1: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम, ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे।
0: मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम,
0: दैट
1: जी मैम,
0: वो जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। थैंक
1: जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।
0: यू।
3: नमस्ते
0: नमस्ते।
3: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए, और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गए। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए, लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित हो रहता है। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
6: थैंक यू मैम, इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है, जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल, गुरु जी ने चाहा तो बहुत जरूरी। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सुमन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
7: नमस्ते मैम, आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
0: ठीक है सर, सर
8: गुड
0: गुड
8: आफ्टरनून,
0: आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है,
8: अच्छे हो आप? कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
0: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना?
8: जी मैम,
0: अब
8: मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
0: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेगी, ठीक है? नमस्ते
8: थैंक यू मैम।
0: मैम।
9: गुड इवनिंग मैम।
0: जी, क्या हाल है मीना?
10: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
10: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
0: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो अब, मुझे पक्का विश्वास
10: जी
0: है
10: मैम,
0: ना? हाँ, और गुंजन भी आगे बढ़ेगी बहुत।
10: जी मैम, अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की जी।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
10: और मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
0: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ, तभी
10: जी मैम,
0: इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे, वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।

where there will be better nannies than in anybody else. They are tools after all. They are nothing more than tools. उसको लेके सर पे नाचने वाली बात कुछ नहीं है, वो हेल्पफुल टूल्स है, साफ बात है, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस. क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमी को करना है, वो नहीं करेंगे. इसीलिए आज देम टू बिकम नानीज एंड हेल्प दोज चिल्ड्रन हैव फन. सो सम ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी इनोवेटिव for the next 2 years. I think I have seen some of these centers, and most of them are very nice. The first one was in Ulan. The first center in India was in Ulan, West Bengal, near Diamond Harbor. It's a beautiful campus. I would really ask many of you, if you are visiting West Bengal, to go and see. It's called Oceanic Library. It's a beautiful library. And so I think it was started in 2007. And we have another one in West Bengal, in Shantiniketan. And there are so many, like in Haryana, there are so many. And people have given havelis de dete hain, though. Ghar de dete hain. Zameen de dete hain. Sab kuch de dete hain. गिंजगढ़ है, वॉट अ ब्यूटिफुल लाइब्रेरी, वॉट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. ये सब हमने इतने साल में किया है, और बढ़ाएं और भले फूले, यही मैं कहूंगी. और गीता जी जिंदाबाद, सीता जी जिंदाबाद, और सबको जितने टीम, पूरा टीम हमारा जो है, वॉट अ वंडरफुल टीम. आई एम सो हैप्पी टू बी विद देम स्टिल. I hope to be with them for a few more years, inshallah. So that's what it is. And I wish to submit a great success. Thank you.

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാനാ ഹൈ ഓർ ആജ് കെ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ റഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നെ കെ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢ്നെ തോ ഹം ഹം അപ്നെ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കെ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കെ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं, पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीतम मूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलम्पिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: surgió Me. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए के भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
2: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूं कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेक अवे है, जिसे आपने कहा, वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
3: Of provisions providing exemption to a foreign company procuring data services from a specified data center. And this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. there is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
1: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
2: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून

0: होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं,
1: जी
0: जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है।
1: जी
0: तो सरकार ने ये सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाए जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी,
1: जी
0: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये एमडीआर का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो
1: जी
0: मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
2: विल कंस्यूमर्स पे एनी यूपीआई चार्ज? नो, यूपीआई हैज रिमेन्ड फ्री फॉर कंस्यूमर्स सिंस इट्स लॉन्च एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू मेक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट विदाउट पेइंग अ ट्रांसैक्शन चार्ज। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर एमडीआर विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउट अ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
0: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का, मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं, और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।

0: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
1: देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है, अगर वो अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो,
0: जी
1: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इम्पोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं।
0: जी
1: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तब उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: Nangi Karibia alone, catching honey party dia. Little sing sound not toy, ding long.
5: पर्वतों की गान कोकिला, श्रीमती कोकिला लेक टीपी, पद्मश्री 2026। कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव, जहां रहता है कार्बी समुदाय और कोकिला लेक टीपी। घुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी कोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
6: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
5: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक कोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़ा। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
6: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
5: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांदोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबीन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है। लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
6: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
5: श्रीमती पोकिला लेखदेपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
7: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
8: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ पशुधन, समृद्ध किसान। भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना केवल पशु स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान की आय, दुग्ध उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में टीकाकरण और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। NADCP के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है, जिससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2019 में FMD के 132 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 40 रह गए। ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं। तो सवाल ये है, भारत में पशु रोग नियंत्रण के इस बड़े अभियान को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसका किसानों और पशुधन की उत्पादकता पर क्या असर पड़ा है, और बदलते समय में तकनीक, डिजिटल निगरानी और वन हेल्थ जैसी अवधारणाएं इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
9: रोग मुक्त पशुधन की दिशा में राष्ट्रीय अभियान। भारत में पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ थी, जिनमें 302.79 करोड़ गौवंशी मवेशी शामिल थे। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज बेहद जरूरी है। खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, विकास, प्रजनन और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए FMD का प्रभाव केवल पशु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसान की आय पर भी पड़ता है। दूसरी प्रमुख बीमारी है ब्रुसेलोसिस, या गाय और भैंसों में होने वाला प्रजनन संबंधी रोग है। इससे पशुओं के सामान्य प्रजनन कार्य प्रभावित होते हैं और दूध तथा मांस उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत FMD से बचाव के लिए योग्य पशुओं का हर 6 महीने में टीकाकरण किया जाता है। वहीं 4 से 8 महीने की बच्चियों को ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनके जीवन काल में एक बार टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, इसमें पशुओं के कान टैगिंग, पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, सिरो निगरानी, बीमारी की पहचान, नमूना परीक्षण और टीकों के लिए कोल्ड चेन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बीमारी की पहचान समय पर हो, टीकाकरण का प्रभाव पता चलता रहे और जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जा सके। NADCP के तहत अब तक FMD के 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। टीकाकरण के बाद की निगरानी से भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में टीकाकरण के बाद की निगरानी में गायों की बच्चियों में 75.63% और भैंस की बच्चियों में 67.17% सेरो कन्वर्जन दर दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण के बाद बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है दूर दराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। ये टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के घर तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाती हैं।
10: पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पशुओं की संख्या, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ा सही और समय पर उपलब्ध डेटा हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशुधन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसंधान, वैक्सीन की गुणवत्ता, निगरानी और किसानों की सेवाओं की पहुँच को भी मजबूत किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
11: आज के समय में किसी भी बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए सही डेटा और वैज्ञानिक निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक निगरानी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दिशा में भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल पर पशुओं का पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी दी जाती है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इससे पशुओं की पहचान, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करने में मदद मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा यह है कि किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में प्रभावित पशुओं और क्षेत्रों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड और टीकाकरण की ट्रेसिबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं इस निगरानी को और मजबूत कर सकती हैं। टीकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इन प्रयासों का संबंध केवल बीमारी को कम करने से नहीं है। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 3000 किलोग्राम दूध उत्पादन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट है कि पशु स्वास्थ्य को अब केवल बीमारी की रोकथाम के नजरिए से नहीं बल्कि पशुधन की उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
10: वन हेल्थ का मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानना। अगर किसी पशु बीमारी की समय पर पहचान हो जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकता है। महामारी के अनुभवों ने हमें ये भी दिखाया है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इसी पहलू को समझते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में।
12: आज दुनिया के सामने संक्रामक और जूनोटिक बीमारियों का खतरा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इसलिए पशुओं में बीमारी की जल्द पहचान, प्रभावी निगरानी और समय पर नियंत्रण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी व्यापक सोच को मजबूत करता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है। भारत राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में वन हेल्थ से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करना है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तर्कसंगत इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बीमारी के प्रकोप की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा गया है। इसमें रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह NADCP ने भारत में पशु स्वास्थ्य को एक व्यापक और डेटा आधारित व्यवस्था से जोड़ने की नींव रखी है।
10: भारत के लिए पशुधन केवल कृषि से जुड़ी संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है और इससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश किसानों की समृद्धि के साथ साथ भविष्य की महामारियों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026, तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में। 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
1: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
0: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
1: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
0: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
1: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
0: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
1: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
1: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरीली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूं कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो गई थी। उसके दो रीजन है, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए। तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी, जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया, लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
3: जी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं।
2: जी, जी।
3: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की। एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की। तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को, और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पर एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी, और
2: जी,
3: इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिए।
2: यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपने आवश्यकताओं के लिए, राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहाँ पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी?
3: यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके। तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है, जहां से रिकवर किया जा रहा है
2: जी,
3: उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिल रही हैं।
2: जी जी जी।
3: लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
2: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
3: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर
2: जी,
3: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इंपोर्ट सस्ता हो रहा है
2: जी,
3: कोई
2: जी।
3: और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा। और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने, इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए।
2: जी जी।
3: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
2: यहां पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहे कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
3: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को।
2: अच्छा।
3: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है, ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
2: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
3: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा, और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा, स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
2: अलग हो जाएगा। यहां यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
3: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत है लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
2: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहां पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
3: अब तो सेंटर के अंडर आ गया, तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है।
2: जी जी।
3: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
2: जी,
3: तो एनवायरमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो। लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी, क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन है तो स्टेट में।
2: बिल्कुल।
3: और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक कि माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
2: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की, तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
3: जी बिल्कुल। स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है।
2: जी,
3: और
2: जी।
3: स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा, लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन। और जितने भी लाइसेंसेस हैं, बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
2: बिल्कुल।
3: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है।
2: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है। यहां फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
3: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है, प्राइमरीली दो चीजों के लिए, कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे।
2: जी,
3: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स। जी
2: हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
3: जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है, तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है। और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
2: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
3: जी बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं मोहम्मदपुर से आई हूँ। आज मैं आपको पिता के ऊपर शायरी सुनाऊंगी। वो जमी मेरा वो ही आसमान है, वो जमी मेरा वो ही आसमान है, वो खुदा मेरा वो ही भगवान है। क्यों मैं जाऊं कहीं उसे छोड़ के, पापा के कदमों में सारा जहान है। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ईसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। खुशियों से भरा हर पल होता है, जिंदगी में सुनहरा हर कल होता है। मिलती है कामयाबी उनकी जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। थैंक यू।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं बारिश का मौसम आ गया है जिसको हम मानसून सीजन कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मॉनसून स्थिर पानी, मच्छरों और रोग के साथ कई संभव स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकता है। मॉनसून क्या है, चलिए जानते हैं। मॉनसून या बरसात का मौसम मौसम की मिजाज में एक ऋतु संबंधी बदलाव है जो समुद्र से भूमि पर गर्मी, नम हवा, एक निरंतर अवधि के लिए वर्षा की उच्च अवधि बनाता है। गर्मियों के मॉनसून या बरसात के मौसम आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के साथ आता है। आइए जानते हैं कि मॉनसून या बरसात का मौसम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून या बरसात का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य चुनौतियां लाता है। बरसात होने पर हमने कई जगहों पर देखा है कि पानी जो है वो रुक जाता है, नालियों में, हमारे घर के बाहर। इससे क्या होता है कि मच्छरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा है कि बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां भी होती है कि अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें दस्त लगने की भी शंका हो सकती है। बरसात के मौसम में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं।

श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि हम इन मॉनसून से या बारिश के मौसम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में मच्छरों से हमें कैसे बचना चाहिए। मच्छर से बचने वाली क्रीम लगाएं। मच्छरों को अपने वातावरण से बाहर रखने के लिए घर में कॉइल जलाएं। वातावरण को साफ रखें। अपने आसपास घर के कोई पानी जमा होने ना दें। ये सुनिश्चित करें कि मच्छर प्रजनन ना हो सके तो स्थिर पानी को जमा ना होने दें, जैसे कि रूम कूलर, कोई भी कंटेनर पानी का या आपका फूलदान, इसमें पानी जमा ना होने दें। अगर उसमें पानी जमा होता है तो मच्छर वहाँ पर उत्पन्न होंगे। अगर हम अपने घर के आसपास की सफाई रखेंगे और पानी नहीं जमा होने देंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। श्रोताओं, अब जानते हैं कि भोजन और पाय पदार्थ के साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चे उत्पाद जैसे कि सलाद या फल को भी हम अच्छी तरह से पानी में धोएं। कोशिश करकर हल्के गुनगुने पानी में हम सब्जियों को धोएं। इस समय हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक से अधिक होते हैं। खुद को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी के साथ हाइड्रेट रखें, मतलब कि आपको साफ और सुरक्षित पानी पीना है। और इस दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ या साफ रख सकते हैं। अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाथ में छाता होना चाहिए या रेनकोट होना चाहिए, ताकि हम बारिश से बच सकें और सूखे रह सकें। कीचड़ में चलने से बचें, क्योंकि हमारे पैरों के नाखूनों में ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। खुद को सूखा रखें और गंदे पानी से बचें, क्योंकि इनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अच्छे से हाथ धोएं शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये हर दिन महत्वपूर्ण है। यह मॉनसून के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के प्रयास से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर अपने आप को भी साबुन से धोएं। अपने कपड़ों को डिटॉल और डिटर्जेंट में भिगोकर रखें। अपने आप को सुखाने के बाद कोई भी टैल्कम पाउडर अपने शरीर पर लगाएं। इससे हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। श्रोताओं, अपने साथ अपने घर की साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। घर को साफ रखना है। घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने देना है। घर में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से, जैसे कि डेटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, उसको पानी में डालकर पोछा लगाना है। घर की सफाई करनी है, ताकि हमारे घर में कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो और हमारे घर में कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए। खासकर उन जगहों पे जहाँ पर भोजन रखा है, और हमें भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए, जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, कोई भी आपकी पेट संबंधी बीमारियां ना हो पाए। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेबी बब्बर और हम बात कर रहे हैं डेंगू पे। डॉक्टर बब्बर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आज हम आपसे अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे कि डेंगू से कैसे बचाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा गीता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल हमारे दिल्ली में डेंगू फैल जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है, डर फैल जाता है, फोबिया हो जाता है। किसी इंसान को जरा सा बुखार होता है वो डर जाता है कि उसको डेंगू तो नहीं हो गया। अगर डेंगू है और किसी को घर में, तो वो ये सोचता है कि इससे मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं और ये आपने बहुत अच्छा किया कि जानकारी देने के लिए आपने ये लोगों को बताने के लिए कोशिश की है और मैं बड़ा आभारी हूँ कि लोगों को पता लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू फीवर है क्या।
0: हाँ जी,
1: डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है और उसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं एडिस, जो कि जो साफ पानी में होता है। जैसे कि आपने फ्लावर पॉट में पानी रखकर फूल रख लिए, कुछ लोग होते हैं वास्तु के चक्कर में पंखड़ियां रखकर फूल पानी रख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टायर फेंकते नहीं है और टायर को रखे रखते हैं उसमें पानी आ जाता है, कुछ गमलों में पानी आ जाता है, कुछ कूलर्स में पानी रख लेते हैं और कुछ वैसे पानी रख के रात को सोते हैं और वो भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो मच्छर है वो पनपता है और मच्छर वो घर में फैल जाता है। वो मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है और वो जब दिन में काटता है तो उससे लक्षण जो है उसको आने शुरू होते हैं। सबसे पहले उसको बुखार होता है।
0: हाँ जी,
1: बुखार में बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है और उसकी बॉडी में बहुत पेन होती है, उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। उसके बैक पेन में बहुत होता है और गलती से अगर कोई आदमी उसको डिस्प्रिन या एस्प्रिन या ब्रूफेन, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिस्प्रिन एस्प्रिन या ब्रूफेन खा लेता है और नहीं भी खाता तो उसको ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। खून जो है उसके नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, लैट्रिन के रास्ते आ सकता है या उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको पेटिकल हेमरेज कहते हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी को बुखार है पहले तो वो सिंपल क्रोसिन खाए, इसके अलावा कॉम्बिफ्लेन या डिस्प्रिन ब्रूफेन नहीं खाए। क्रोसिन जो है 500 मिलीग्राम की एक गोली आती है और अगर आपका शरीर का वजन 60 किलो से ज्यादा है तो आप 1.5 गोली ले लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सिरप आता है, ड्रॉप्स आते हैं, उस हिसाब से दीजिए। और आस पास किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर अपना प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट टेस्ट कराइए। अगर आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट है और हीमोग्लोबिन ठीक है तो डरिए मत। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पानी जरूर पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी किसी को डेथ हो सकती है। और इतना डरिए मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप प्लेन पैरासीटामोल ले रहे हैं और आपको कोई हेमरेज नहीं हो रही तो कोई जानलेवा खतरा नहीं है। अगर आपने डिस्प्रिन ले ली और ब्लीडिंग ज्यादा होगी और आपका प्लेटलेट काउंट 50 चला गया तो कुछ खतरा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल जाइए। ज्यादातर लोग जो हैं थोड़ा बेहोश होते हैं या उनकी नसें सूख जाती हैं, कोलैप्स होने की कोशिश करते हैं। अगर अस्पताल में जाकर उनको पानी चढ़ा दिया जाता है, ग्लूकोज या प्लेटलेट दिए जाते हैं पैक्सल, तो जान बच जाती है। ऐसा टेंशन लेने की नहीं है, पर उपाय से जो है वो बहुत जरूरी है। उपचार से उपाय यही है कि अपने आसपास पानी मत इकट्ठे होने दीजिए, कूलर को साफ रखिए, कूलर में मिट्टी का तेल डालिए, हफ्ते में उसको एक बार साफ करिए। छत पे या इसके आसपास कोई भी टूटे हुए बर्तन है, साफ बर्तन है या फ्लावर पॉट में पानी है उसको फेंक दीजिए। जब बारिश बंद हो जाएगी तो अपने घर की सजावट जैसे मर्जी करिए, पर अपनी सजावट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह पानी मत इकट्ठे होने।
0: डॉक्टर बब्बर, बहुत ठेले वाले और खाने वाले जैसे बाहर खड़े रहते हैं और वो एक ड्रम पानी का भी भर के रख लेते हैं जिससे वो बर्तन धोते हैं, और वो ड्रम भी खतरनाक हो सकता है।
1: नहीं नहीं, वो ड्रम जो धोता है पानी का वो उसको फेंक देता है, शाम को उसको फेंक के जाता है। क्योंकि एटलीस्ट जो साइकिल है वो उसका, पहले उसमें अंडा होगा, एग बनेगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट होगा, तो एक दिन तो नहीं होता ना, टाइम लगे।
0: हाँ जी,
1: सुबह उसने पानी भरा और शाम को उसको फेंक दिया, तो ऐसी कोई डेंजर नहीं है। क्योंकि आप भी तो घर में पानी भरते हो, जो भी पानी भरते हो सबसे बेस्ट है उसको ढक के रखिए। अगर आपने पानी ढक के रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, खुला पानी है और वो लगातार 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन है तो वो टेंशन। एक दिन में नहीं है कि उसने पानी भर के रखा और बर्तन धो रहा, तो नहीं, आप सब लोग धोते हैं, ऐसा कोई टेंशन हवा नहीं है, बस यही
0: पर
1: है।
0: ये एक मैसेज उनको जा रहा है कि अगर पानी भर के रख रहे हैं तो रोज तो को उसको रोज बदलिए,
1: बिल्कुल रोज बदलिए, और हमेशा पानी, चाहे बर्तन धो रहे हैं कुछ क्या, पानी ढक करके खुला पानी कहीं भी मत रखे।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो पानी हम बाजार से पीते हैं या कुछ है जो मशीन में पानी आता है, हालांकि वो मशीन में ढका हुआ होता है, पर पहले कहाँ से वो डाल रहे हैं?
1: वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बर्फ से पानी लेते हैं और बाजार से रेडी से पानी पीते हैं, अगर उसने पानी टैप वाटर से नहीं लिया, स्टोर्ड वाटर से लिया हुआ है, और पानी में कुछ जर्म्स हैं जिसके बैक्टीरिया पहले ही पनप रहे हैं, या वायरस पनप रहा है, या फंगस का रहा है, और उससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पानी यह है कि पानी उबाल के पीजिए, ढक के रखिए। अगर आप पानी नहीं उबाल सकते तो 1 लीटर में 1 क्लोरीन की टैबलेट डालिए और आधे घंटे तक उसको रहने दीजिए। आधे घंटे के बाद क्लोरीन का इफेक्ट आ जाएगा, आप पानी का सेवन कर सकते हैं, वरना आप बाजार से फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्वागार्ड लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है खोंचे वाले से कुछ मत खाइए, खुला पानी मत पीजिए, हाथ धोकर कुछ भी खाइए, खुद भी और बच्चों को ये समझाइए कि हाथ धोए बगैर आप कुछ भी मत खाइए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये जैसे घर के बाहर नालियां होती हैं, हालांकि वो नालियां प्रॉपर बनी नहीं हुई हैं, पर छोटी सी ऐसे जैसे एक धार पानी की बहती रहती है, पर पानी उसमें रुका हुआ है, क्या उसमें भी मिट्टी का तेल डालना
1: बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक है, वहां से तो डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा हो सकता है। जहां भी कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है, आप ये सोच लीजिए कि मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मिट्टी का तेल वहां जरूर डालें।

ये शरीर में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की अवधि है। ये परिवर्तन आमतौर पे 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति में होते हैं। किशोर अवस्था के 3 चरण होते हैं, अर्ली एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 14 से 17 साल और लेट एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 18 से 21 साल। आइए अब जानते हैं कि इस चरण में, इस एडोलेसेंस की चरण में, स्टेजेस में हमें क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली एडोलेसेंस के लिए। ये किशोर अवस्था 10 से 13 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियों में ये अवस्था 8 या 9 साल की ही उम्र में ही शुरू हो सकती है। यौवन, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, ये चरण भी शुरू हो जाता है। लड़कियां और लड़के दोनों तेजी से शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। अर्ली एडोलेसेंस भी एक ऐसा समय होता है जब कुछ लड़के लड़कियां भ्रम के अनुभव में रहते हैं। इस आयु में कई लड़कियों को मेंसेस साइकिल भी शुरू हो सकती है। अर्ली एडोलेसेंस में बच्चे सही गलत का फैसला खुद नहीं ले सकते और इसी के साथ साथ वो अपनी सोच को खुद पे ही केंद्रित करते हैं। आइए अब बात करते हैं मध्य किशोर अवस्था, जिसको हम मिडिल एडोलेसेंस कहते हैं। इसकी उम्र 14 से 17 वर्ष तक होती है। ये लड़कों के लिए प्रमुख शारीरिक परिवर्तन का समय होता है, लेकिन लड़कियों में ज्यादातर शारीरिक विकास की समाप्ति हो चुकी होती है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनकी वृद्धि भी तेज हो जाती है और कुछ के लिए मुहासे विकसित हो जाते हैं। जब दूसरों से जुड़े रिश्तों की बात होती है तो वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में ये उम्र सामाजिक और भावनात्मक रूप से देखी जाती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां अपनी आंतरिक पहचान विकसित करते हैं और अपने जीवन में निर्णयों को लेकर अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। इस आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां भी अलग अलग सोचने लगते हैं। वह अपनी प्राथमिकताओं से बाहर देखने और जीवन में बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं लेट एडोलेसेंस के बारे में, जिसकी उम्र शुरू होती है 18 साल से 21 साल तक और आगे भी बढ़ती है। इस अवस्था तक लड़के और लड़कियां दोनों की शारीरिक विकास पूरा हो चुका होता है। इस आयु में बच्चे अपने लिए बेहतर और स्थिर निर्णय लेना शुरू करते हैं। वह अपने भविष्य को लेकर जागरूक हो जाते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते गहरे और स्थिर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इस उम्र में बच्चे अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। वे अपने माता पिता को अपना रोल मॉडल बनाकर उनसे अपनी जीवन की सारी कठिनाइयों को शेयर करते हैं। हर किसी की जिंदगी में ये किशोर अवस्था जैसी उम्र आती है और हम सबको ये अवस्था बहुत समझदारी से और सूझबूझ के साथ निकालनी है। हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि इस उम्र में बच्चे कहीं गलत काम में ना फंसे। अभी तक के लिए इतना ही। आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे कि इस अवस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों को और उस प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे इसका सलूशन निकालें। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, एक बार फिर आपके साथ कुछ सेहत की जानकारी देने के लिए। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ किशोर अवस्था के बारे में जानकारी दी थी। आइए आज हम पढ़ते हैं कि किशोर अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होता है। किशोर अवस्था एक ऐसी स्टेज होती है सबकी लाइफ में जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो इन सब चेंजेस को बच्चों को डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस करते हैं वो है शारीरिक बदलाव। टीनेजर में हार्मोन लेवल के बदलाव के कारण शारीरिक बदलाव होता है। लड़कियों में पूर्ण रूप से जब उनकी चेस्ट फॉर्मेशन होती है तो उनको बहुत अजीब लगता है। लड़कियां अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। इस उम्र में लड़कों की आवाज भी भारी हो जाती है और उनके चेहरे में बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव सबसे प्रमुख बदलाव है किशोर अवस्था के दौरान होता है। मुंह पे मुहासे आने शुरू हो जाते हैं और ये प्रमुख कारण है फिजिकल चेंज का, शारीरिक चेंज का। इसी के साथ मांसपेशियां भी भारी हो जाती हैं तो वजन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियों की शरीर से गंदी बदबू भी जो पसीने की होती है वो आनी शुरू हो जाती है और लड़कियों का जो प्रमुख बदलाव होता है वो उनके मेंसेस शुरुआत हो जाते हैं। इन सब का कोई सलूशन भी है। घर में जो बड़े हैं, चाहे भाई बहन हो चाहे माता पिता हो, हम सबका फर्ज होता है कि हम बच्चों को पहले से समझा कर रखें कि ये शारीरिक बदलाव कैसे होता है और क्या क्या आता है। बता दें कि शरीर में बदलाव होना सामान्य बात है क्योंकि हर किशोर इससे गुजरता है। उन्हें इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी सहायता करें। पौष्टिक आहार और व्यायाम के माध्यम से उन्हें स्वस्थ और फिट रहने में सक्षम बनाएं। आइए अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेते हैं, वो है भावनात्मक परिवर्तन। हार्मोन ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपके किशोर को प्रभावित करते हैं। किशोर अक्सर इस उम्र में उलझे हुए रहते हैं कि वह बच्चे के रूप में अपनी इच्छाओं को पूरा करे या बड़े होकर जो जिम्मेदारियां हैं उनको देखें। वह अत्यधिक भावनात्मक महसूस करते हैं। कुछ भी और सब कुछ उन्हें उत्साहित, खुश और गुस्सा दिला सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि इस उम्र में लड़के लड़कियों में मूड स्विंग्स आम तौर से देखे जाते हैं। शारीरिक परिवर्तनों से वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। इस समय हीनता और शिष्टता का भाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भावनात्मक परिवर्तन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि लड़के और लड़कियों को किशोर अवस्था में उनकी देखभाल करने के लिए उनकी मदद करें। उन्हें ये बताएं कि जो वे महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करना ठीक है। उन्हें शारीरिक गतिविधि के रूप में व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस उम्र में हमें उनको बोलने देना चाहिए, बिना जज किए उनकी बात को सुने और जब वे इसके लिए तैयार ना हो तो उन्हें सलाह ना दें। यौवन के अपने अनुभव को साझा करें।
1: या उन्हें एक बड़े भाई या बहन से बात करने दें जो उसी से गुजरा हो। यह इस बात पर जोर देगा कि जिस तरह से वे उस दौर से गुजरे हैं, वे भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। एक रचनात्मक गतिविधि में लिप्त होने से उन्हें अपनी भावनाओं को प्रसारित करने की में मदद मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं कि व्यवहारिक चेंजेस क्या होते हैं। भारी भावनाएं अवैधपूर्ण व्यवहार का कारण बन सकती है, जो आपके बच्चे के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
0: किशोर अवस्था वह समय है जब बच्चे अपनी स्वतंत्रता का विकास और प्रयोग करते हैं। ये माता पिता के नियमों पर सवाल उठाते हैं और ये जो समस्या आती है जब किसी की जिंदगी में, तो आर्ग्यूमेंट बन जाता है माता पिता और बच्चों के बीच में। कभी कभार बच्चे जिद्दीपन भी दिखाते हैं कि वो अपनी बातों को लेकर स्टबन हो जाते हैं कि वो सही है और बाकी सब गलत है। मस्तिष्क में परिवर्तन बच्चों को मूडी, थका हुआ और किसी भी सिचुएशन को डील करने में मुश्किल बनाता है। बच्चों की ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल और फैशन की भावना भी बदल जाती है। ज्यादातर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें स्वीकार नहीं होता है। सबसे परेशान करने वाली जो बात माँ बाप के जीवन में आती है इस दौरान, जब बच्चे गंदी संगत में जाना शुरू कर देते हैं और अपने लाइफस्टाइल को भी उसी तरह धारण कर लेते हैं। ये उम्र में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे अपने आप को बचाने के लिए, चाहे किसी से बचने के लिए। चलिए आप जानते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। किशोरावस्था में व्यवहार संबंधित समस्या माता पिता के लिए जीवन को मुश्किल बना सकती है, लेकिन याद रखें कि ये एक गुजरता हुआ चरण है और पूरी तरह से सामान्य है। अपने बच्चे का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण है। उनसे बात करें और उन्हें सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों को जज ना करें और उनको आलोचना ना करें, क्योंकि इससे उनका व्यवहार बिगड़ सकता है। उन्हें बताएं कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे कि आप उन्हें बचपन में करते थे। उन्हें खुद के प्रति सच्चा होने के लिए प्रोत्साहित करें और दूसरों से अच्छा व्यवहार रखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। याद रखें कि आपका बच्चा अपनी भावनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है और उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है। उन्हें ये बताकर उनकी मदद करें कि जब आप उदास, क्रोधित, ईर्ष्या आदि महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं। यदि आप उन्हें बुरी संगत में गिरते हुए देखते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा और बुरा दोनों समझाना चाहिए। अंत में ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चों को आलोचना पसंद नहीं है, तो हम माता पिता का ये फर्ज है कि उनको प्यार से सही और गलत का फर्क समझाएं। अभी तक के लिए धन्यवाद। हम आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्टेंस ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आमतौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की रिपीट नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

के पास बहुत सा कार्यक्रम होता है। वह एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जब जाते हैं तो वह खाने को और आराम को लेकर सुध-बुध खो जाते हैं। उन्हें खाने का और आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। अस्वस्थ खाना, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उनकी पोषण पे रोक बन सकता है। उनके शरीर के बारे में चेतना, क्योंकि वो अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनका खाने पर ध्यान हट जाता है, खासकर लड़कियों का। तनाव से छोटे बच्चों में भूख ना लगना और नींद ना आना भी हो सकता है। अनहेल्दी खाने की आदतें और कम व्यायाम करना मोटापे का कारण बन सकती है। ये अक्सर तब होता है जब बच्चे बहुत सारा जंक फूड लेते हैं या बहुत सारा सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा हो जाती है और वह मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। माता पिता का मार्गदर्शन एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं में मदद कर सकता है। उदाहरण के साथ अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रेरित करें, सही व्यायाम करने का और समय पर सोने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने भोजन के माध्यम से पोषण मिले, उन्हें संतुलित आहार दें, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उनमें जो बदलाव आया है उनके साथ खड़े होकर उनकी मुश्किलों पर उनका साथ दें। आइए अब जानते हैं कि आखिरी समस्या क्या आती है इस उम्र में। ये समस्या का नाम है मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है या बिल्कुल भी खा या सो नहीं रहा है, तो ये जरूरी है कि आप उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें। इस उम्र में देखे जाने वाले मानसिक समस्याएं सबसे आम जो है वो एंजाइटी है और मूड डिसऑर्डर्स हैं। इस उम्र में सामाजिक भय आमतौर से देखा जाता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में डिप्रेशन डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। बच्चों में आमतौर से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की समस्याएं भी देखी जा सकती है। आमतौर से एक और चीज भी बच्चों में देखी गई है इस उम्र में, जिसको हम बोलते हैं इन्फियोरिटी एंड सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बच्चों के रंग रूप ढंग से बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में डिप्रेशन सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या पाई जाती है। चिंता एंड प्रेशर इस उम्र में एंजाइटी इश्यूज भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मूड में चेंज आमतौर से देखा जाता है तो वो हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी उनको गुस्सा आ सकता है, कभी वो बहुत खुश हो सकते हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्यादातर समय समस्याओं के बारे में बात करना या स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनको डिप्रेशन से आप दूर लेकर जा सकते हो। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है तो आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी मदद लें। अक्सर ये भी देखा गया है कि लड़का या लड़की केवल घर पे ही ना खुश होते हैं और बाहर ठीक होते हैं। इसके लिए आपको उनके टीचर्स या दोस्तों से जानना है, उनसे बात करनी है कि क्या उनका मूड स्विंग स्कूल में भी दिख रहा है कि सिर्फ घर में है। उनकी भावनाओं को दूर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें और खराब हो सकती हैं। बच्चों के साथ जितना भी आप समय बताएं, उनके साथ बात करें और उनकी समस्याओं को सुने। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें कि सही गलत क्या है और उन्हें ये समझाएं कि आगे के जीवन में कैसे फैसले लिए जाते हैं।
और नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे जाया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। हम अगले सेशन में फिर से किसी हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।

मेरा नाम कार्तिक है। मैं कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मैं शहबाद मोहम्मदपुर के रीड इंडिया लाइब्रेरी में आता हूँ। मैं आपके सामने पोएम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से नित गाना, दिनकर की किरणों से सीखो जगना और जगाना, चिड़ियाओं से हंसकर सीखो सबसे हिल मिल करना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान।
1: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी।
2: मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहां से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला जो जो आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया।
1: पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही।
2: 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड जाती आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं उस सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने जमीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। किसान पवन का मानना है कि अगर सही रख रखाव के साथ केचुए को रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट के लिए फायदा होता है। इस बारे में पवन क्या बताते हैं सुनिए।
2: बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी है और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुए की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए, खाद भी बनाते हैं, खुद भी डेवलप करते हैं। ये
1: केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
4: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहाँ पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
1: वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
2: इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कम से कम इस केचुआ के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहां से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे।
1: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
2: तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए।
1: पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा, तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है चाहे ये जो खाद का जो काम है वर्मी कंपोस्टिंग है मैं वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं तो पशु का जितना भी अवशेष है चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मी वास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि वर्मी वास गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी।

0: की मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
1: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है। जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
2: जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफिशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है, और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियां हैं बाहर चरती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहां पे जाके अपना धूप सेकते हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर रहती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यही करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मुर्गियों मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला, वहां चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है।
1: पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं लेकिन नौकरी रास नहीं आई।

0: कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान ले तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए।
1: मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना, वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया, तो लगभग मेरा लगभग 15 साल का ये अनुभव है।
0: कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की, तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को, बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
2: आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इन सबको एक संग्रहित एरिया में, संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग खेतीबाड़ी में हो रहा है, इससे हमारी जो जमीन है वो इन रसायनों से के दुष्प्रभाव से दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले अनाज दूषित हो रहे हैं जिसको हम भोजन में ले रहे हैं, और इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी शक्ति है, वो क्षीण होती जा रही है। तो अगर हम अपने खेतों में एकीकृत रूप से खेती करें, तो इसमें इंटीग्रेशन के रूप में अगर खेती करें, तो जिन खेतों में हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर हम अपने जो एकीकृत खेती हमारी है, जहाँ पर कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, इनके खाद का जो इनका वेस्ट है इनको सड़ा गला करके अच्छे से खेतों में प्रयोग करेंगे। उस खेतों का जो प्रयोग करेंगे जिस खेत में, उसमें निश्चित ही तौर से जो रासायनिक उर्वरकों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसमें रोग व्याधियां कम आएंगी और फसल का जो उत्पाद होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा।
0: पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं।
3: तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की। हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकेनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम वेल्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंस्ट्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती दो चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूँकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं इंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जीतोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ, जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं। और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सेलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार जी जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था HD 226 उसका विकल्प HD 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था, और इसको मैंने बिजाई सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था, और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक के फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है, और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं, और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
4: की सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
0: सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में, जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया, यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
5: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशु पालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशु पालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
6: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए, तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा।
5: जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
6: जैसे मैंने देखा है, सुना है कि जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन या नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से, जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सब जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
7: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेडा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज ये जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर, और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
8: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
0: इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए, और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
8: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और कैसे ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उप निदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
9: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है, और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन है, और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं, और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं, और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है। हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
3: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है, और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है, और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है, और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है, और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है, और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
10: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
2: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था। मेरे पास में अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था, और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी, और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो
6: बिक्री थी वो मेरी लगभग लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और खर्चा मेरा वही था लगभग 4.25-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
11: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपना कर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
0: तो ये था हमारा आज का सफल किसान जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेल नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

0: घर नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

दृष्टि के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2017 के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा हुआ है, तो आइए लेख की शुरुआत करें। सतत विकास लक्ष्य और भारत। हाल ही में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने और मौजूदा वक्त में दुनिया भर में संसाधनों की स्थिति को रेखांकित करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर उभर रही चुनौतियों को रेखांकित कर वर्ष 2030 तक प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की बात की गई है। इस रिपोर्ट में 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। चूंकि भारत के समक्ष भी कई समस्याएं चुनौतियां बनी हुई हैं और भारत सरकार भी 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, लिहाजा यह रिपोर्ट भारत के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सतत विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस तरह प्रयोग करना कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, लेकिन मौजूदा वक्त में बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों के अत्यधिक दोहन होने से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीयों के लिए सतत विकास कोई नई अवधारणा नहीं है। प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में भारतीयों की गहरी आस्था बहुत पुरानी है और यह हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित भी होती है, लेकिन देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण हमारी सतत विकास की अवधारणा कमजोर पड़ रही है। इसके दूसरे कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। आइए अब जानते हैं कि वे 17 लक्ष्य क्या हैं जिन्हें प्राप्त करने की योजना है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्व समुदाय ने एक रूपरेखा तैयार की है। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य जो वर्ष 2016 से 30 तक के लिए लक्षित किया गया है, पहले से लागू सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान लेगा। दरअसल सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है जिनकी प्राप्ति की योजना बनाई गई है। इनमें पहला है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति की कोशिश। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में पूरे विश्व में 77 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते थे, जो कि मौजूदा वक्त में कुल आबादी का 11% है, जबकि 1999 में 28% आबादी गरीब थी। दूसरा लक्ष्य भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में 93 करोड़ लोग पोषण युक्त भोजन से वंचित थे, जबकि 2016 में इनकी संख्या 80 करोड़ थी। तीसरे लक्ष्य की बात करें तो सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की योजना है। चौथा लक्ष्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना है। पांचवें लक्ष्य में लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने की चर्चा है। छठे लक्ष्य की बात करें तो इसमें सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सातवें लक्ष्य में सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। आठवें लक्ष्य के अंतर्गत सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देने की योजना है। नौवें लक्ष्य की बात करें तो इसमें लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। दसवें लक्ष्य के तहत देशों के बीच और उनके भीतर असमानता को कम करना है। इसमें मुख्यतः आर्थिक असमानता की बात कही गई है। अगर 11वें लक्ष्य की बात करें तो इसमें सुरक्षित और आपदाओं से शीघ्र निपटने वाले शहर और मानव बस्तियों के निर्माण का जिक्र है। 12वें लक्ष्य के तहत इस बात की चर्चा है कि कैसे स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित किया जा सके। 13वें लक्ष्य में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और 14वें लक्ष्य में स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र
और समुद्री संसाधनों के संरक्षण व उनके उपयोग की चर्चा है। 15वें लक्ष्य में सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है। जहां तक 16वें लक्ष्य का प्रश्न है, तो इसमें सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाने की बात कही गई है, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। अंत में 17वें लक्ष्य की बात करें, तो इसमें सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त इन्हें लागू करने के साधनों को मजबूत बनाने की चर्चा है। इस तरह हमने देखा कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा विश्व समुदाय किस तरह चिंतित है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्नशील है। आइए अब जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशन की यह रिपोर्ट पूरे विश्व को समृद्ध बनाने की सोच के साथ जारी की गई है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो यूनाइटेड नेशन की यह रिपोर्ट कई मायनों में भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है। गरीबी से लेकर भूखमरी तक के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की स्थिति बेहतर नहीं है। सतत विकास सूचकांक 2017 में भारत 157 देशों की सूची में 117वें पायदान पर खड़ा है। जाहिर है, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी इस सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट से भारत के लिए कई तरह की उम्मीदें जगी हैं। अगर पिछले दो दशक का जायजा लें तो भारत की स्थिति में निर्णायक सुधार देखने को नहीं मिले हैं। गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात यानी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो की बात करें तो 1990 में जहां यह 47% था, वहीं 2011-12 में घटकर यह 21% हो गया। जाहिर है, गरीबी उन्मूलन की समस्या भारत के सामने अभी भी चुनौती बनी हुई है। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के कुपोषितों में से 19 करोड़ कुपोषित लोग भारत में हैं। भारतीय आबादी के सापेक्ष भूख की मौजूदगी करीब 14.5% की है। मौजूदा वक्त में भारत में 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चे सही पोषण के अभाव में जीने को विवश हैं, जिसका असर मानसिक और शारीरिक विकास, पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है। यह भी एक तथ्य है कि 1990 में ऐसे बच्चे 53% थे और 25 वर्ष बाद भी जब हम न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की राह पर हैं, तब 38% बच्चे पोषण युक्त भोजन से वंचित हैं। जहां स्वास्थ्य समस्याओं का सवाल है, तो हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी एवरी चाइल्ड अलाइव रिपोर्ट में नवजात मृत्यु दर में भारत की स्थिति कुछ बेहतर नहीं बताई गई है। इसके मुताबिक भारत में प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 25.4 बच्चों की 28 दिनों के भीतर मौत हो जाती है और इसकी हालत पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल तथा भूटान से भी खराब है। इसी प्रकार शिक्षा, ऊर्जा, लिंग समानता के साथ साथ दूसरे विकास की राहों पर भी अभी भारत को लंबी दूरी तय करनी है। अब सवाल है कि भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी दूसरी चुनौतियां क्या क्या हैं। दरअसल भारत में स्थिति के सही आकलन के लिए जरूरी तकनीकी और वैज्ञानिक पैमाने की अभी भी कमी है। हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की बड़ी खामी यह रही है कि अभी भी परिणामों के आकलन के लिए प्रासंगिक सूचकों को ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सका है। मसलन गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी वगैरह के सही आकलन के लिए अभी भी कोई ठोस पैमाना विकसित नहीं हो सका है। गरीबी को ही लें तो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों ने ही गरीबी का अलग अलग पैमाना प्रस्तुत किया है। 2005 में गठित तेंदुलकर कमेटी ने शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना, जबकि 2012 में गठित रंगराजन कमेटी ने 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को अमीर माना। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबी की परिभाषा में फर्क दिखता है। दूसरी तरफ उपलब्धियों का आकलन और मापन के लिए कोई खास तरीका अब तक विकसित नहीं किया जा सका है। सरकारों की आपसी खींचतान, आंकड़ों और सूचनाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रशासनिक लचरता जैसी समस्याएं लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोधक हैं। इससे बेहतर होते हालात की भी सही जानकारी नहीं मिल पाती। इससे इतर नीति आयोग पर प्रगति की निगरानी का महत्वपूर्ण जिम्मा है, लेकिन इस संदर्भ में उचित संरचनात्मक तंत्र अभी तक नहीं बनाया जा सका है। गौरतलब है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना इसी नियत से की गई थी कि संरचनात्मक तंत्र को बेहतर किया जा सकेगा। इससे परंपरागत तरीकों को छोड़कर एक नई विधि विकसित करने की उम्मीद थी,
लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। जाहिर है भारत को सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए और भी गंभीरता दिखाने की जरूरत है। अब जानते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्तर पर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में होने वाली प्रगति को मापने के लिए सतत विकास सूचकांक विकसित किया गया है। यह बहुत सारे देशों के लिए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों को निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में आ रही मुश्किलों और खामियों को रेखांकित करता है ताकि उन पर ध्यान देकर वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और लक्ष्यों को 2030 तक पूरा कर सकें। इसके अलावा सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में 2015 पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत किए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नए एजेंडा के निर्णायक दस्तावेज को औपचारिक तौर पर अंगीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 150 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 साल में गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना है तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। हमारा यह लेख संयुक्त राष्ट्र के जिस रिपोर्ट पर आधारित है वह रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का ही एक पहलू है जिसमें विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति को रेखांकित किया गया है। भारत के प्रयासों की बात करें तो भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी करने तथा इनके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। नीति आयोग ने 2016 में सभी 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालयों में बांटा है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर दी है। भारतीय संसद का अध्यक्षीय शोध कदम यानी SRI जो हाल ही में स्थापित किया गया मंच है वह सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमारे सांसदों द्वारा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाता है। हमारे संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा सभी राज्यों को कहा गया है कि इन सतत विकास लक्ष्यों के मामले में अपना दृष्टिपत्र बनाएं। इस तरह देखें तो भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आइए अब भारत के संदर्भ में निष्कर्ष की बात करते हैं। दरअसल भारत एक विशाल देश है, साथ ही यह विविधताओं से भी भरा हुआ है। लिहाजा इसकी विशालता और विविधता नीतियों के क्रियान्वयन में कभी कभी रुकावट बन जाती हैं। दूसरी तरफ आजादी के 70 साल बाद भी गरीबी सन 1960 के फॉर्मूले से तय की जा रही है। ऐसे में एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या हो। सच तो यह है कि अगर भारत को सतत विकास लक्ष्यों को तय वक्त में हासिल करना है तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो। साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक प्राप्त नहीं कर सके थे तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तय नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर और मजबूत नहीं था। हालांकि यह भी सच है कि सतत विकास लक्ष्यों को पाने में हमारी रफ्तार अभी धीमी जरूर है, लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं और इस दिशा में हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूयॉर्क में जुलाई 2017 में आयोजित हुए उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर सक्रियता दिखाना बताता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कितना गंभीर है। फिर भी संपूर्ण विकास और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए जरूरी है कि संजीदगी के साथ प्रयास किए जाएं। इसके लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है।

पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहां पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियां उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियां खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के

0: ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियां व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोता को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाएं साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर की कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है या कहीं गंदगी फैली होती है, वहाँ अगर आप रहते हैं या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेनली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: आई एम मधु, आई लिव इन कुतुब एनक्लेव एंड एज फार एज माई नॉलेज गोज, कोलेरा इज कॉज्ड बाय द पैथोजन कॉल्ड वाइब्रियो कोलेरे। इट्स अ वाटरबोर्न डिजीज एंड वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ वाटर वी ड्रिंक। इन आर होम वी हैव गॉट द जीरो बी फिटेड ऑन टू द ड्रिंकिंग वाटर टैप सो दैट वी आर एबल टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है, तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि क्या ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बाजार से खुला खाना मत खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना चाहिए
8: और गर्म भोजन खाना चाहिए, जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट में भी होता है क्योंकि एडल्ट ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है और ये बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है, बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है?
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं, जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी माड़ का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं। और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है इसके?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे?
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है, हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं,
7: अगर आप समय पे डॉक्टर
8: के पास पहुंचे। एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools ऑफ थॉट वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ वाइल। तो उससे क्या होता है कि यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पुल, सुरंगें, मेट्रो, पानी और आवास, ये सभी सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बदल रहा है, रेलवे और सड़कों से लेकर हवाई और समुद्री संपर्क तक क्या विस्तार हुआ है और किस तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवास और रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेलवे तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
2: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1,155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्रियों की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की। वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1,728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है। ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
3: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3,291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3,030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
1: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा, हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए, और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तरका सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisan@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यवसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: किसी का नाम
1: इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गैस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में

0: में नहीं आई। आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
1: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो

0: ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आप आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: किसानों की जागरूकता के लिए कार्यक्रम है जिसमें पराली जलाने जल संरक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पराली जलाते हैं इसको बोलते हैं बर्निंग, मतलब पराली को जलाना। तो ये मतलब आप लोग सब लोग यहाँ पे धान की ही खेती होती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि धान मतलब पराली को जब धान कट जाता है तो धान की पराली को जलाना पड़ता है। क्यों जलाते हैं? एक उसके दो तीन कारण होते हैं कि एक तो जैसे जहां दीमक की समस्या होती है तो वहां अगर पराली खेत में छोड़ देंगे तो एक तो दीमक लग जाती है उससे, तो अगली फसल में नुकसान। दूसरा ये होता है कि खेत ढंग से तैयार नहीं होता, अगली फसल की बुवाई के लिए खेत ढंग से तैयार नहीं हो पाता। बहुत कम धान का जो हमारे पास में धान और गेहूं बुवाई का जो समय होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो उसमें धान का जलाने से ही उसका सॉल्यूशन हो पाता है, उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है, जो दुनिया भर की मशीनरी दे रही है, या उसके लिए और भी जैसे हैप्पी सीडर वगैरह आ रहे हैं या मल्चर वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट इतनी है कि उसको किसान खरीद नहीं पाता, या उसको अगर उससे भी लेता है किराए पर जैसे आपके यहाँ जो सेंटर चलते हैं तो वो भी इतने महंगे पड़ते हैं कि किसान उसको तो उसको जलाना आसान लगता है। जमीन तो बोल दी नहीं, जमीन तो नहीं बता रही है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बीमार हो रही है, तो जमीन भी बीमार हो रही है। तो जमीन बीमार कैसे होती है? एक तो मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, आप जो जमीन में खाद दे रहे हो नाइट्रोजन पोटाश और फॉस्फोरस दे रहे हो, ये पौधा ही लेता है ना, हवा में उड़ता तो नहीं, उसी पौधे में है, आपने जला दिया तो वो तो सब धुआं बन के उड़ गया। तो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश सल्फर क्योंकि ये ज्यादा निकलते हैं तो ये आपके जल के सब हवा में उड़ गए, तो आपकी जमीन से धीरे धीरे करके कम हो रहा है।
2: अभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो खेती है ना जिसके चार प्रमुख अंग हैं, जल जंगल जमीन और जल, जल के बारे में हमें पता है, जंगल को हम समझते हैं, जमीन को हम समझते हैं, एक चीज की कमी है जानकारी। हम क्या बांटते हैं कि कोई हमें बाहर से आएगा वो हमें कुछ बता के जाएगा और फिर हम उसकी बात पर करेंगे, जबकि जानकारी वो चीज होती है जो प्रैक्टिकल किसी ने कर रखा है, हमारे गांव में किसी ने कर रखा है, किसी किसान ने कर रखा है, उस प्रैक्टिकल को हम वापस अपने खेत में अगर अप्लाई करें उस चीज को हम जानकारी समझते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले आगे किसानों में ट्रांसफर हुआ है। आज जितनी भी समस्याएं हम जिनको बहुत बड़ी समस्या मानने बैठे हैं ना, इन समस्याओं के मूल में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सबसे मोटी बात यह है, खेती अकेले करने का काम ही नहीं है। जब से हमने खेती अकेले के लिए करनी शुरू करी है तब से समस्याओं के ढूंढने शुरू हो गए। खेती है मिलजुल के करने का काम, जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा थी जंगवारा, जो सब कुछ शेयरिंग बेसिस पे होता था। आज एक किसान के खेत पर काम है, बाकी लोग दूसरे खेत पर आ गए, उनका काम करा दिया, लेबर के पैसे बच गए, खाना खा लिया, उसका काम संभवा के दूसरे के खेत पे चले गए, फिर तीसरे खेत पे चले गए। जब तक ये सिस्टम हमारे चल रहे थे तब तक खेती टोटे का काम नहीं था, खेती में पैसे भी बचा करते थे और सारे सिस्टम उसके मजबूत थे। और खासकर बात क्या थी, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थी घर की, मतलब मानस मजबूत था। आज हरियाणा एनीमिया में नंबर दो पे है, नंबर एक पे आसाम है, महिलाओं में एनीमिया पे नंबर दो पे हरियाणा, इतनी उत्पादन होने के बावजूद। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी जो तमाम जितनी भी जानकारियां थी, हमारे सिस्टम थे, प्रोसीजर थे, एक एक करके हमने, हमारे खेत में 150 किस्म का कीड़ा है जो साल भर में हमारे खेतों में आता है। हमें एक बात बता दी भी, मित्र कीट शत्रु कीट, कीड़ा हमारा नाम ही नहीं जानता, कीड़े को पता ही नहीं ये किसकी जमीन है। कीड़े का तो दो ही काम है, अपना पेट भरना और अपने बच्चे पालना, तीसरा काम नहीं कीड़े का। हमने ये कीड़े छेड़े पहले, फिर ये छिड़ गए, और छिड़ गए उसके बाद ये ऐसे छिड़े, हम 50 साल हो गए इनको मारते मारते मरे नहीं। हमने ये और ज्यादा ऐसे बिगाड़ लिया सिस्टम कि हम कॉटन में 10 स्प्रे से लेके 11 12 13 14 स्प्रे तक चले गए। असली चीज क्या है, हमारे को बहुत सारे छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं। जैसे आज हमारा विषय है पराली ना जलाना, पराली कोई नहीं जलाता, खाना जलाता। पराली कोई नहीं जलाता, जो फाने बचते हैं वो फाने फाने जलाते हैं, और ये फाने हाथ की कटाई में कोई फाना नहीं बचता, मशीन की कटाई में फाना बचता। हमने अपनी सुविधा के लिए हल निकाला, दूसरी समस्या हमने साथ की। अब चक्कर क्या है, हमारी जो सॉइल है ना जी, उसका हाजमा कमजोर कर लिया। असली कारण, असली समस्या ये है कि पराली अगर खेत फाना अगर खेत में तो गलता नहीं, उसके लिए हमें यूरिया मारना पड़ता है। अब वो जो हमने हाजमा जो कमजोर कराया उसका, उसकी वजह क्या है, हमारे को मिट्टी की समझ नहीं। अगर हम मिट्टी की समझ बढ़ाते हैं हमने, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं कमजोर खत्म होती है। जैसे इस समय समझेगा पानी पानी खेतों में खड़ा है, आप वहीं पानी हटा के खोदना शुरू करो, एक डेढ़ फुट के बाद चुका है, पानी नीचे नहीं जा रहा। वो पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा कि हमने जो पानी जाने का सिस्टम था उसको अपने हाथ से बंद किया। और वो पानी जाने का सिस्टम क्या था, केचुआ। केचुआ को खाने को क्या सामान चाहिए, फसल शेषी या उसको हम थोड़ी बहुत गोबर की खाद गिर दिया करते थे, बाकी अपना वो गुजारा खेत में करता रहता। अगर हमें खेत में चलते हुए कीड़ों के बारे में पता लग गया, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा, तो हमारे मन में से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो जाएगा तो हम सप्रे जब करेंगे, जब वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर मामला जाएगा।
3: अगर हम पेडिस्टोल जलाते हैं ना, तो उसका एनुअल मतलब पूरे साल में जितना हम अपना न्यूट्रिएंट खत्म करते हैं खेत से, 3.85 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक कार्बन, जो कार्बन हम खेत से उड़ाते हैं, 49,000 टन नाइट्रोजन खेत से उड़ता है, 20,000 टन फॉस्फोरस खेत से उड़ता है, और 34,000 टन पोटाशियम खेत से उड़ता है। इन्हीं चार की बात की थी उन्होंने, उसके अलावा सल्फर मैंने इसमें लिया नहीं है। ये चार मेन न्यूट्रिएंट है, और इसके लिए हम स्प्रे भी बहुत करते हैं। यूरिया हम डालते हैं नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, सारे लोग डालते हैं, दो कट्टे की जरूरत है पर हम 4 से 5 डालते हैं। डीएपी हम बहुत डालते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इसी चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये फैक्ट है।

0: उसके बाद कद्दू करते हो डीजल भी लगता है, उसके बाद आपको खेत में पानी भर के रखना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें सीधी बिजाई में दूर हो जाती है। और सीधी बिजाई आने वाले समय में खासकर हरियाणा पंजाब में अगर हमने धान के फसल चक्र में रहना है तो ये जरूरी हो जाएगा। तो इसकी तरफ हम लोग एक तकनीक लेके आए हैं और इसमें भी आपका सहयोग हमारे को चाहिए पड़ेगा आगे के लिए, उसकी तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। मैं रीड इंडिया और लखनौरा विलेज की तरफ से सवारा सीट्स की टीम, कवलजीत सर, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यही सेशन हम आगे करते जाएंगे, आज बस शुरुआत है। तो प्लीज सेंटर पे आते रहिए, एक बार ही आपको स्टाफ से भी नॉलेज मिलेगी। और कोई भी आपका डाउट होगा जो आज सेशन हुआ उससे रिलेटेड, प्लीज अपना डाउट स्टाफ से जरूर शेयर करिए ताकि हम अगला सेशन जो है उसी टॉपिक पे करवा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: ओ, यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे

उम्र कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है, तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है, इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते। जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई, वो की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर चार भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। दो, इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट, यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, दो तीन दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज वन से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है। जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट, जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।
1: सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है, चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो। और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर्स, गले के कैंसर्स, टट्टी के मार का कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा, और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वर पेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं, जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से न हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
3: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
3: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है यूपीआई के 10 वर्ष, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक अहम माध्यम बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया यूपीआई अब अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 10 वर्षों में यूपीआई के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए वार्षिक लेन देन की मात्रा 1,78,00,000 थी, वही वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री बताते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये नीति, प्रक्रिया और वितरण का एक शक्तिशाली संगम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।
1: तो सवाल है, यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को किस तरह बदला? छोटे से छोटे दैनिक भुगतान से लेकर बड़े धन हस्तांतरण तक इसकी भूमिका कैसे बढ़ी और भारत का ये डिजिटल भुगतान मॉडल किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और व्यापक बनाने में यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूपीआई का ऐसा अंतर संचालनीय भुगतान माध्यम है जिसके जरिए लाभार्थी को राशि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इस अवधि में यूपीआई लेन देन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 188% रही। वहीं वार्षिक लेन देन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 155% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन देन की मात्रा में वर्ष दर वर्ष 30% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 84% रही और वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। यूपीआई का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। यूपीआई के शुरुआती महीने अगस्त 2016 में 90,000 लेन देन हुए थे। आज वही प्रणाली एक दिन में औसतन 66 करोड़ लेन देन संसाधित कर रही है। ये बदलाव केवल तकनीकी विकास का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डिजिटल भुगतान किस तरह

0: भुगतानों में यूपीआई की भूमिका कितनी बड़ी है, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
1: यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यापक और विविध इस्तेमाल। यूपीआई के लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन कुल लेन देन की मात्रा का 63% है। इससे पता चलता है कि छोटे और बार बार होने वाले खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन मूल्य के मामले में सबसे अधिक है। कुल लेन देन मूल्य में P2P की हिस्सेदारी 71% है। यानी UPI एक तरफ रोजमर्रा के छोटे खुदरा भुगतानों का माध्यम है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच बड़े धन हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वहीं P2P लेन देन में 59% भुगतान 500 रूपए से कम के थे। इसके साथ ही 500 रूपए से अधिक लेन देन की हिस्सेदारी 41% रही। UPI ने डिजिटल विभाजन को कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। लेकिन UPI की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में UPI ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आज यह कई देशों में संचालित हो रहा है और सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है।
0: भारत में शुरू हुई UPI की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने UPI को लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 49% रही। तो किन देशों तक पहुंच चुका है ये UPI और आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
1: वैश्विक मंच पर UPI और डिजिटल भुगतान का अगला दशक। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरू हुआ UPI आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। UPI की अभूतपूर्व वृद्धि, विश्वसनीयता और अंतर संचालनीयता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 49% रही। भारत में UPI के जरिए हर दिन औसतन 66 करोड़ से अधिक लेन देन संसाधित किए जा रहे हैं। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। UPI अब सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में UPI 11 देशों में संचालित है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल है। इसका अर्थ है कि UPI का प्रभाव अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है, ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की वैश्विक पहुंच को भी दर्शाता है। UPI की सफलता को केवल लेन देन की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसकी बड़ी उपलब्धि ये भी है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों और व्यापारियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को UPI पारितंत्र में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।
0: भारत में UPI के 10 वर्ष डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कहानी बताते हैं। UPI से जुड़े सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 44 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 703 हो गई। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाना UPI के अगले दशक की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।

0: इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच गीता जी।
0: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं, और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
1: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
0: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में 3 बातें आ गई हैं, और 3 बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें?
1: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है. जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर जॉइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता. बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया. 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं. तो जो आजकल की जेनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती. सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना. सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए. बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी. माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है. तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही हैं. वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है.
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही है पर हमें देने का तरीका बदलना है. देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है. हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है. उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है. मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हम आज हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं. जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं. और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का.
1: थैंक यू सो मच.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्राऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरेक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्विटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
3: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये बीमारी है ग्लॉकोमा। आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है।
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है। दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं। प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं। इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्रैबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है। दरअसल ट्रैबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं, सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्राइकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्राइकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसकी शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिए। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिए। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने। ज़्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो ज़रूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हों तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, आज का विषय है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव क्या होता है, तनाव का क्या कारण है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव हम सबके लिए बहुत आम हो गया है और बहुत सारे लोग इस तनाव से जूझ रहे हैं। हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई बार ऐसी हालत आ जाती है कि हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं। तनाव होना एक सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। तनाव होने पर हमारे शरीर में एड्रेनलिन, जो एक किस्म का हार्मोन है, वो पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, सनसनी महसूस होने लगती है और कई बार शरीर में रोएं भी खड़े हो जाते हैं। श्रोताओं, अक्सर हमने ये सब देखा होगा पर हमें महसूस नहीं होता है कि हम तनाव में होते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक रहता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमारी बीमारियों से भी निपटने की क्षमता कमज़ोर होती है। इसका मतलब साफ है कि तनाव उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़ता है। क्या इस स्थिति में निपटने का कई आसान तरीका हो सकता है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये पता लगा सके कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो हम मुश्किलों से अधिक स्पष्ट तरीके से निपट सकते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब कि ज़्यादा तनाव लेने से क्या होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और उम्र कम हो सकती है। तनाव के कारण कई गंभीर मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बार हम लोग काम करते हुए भी लंबे वक्त तक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों होता है स्ट्रेस। आजकल जैसी भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव एक आम बात हो गई है। इंसान एक दूसरे को देख कर भी तनाव पैदा कर लेते हैं। तो क्यों होता है ये तनाव? आपके काम को लेकर आपको तनाव होता है, बेरोजगारी पे पैसा, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, मौसम, आपके मूड को लेकर आपको तनाव होता है, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहारों का शिकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें तनाव होता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बनी रहे जो ये जीवन से जुड़ी बाकी चीज़ों को भी खराब कर सकती है। वैसे भी तनाव इसलिए कभी नहीं होता है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि हमेशा इसलिए होता है कि आप उसकी मौजूदगी होने के बाद भी तनाव को रहने दे रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तनाव होने पर हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में तो हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लगातार नौकरियों और घर को बदलते रहेंगे, ऐसे हालात में तो आपको हालात नहीं बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। श्रोताओं, अगर हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हम उनको ढूंढते हैं जिनके साथ हम अपने दिल की बात को बांटते हैं या अपने दिल को हल्का करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब तक हम अपनी दिल की बात किसी को बताएंगे नहीं तो हमारे दिल में से तनाव या हमारे मन में से तनाव ख़त्म नहीं होगा। हम सभी जानते हैं जब हम किसी के साथ बहुत मिले हों, जुड़े हों या उनसे बहुत प्यार करते हों और उनके साथ अपनी दिल की बात शेयर करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, कई बार जब हम तनाव में होते हैं तो आसान से भी उपाय हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। इसलिए दूसरों के सामने ईमानदारी से बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात बता दीजिए जो आपको परेशान कर रही हो। श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि तनाव के प्रबंध क्या होते हैं
1: इसके कुछ टिप्स होते हैं, आइए हम मैं आपको बताती हूँ वो क्या होते हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में रहते हैं, चाहे उसकी कीमत तनाव भरी जिंदगी के रूप में चुकानी पड़ती है। तनाव हमारे स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है और धीरे धीरे खोखला बनाता चला जाता है। तनाव हमारे मन पर, हमारी सोच पर प्रभाव डालता है। तनाव हमारे शरीर और दिमाग पर भी जोर डालता है। हर वो इंसान जो तनाव में है, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए उसका तनाव कम हो सके। आइए जानते हैं। तनाव पर विजय पाने के लिए सबसे पहला उपाय है आत्मविश्वास। हर इंसान को अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो कोई भी काम गलत नहीं कर रहा है, और अगर गलत कर भी रहा है तो उसको सही करने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। हर वो इंसान जो तनाव में है, उसको सुबह सुबह सूर्य नमस्कार या कुछ योग आसन करने चाहिए, जिससे उनका मस्तिष्क शांत रह सके और वो आगे का अपना दिनचर्या अच्छे से कर सके। हर वो इंसान को गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है। यदि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो मन को बल प्राप्त होता है और व्यक्ति कठिन समय में विचलित नहीं होता है। गायत्री मंत्र आत्मा की शुद्धि करता है। ये वो गुण है जो किसी भी समस्या को लड़ने की और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की ताकत देता है। हमें अपने लिए जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं और अधिकारों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की इच्छाओं और उपेक्षाओं के लिए जिए, क्योंकि दूसरों की इच्छाओं पर आप कभी भी पूरे नहीं उतर सकते। खाने का रखे ध्यान। तनाव को कम करने के लिए थोड़ा खाएं और आराम से खाएं। भाग दौड़ कर खाना, बेसमय खाना, अधिक खाना, शराब का सेवन लेना तनाव को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। अगर आप तनाव में हैं तो चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक ना करें। चाय कॉफ़ी में पाया जाने वाला निकोटिन तनाव बढ़ाता है। आपने तनाव को कम करने के लिए कोई भी बुरी आदत ग्रहण ना करें। इससे अच्छा ये है कि व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान लगाएं। इससे तनाव कम होता है। गाने सुनें। गाने सुनने से भी मस्तिष्क को आराम मिलता है और वो शांत रहता है। हल्का शांतिदायक गाना सुनने से और उस पर नृत्य करने से तनाव अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या है आपका मनपसंद काम? जब भी स्वयं को काम से बोझ तले दबाव महसूस करें, सभी काम छोड़कर सोचें कि इसमें से मेरा मनपसंद काम क्या है। पहले उसे पूरा करें, दूसरा काम बाद में करें, ताकि बोरियत ना हो। आप तनाव प्रबंधन तकनीक अपना कर अपने बर्ताव और अपने लाइफस्टाइल और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपने स्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है, तो आप कम से कम अपना नज़रिया तो बदल सकते हैं। बिना बदलाव के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अच्छी आदतों को अपनाकर और पॉजिटिव सोच रखकर और कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहें। तनाव को अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। टहलने जाएं और अपने दोस्तों से मिलें। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाते हैं। हमें मालूम होता है कि इसका सामना हमारे बस में नहीं है। ऐसी चीज़ों के बारे में अधिक सोचना व्यर्थ है, क्योंकि चाहकर भी हम कुछ नहीं खास कर सकते। किसी दूसरे कार्य में अपना मन लगाएं और तनाव से दूर रहें। लंबी सांस लें। इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और गलत निर्णय लेने से खुद को बचा सकते हैं। शांत रहें। कई इंसान बेवजह बोल रहे होते हैं, उनकी बातों को ना सुने। उनका तनाव अंदर से बोल रहा होता है, तो ऐसे में आप शांत रहें और वहाँ से कहीं और चले जाएं। विटामिन सी का प्रयोग करें। ये एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से तनाव को हराता है। गाजर, संतरा, मौसम्बी, नींबू, खट्टे फल अपने आहार में शामिल करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप अपनी ज़िंदगी में तनाव से दूर रह सके और दूसरों को भी बता सके कि तनाव से दूर रहना कितना ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा है। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कृषि जगत में कुछ अलग कर रहे किसानों से हम आपको परिचित करवाते हैं। कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने कुछ अलग किया है और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है। पारंपरिक फसलों की खेती को ना अपनाकर उद्यानिकी फसलों को अपनाया है और साथ ही साथ अन्य किसानों तक भी उन्हें पहुंचाया है। आज के हमारी इस कड़ी में ऐसे ही दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने खेतों में पारंपरिक धान और गेहूं की खेती को नहीं अपनाया बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया और साथ ही साथ जो आसपास के किसान हैं उन्हें भी प्रेरित किया कि वो भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं। तो आइए ऐसे ही दो सफल किसानों से मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशीनगर जिले के दुमही गांव का।
1: उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला यूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के किसान भगवान बुद्ध की प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है यहाँ के किसान लाल बहादुर कुशवाहा ने। इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फसल की खेती को अपनाया और युवाओं को रोजगार का एक नया रास्ता दिखाते हुए उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया। स्ट्रॉबेरी की खेती से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताते हुए लाल बहादुर कहते हैं,
2: यहाँ हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं। इसका ट्रेनिंग जो है कि हम YouTube के माध्यम से करना चालू किए हैं। इसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से, उद्यान विभाग से हम लोगों को जो है कि बहुत योगदान रहता है इसमें। सब्जी में कभी जो है कि हम लोग को नुकसान लगता था लेकिन इसमें नुकसान नहीं है, इसमें हर साल जो है कुछ न कुछ बेनिफिट ही रहता है हम लोग को। और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम लोग जब इसका जो है कि इसमें खीरा हम लोग लगा देते हैं, सब खीरा लग गया है। और खीरा जैसे एक दो फलना चालू होगा तब तक करेला इसमें हम लोग का लग जाएगा, पौधा तैयार हो गया है और इसके तुरंत बाद करेला निकलना चालू हो जाएगा और करेला के बाद फिर स्ट्रॉबेरी हम लोग लगा देते हैं। इसमें रेगुलर फसल हम लोग लेते रहते हैं।
1: स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। स्ट्रॉबेरी का फल काफी नाजुक होता है, इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। स्ट्रॉबेरी की खेती से लाल बहादुर को प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है।
2: एक एकड़ में इसमें जो है कि 25,000 पौधा लगता है और उसके साथ साथ इसमें जो है कि खाद लगता है, ड्रिप है, मल्चिंग है और उसके ठंडी आने पर जो है कि ये झिल्ली से हम लोग इसको ढकते हैं। शीत जब पड़ने लगता है ठंडी में तो इससे ढका जाता है इसको ताकि फल में जो है कि न कोई दागी आए न पानी से प्रभावित हो, इसके लिए झिल्ली हम लोग लगा रखे हुए हैं। इसमें जो है कि तापमान अच्छा होना चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। एक एकड़ में हमारा लागत जो है 5 लाख रुपया लगता है, 2-2.5 लाख रुपया पर हर साल जो है कि हम लोग को मिल जाता है। और दूसरे फसल तो लगातार चलता रहता है, इसमें खीरा लग गया है, खीरा से भी 1 लाख रुपया आ जाएगा और उसके साथ साथ करेला है, करेला से भी हमको प्रॉफिट होगा। एक एकड़ से हम लोग स्ट्रॉबेरी खीरा करेला मिला करके 3-4 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसके साथ साथ हम मशरूम लगाए हैं, 1,000 बैग मशरूम लगा है, सेब भी लगाए हैं, अब जो है कि फूल आना चालू हो गया है। देख रेख जो है कि हम मेडिसिन

0: में नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नीलगिरी, दार्जिलिंग आदि की पहाड़ियों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से आज स्ट्रॉबेरी की खेती मैदानी भागों दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, जालंधर, मेरठ, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में स्थित भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर के कई क्षेत्रों में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से किसान स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम एक और सफल किसान बिंद किशोर कुशवाहा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, किस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई, इन तमाम बातों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
2: ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आवियो, हाँ ए ए ए आई आई आई आई हथिया नास भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम?
3: स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझकर करें।
2: अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर, रिस्क समझकर लेने का।
1: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं एक और सफल किसान बिंद किशोर कुशवाहा का, उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और विस्तार से जानते हैं।
0: स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर बढ़ने वाले किसान बिंद किशोर कुशवाहा एमए पास हैं। केले की खेती करने वाले बिंद किशोर अपने चाचा की स्ट्रॉबेरी की खेती देखकर इसकी ओर बढ़े और आज स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले एक सफल किसान बन गए। स्ट्रॉबेरी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उद्यान विभाग से उन्हें अनुदान पर ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने के उपकरण मिले हैं, क्योंकि इससे उत्पादन बेहतर प्राप्त होता है। बिंद किशोर बताते हैं कि उद्यान विभाग से मिले सहयोग से क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में उन्हीं से।
4: मैं बीए और एमए की पढ़ाई कर चुका हूं और इसके बाद से हम लोग पहले काफी केला की खेती अधिक करते थे, उसके बाद से हमने विभाग से मदद से अपना एफपीओ भी बनवाया, जो मेरा एफपीओ का नाम है गौतम बुद्ध फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ के नाम से ही मैंने पौधशाला अपना खोल रखा है जिसका नाम है गौतम बुद्ध पौधशाला, जिसमें हर प्रकार के पौधे केला से लेकर पपीता और आपके सब्जी, हर प्रकार की सब्जियों का भी पौधा हमारे पास उपलब्ध है। केला का पौधा जो हमारे पास है नेशनल टिश्यू कल्चर G9 और सिल बायोटेक और बालाजी बायोटेक का हमारे पौधा मिल रहा है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी हम लोग का करने का लालसा जगा जब बगल में हमारे चाचा जी ने जब स्टार्ट किए तो हम लोग ने स्ट्रॉबेरी गन्ना और केला छोड़कर हम लोग स्ट्रॉबेरी में अपना हम लोग लग गए करने के लिए। उसके बाद से हम लोग हर साल हम महाराष्ट्र जाते हैं, इसका खेती महाराष्ट्र में अधिक और इसका पौधशाला भी महाराष्ट्र में, पौधा महाराष्ट्र से आता है। क्योंकि हर साल हम नवंबर अक्टूबर से पहले हम चले जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में पूरा टेक्निकल देख कर वहाँ से आया गया है। यहाँ सब ड्रिप एग्रीकेशन द्वारा सब किसानों को सिंचाई किया जाता है, चाहे आपका अंगूर हो, स्ट्रॉबेरी हो, केला हो, पपीता हो, बैगन हो, जो भी हो। चूंकि पानी की बचत भी कम है और समय का भी बचत है और केवल पौधे का केवल रूट भी जड़ भी गया, आप ड्रिप द्वारा खाद वगैरह सब इसमें संचित हो जाता है। तो मैंने महाराष्ट्र जाने के बाद सब शिखर सब अनुदान विभाग मैंने DHO साहब के पास हम लोग गए, तो DHO साहब के विभाग के अनुसार हम लोग को बहुत काफी जानकारियां मिली। उन्होंने ड्रिप लगाने का पूरा उन्होंने हम लोगों को कैंप लगा कर उत्साहित

0: किया, खेतों खेतों में आकर डीएचओ साहब ने हम लोगों को बताने का काम किया। हम लोगों ने पूरा काफी किसानों को ड्रिप एग्रीकेशन कराया गया, किसानों को कराया गया। इसके बाद से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करने से मैंने बहुत काफी खुशहाल हैं क्योंकि इसका लागत एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया है, 5 से 6 लाख रुपया लागत है और काफी कॉस्टली खेती है। इनकम 10 से 12 लाख, 15 लाख से हमारा इनकम है, क्योंकि हम लोग युवा समाज के जो कि 20,000-25,000 के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, हम लोग जो चीज देख रहे हैं आप, काफी महिला लोग लगी हुई हैं, हर वक्त 10 लोगों को रोजी रोटी हम लोग अपने पौधशाला के अंदर दिया जाता है, क्योंकि हर प्रकार के अभी जब इधर दिखाएंगे तो हमारा पूरा पौधशाला लगा हुआ है जो कि गौतम बुद्ध पौधशाले के नाम से है, क्योंकि हर चीज पौधा हमारे पास उपलब्ध है, केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और आदि सब्जियों का अनेक प्रकार के पौधा सब हाइब्रिड और वेफोन हमारे पास स्टार्ट है।
1: स्ट्रॉबेरी 6 महीने की फसल है। नाजुक फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए बिंद किशोर स्ट्रॉबेरी का पौधा महाराष्ट्र से लाते हैं। खेतों में मल्चिंग लगाते हैं जिससे खेत में नमी बरकरार रहती है और फल पर मिट्टी आदि नहीं लगने पाती। इस बारे में बताते हुए बिंद जी कहते हैं,
0: ये 6 महीने का फसल है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यदि फसल है, ये अक्टूबर में इसको लगाते हैं, ये जाते हैं महाराष्ट्र पौधा लाया जाता है, क्योंकि इसको पौधा लाने के लिए हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र तो बाय ट्रेन द्वारा चाहे एसी द्वारा हम लाते हैं। उसके बाद से ये मल्चिंग लगाते हैं, मल्चिंग लगाने से ही होता है कि अंदर का नमी बरकरार रहता है और जो पानी चलता है उसमें नमी बरकरार रहता है, खौर निराई गुड़ाई में आसानी रहता है और खौर पतवार नहीं जमता है। उसके बाद से जो आप ये फल देख रहे हैं, ये फल देख रहे हैं तो फल में मिट्टी नहीं लगता है, सड़ता नहीं है। और जो ये आप ये देख रहे हैं तार जो देख रहे हैं, इसका जो रस्सी देख रहे हैं, इसको लो टेंडर लगाया जाता है जो कि इसका झिल्ली ऊपर से सर्दियों के लिए, क्योंकि इस पे ओस ना पड़े, शीत ना पड़े, हर रोज शाम को इस पर चढ़ाया जाता है और सुबह उसको उतार दिया जाता है।
1: परंपरागत केले की खेती को छोड़कर बिंद किशोर अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए बेहतर गुणवत्ता और रोग रोधक क्षमता वाले स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वे अपनी पौधशाला में स्ट्रॉबेरी के अलावा ड्रैगन फ्रूट सहित दूसरे पौधों, अमरूद, बेर आदि की बेहतर किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने एफपीओ को भी रजिस्टर्ड कर रखा है।
0: इसके साथ साथ हमारा सबसे अधिक केला का पौधशाला है, क्योंकि हर साल किसानों को अधिक से अधिक संख्या में 2 से 2.5 लाख किसानों को दे दिया जाता है। और उसके बाद से हमारा स्ट्रॉबेरी चलता है और हमारा ड्रैगन फ्रूट, इसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट इस साल 1 एकड़ से ऊपर हम व्यवस्था में लगाने के लिए, और इसके बाद से इस साल हम लगभग 1.5 एकड़ हल्दी सा जो देसी होता है, जो मेघा होता है, क्योंकि इस बार डिमांड अधिक है, सब लोग हल्दी का खेती छोड़ दिया, परंपरागत खेती हल्दी था, इस बार हम प्लांट विभाग से हम इस बार हल्दी का अनुदान विभाग से सोच रहे हैं हल्दी का बीज लाने के लिए।
1: स्ट्रॉबेरी की मांग अन्य फलों के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए बिंद किशोर इसको तैयार करने पर विशेष ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि युवा इसकी खेती करने के अलावा इसके फल से तैयार उत्पादों का प्रसंस्करण करें तो उन्हें बेहतर फायदा होगा, इस पर किसानों को अनुदान भी मिलता है। बिंद जी कहते हैं कि युवा नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बने और गाँव में ही रहकर रोजगार के अवसर बनाए। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक एवं क्षयशील होता है। स्ट्रॉबेरी के लाल, गुलाबी, सुगंधित एवं पौष्टिक फल की आजकल बहुत मांग है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण लोगों का ये पसंदीदा फल बन चुका है। प्रमुख तत्वों के अलावा विटामिन सी, लौह व खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस फल का सेवन रक्त अल्पता से ग्रसित रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुशीनगर जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के क्या प्रयास रहे, किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया यहाँ के किसानों को। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: चुटकुला समझ नहीं आया?
4: समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का।
5: तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
2: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कुशीनगर जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के किस तरह के प्रयास रहे।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी सहित दूसरी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। इस बारे में विभाग की ओर से मिलने वाला सहयोग स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को बढ़ाने में मददगार बन रहा है। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में।
6: आज हम अपने जनपद के दुधही विकास खंड के दुमही गांव में हैं। यहां पर लगभग 3 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। साथ ही हम यहां पे देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती ड्रिप सिस्टम सिंचाई के द्वारा भी हो रही है। इसमें ड्रिप द्वारा ये लाभ है कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे, बाकी मल्चिंग हुआ है, मल्चिंग के द्वारा भी खरपतवारों पे पूर्ण नियंत्रण रहता है। साथ ही हम कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल उपजा पा रहे हैं। हम लोगों का मेनली यही प्रयास है कि पहले तो इस गांव को हमने मॉडल हॉर्टिकल्चर विलेज, मॉडल औद्यानिक गांव के रूप में विकसित किया है और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती पहले यहीं भी शुरू हुई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जनपद के खड्डा में और उसके बाद सुकरौली में, मोतीचक में और कसिया में यहाँ भी स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट करा चुके हैं। इस तरह से किसान जो भी यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं वो निश्चित रूप से ही उनमें एक अलग से एनर्जी होती है कि इस खेती को अपनाया जाए, तो इसकी खेती को देखते हुए काफी लोग इसकी खेती के लिए आ रहे हैं आगे। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम एक ही विकास खंड में ना सीमित रह के जनपद के सभी विकास खंड में इसकी खेती होने लगे।
1: कहते हैं जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुशीनगर में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के शमशेर सिंह जी ने। इनके प्रयास से यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया। केवी के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मार्गदर्शन देती है जिससे इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और किसान खुशहाल बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में केवी के में कार्यरत शमशेर जी से ही।
7: हम इस समय दुमही गांव में स्थित है जो कि दुधही ब्लॉक का गांव है ये, और यहां पर पहले किसान धान गेहूं परंपरागत खेती करते थे, लेकिन किसानों को लगा कि हमारी आय बढ़नी चाहिए तो किसान ने कुछ नई नई खेती को अपनाया। कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, उनको स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया गया और यहाँ उसकी संभावनाएं हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है ये वैरायटी है विंटर डाउन, जो प्रजाति इसका है ये विंटर डाउन है और इसको लगाने जो सही समय है अक्टूबर महीना है। ये ठंडे मौसम की फसल है, जाड़े की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप फसल है ये, जो कि अक्टूबर में लगाई जाती है और लगभग मार्च तक ये फ्रूटिंग देती रहती है और मार्च तक इस क्रॉप में लगभग प्रति एकड़ करीब 4.5 लाख खर्च पड़ता है और लगभग 3 से 4 लाख का शुद्ध लाभ इसमें है।
1: स्ट्रॉबेरी की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी आज मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है जिसे गर्म वाले स्थानों में भी अब किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरे दुनिया में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग 600 किस्में मौजूद हैं। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से इनमें से कई किस्में मैदानी क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं। कुशीनगर के किसान स्ट्रॉबेरी की इन्हीं किस्मों को उगाकर इसका अच्छा उत्पादन और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं।
2: तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी और हमारे सफल किसानों से मिलकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। ऐसी ही कोई दास्तान किसान भाइयों बहनों आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा। इस बुद्धू की तरह बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिये, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथ्राइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहां जहां वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा, जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया आज, मान गए तुमको।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: अच्छी हूँ मैं।
0: सब अच्छे हैं? सब सब सबकी फैमिलीज ठीक हैं? एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो अभी का जो सेशन है ये सेवेंथ सेशन है। हमने अभी तक 7 सेशन करे हैं। हालांकि जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है। बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है, या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है, या फिर उनको पहले से वो आती थी, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है, या वो सीख रहा है, या सीख रही है, या सीखना चाहता है, या सीखना चाहती है। लेकिन
1: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी, जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में हम डिलीवर नहीं कर पाते जब हमें जॉब

0: जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा, और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बारी हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने हाव भाव को या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में। पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है, मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या वन टू वन जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है? जॉब इंटरव्यू बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है तो कह सकता है जॉब इंटरव्यू क्या होता है।
1: मैम
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: आकांक्षा, हेलो
0: जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: मैम,
0: हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा? महाराष्ट्र।
1: महाराष्ट्र
0: जी बोलिए।
1: मैम जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए और कौन इस जॉब के लायक है।
0: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं, जो जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपियर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
1: मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
0: तो आप
1: इसमें
0: वो
1: तो
0: बिल्कुल सही,
1: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सुटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है? अब हमारे सामने केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है, तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है क्या नहीं करा, आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी।
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर।
0: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए।
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है।
0: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवैल्यूएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा?
3: हेलो मैम, रेनु बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा सेंटर से।
0: नमस्ते रेनु जी, बताइए।
3: नमस्ते मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये है, हम ये है, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार मैसेज आया, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है।
0: वेरी गुड।
3: और आई थिंक सो,
0: तो हमारे दो या तीन चीजें आ गई। पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे। वेरी गुड। सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
4: यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, कैसे?
4: जी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनालिटी, इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं और अवेयरनेस अबाउट द, जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग, रिटन भी हम देख सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारी जो स्कूल था प्री स्कूल का, उसका एक इंटरव्यू किया था। तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था। एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनालिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं। हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते। तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स, और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है, वो एनवायरमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं लेडीज जा रही हैं उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा हक बनता है कि आप देखें, इवैल्यूएट करें अपनी सूझबूझ से। सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है, बट यू हैव टू इवैल्यूएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट, कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया। ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आपको बताने क्या समझता है, इतने सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए, बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा। वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था। लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, कोई एडवर्टीजमेंट होती है, ना कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है, इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है, लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए। बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती हैं कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए। कई कई जॉब्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है, तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे। जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा। तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जो भी बात कहें उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुटअप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है, ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना रिसीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था। आपको प्रिस्ट में बताना है। गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद भी नहीं रहेगा। अगर 100 लोग बैठे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर, बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए। इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है। सैलरी कितनी लेंगे, हम लोग हिचकिचा जाते हैं। कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं, ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कोरियर से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो, क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा, 3 मंथ्स का प्रोबेशन होगा, 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद, उसी बैंक में 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 मंथ्स का हो गया था। बट दैट्स देयर रूल, किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं। बट डोंट गिव अप, हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी पर्क्स, सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए, तो आप हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. लेकिन basic question prepare करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए। अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पर practice, उस पर focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है।

ऐड करूं कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहने कहने कहना जो चाह रहा हूं वो बेटर हो जाए। आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे ही रहता है। कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है? क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदी होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं। उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है। जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं, उसकी लेक्चर की जो भी टॉपिक होता है प्रिपेयर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से, या कैमरा से खड़ा करके किसी जगह पे आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें। अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे। अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स है उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं। आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से। और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए। जस्ट अ सजेशन, नो देर इज नो राइट और रॉन्ग, बट एज ए मेच्योर पर्सन हमें किस तरीके से अपने आप को प्रोफेशनली शो करना चाहिए या कंडक्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे आयरन करना है आयरन करके रखिए, देखिए उसमें कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पले पहनना है, शूज पहनना है, पूरा एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे। हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज। आप जो जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मत करिएगा कि उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी। जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पे बैठे हैं, और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी। तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको आता है, नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है। बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल, या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी। अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पे ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवेल्युएट हो रहे होते हैं, या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम करते हैं, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं, रिसर्च करिए।

0: अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें, तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी। बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा। आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें। मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो। तो कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इनमें, मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है उनके उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग,
1: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है।
0: इनकी करेक्ट क्या होता है, व्हाट इज करेक्ट?
1: मैम, अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट।
0: करेक्ट हो सकता है। क्या होता है कि कई बार ही ना, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100 100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है। जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे। ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा। तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये एचआर वालों का काम होता है। तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना हो के बैठे रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है तो आप इंटरेस्टेड लगिए। अब ये जो लास्ट में फोटो है ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है, उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया है। तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देखना देख रहे हो, या आप सीसीटीवी लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कैसे रखते हैं, ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत, नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में वैसे आप बैठिए। कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग। कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करे जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेन पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है जस्ट, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंपलिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है जो आप पहनने वाले हैं आप पहले से डिसाइड करके रखिए। थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन आल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये हैं कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं। कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई भी, लेकिन साफ शर्ट डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उस पर ज्यादा कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड एज अ लिटिल बिट मोर मेच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन। फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाएं, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए, कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है। आप अपने नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है, ट्राई एंड स्टिक टू क्लोथ्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन। कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए। कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो, बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का। आप देखिए वो IAS के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं, ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है, उस पे एम्फेसिस हो उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे। अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा। ट्राई नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी, आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए। इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट व्हाट यू कैन वियर। किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे। वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स। मैं टाइम देख रही थी कि मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है। जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें। सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है, प्लीज अवॉइड दैट। जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है, अवॉइड करिए। अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं। हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ। तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है। अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो, हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को, कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है। ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट, आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं। डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज। पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर, वी शुड फॉलो दोस थिंग। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है, आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है, तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है, मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती हैं। तो आप ये देखिए जब वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ, बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रहे हैं, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं, हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए, आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए, ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं कह रही हूँ, कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है। कई बार एचआर के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सारे जो एचआर के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे। तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट, बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है। अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए। अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं, आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, ये मैं जल्दी सीख लेती हूँ, अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा। बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते। कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए। ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ कहने के लिए, जॉब एक्वायर करने के लिए नहीं, अगर आपने एक बार कमिटमेंट करी है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। सो इफ यू डोंट नो द आंसर, यू कैन से दैट आई डू नॉट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बट आई कैन डू द रिसर्च एंड गेट बैक टू यू। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं पता है। अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए। आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं। एक अच्छा सा, महंगा नहीं, अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए। फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए। कोई पूछता है, कोई मांगता है, तभी उसे दिखाइए। बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है। आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है। तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी एचआर में जमा कराने पड़ते हैं तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं, मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए। अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा, नहीं करेगा। हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए। अपना आई कॉन्टेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ। हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है। बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है, जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रश अप करके जाएंगे। टैली का इंटरव्यू है, आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है, आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है, आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ। आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा, बट जो एज ए नर्स, एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा। आप टीचर है, आप ब्यूटिशियन है, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए। जो हम सैंपल वो बनाते हैं आपका रजिस्टर, उसको साथ लेके जाइए। अगर जैसे कि मैंने बताया वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए। अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में, आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए थोड़ा फर्क पड़ता है। रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है, आप प्रेशर है लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब टेंथ जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए। आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेज आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेज होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको स्विंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती आपको स्टिचिंग एंड स्विंग है, या स्टिचिंग एंड स्विंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड स्विंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर, नो, दैट वाज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है, अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज अ प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस क्यों हमेशा, क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। बेसिक इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमने उस इंग्लिश में बात नहीं, बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आई, आपने बोली मेरी समझ में आई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वाज इट, आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है। आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं, तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे।
2: थैंक यू सो मच मैम,
0: बाय बाय।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
2: यस मैम।
1: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है। थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
2: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे, 2 मिनट की बस, अब नहीं
1: नहीं,
2: करेंगे,
1: वो
2: कोई
1: मेरी मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो मैं
2: नहीं।
1: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ, वो फिर हट जाता है दिमाग से,
2: जी
1: ठीक
2: मैम, नहीं मैम,
1: है?
2: सॉरी
1: हाँ,
2: जी मैम।
1: तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं। जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं। सो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
2: यस मैम,
1: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट वॉट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी वॉट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसकी वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी, हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं, पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास अपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
2: जी
1: हम
2: मैम,
1: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70% जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते, और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात कर रही। एक वर्ड है आपने सुना होगा, हेल्प, हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है जो हम अपने ही दायरे में अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है, पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, बट हाँ ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीन। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा, वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है। इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत। कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है। और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे। और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है विद प्योर प्योर, मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें। इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं। बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 5-6 मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते, मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं।

front of him or her, we are having different face, but अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में। इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर दे। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है, उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने सिक्स डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के, और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे

0: पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए, जो हीरे थे और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी। बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की। और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज?
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की हुई है।
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ के एक्सपीरियंस ही है। कैंडिडेट
1: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
2: हैं। मैम गुड इवनिंग, माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। की मीटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट्स बताए मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए और मतलब जो एनवायरनमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और करके एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
1: जैसे पढ़ाई वाला
2: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो कुछ करते ही रहे हैं, उसपे ये नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं। ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
1: जवाब देते हैं।
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशियली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं। और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी? पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी। मैम
0: जगदीश जी,
1: हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको देखो शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाती है, हम सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और अपने लिए नहीं लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चला दिया, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज एक छोटी सी कोशिश है।
0: तो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है वो, मैं नहीं चला रही हूँ, पर हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज में बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच रहे थे।
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे, तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं हम उनको अचीव,
1: अचीव नहीं कर सकते मैम उनको हम लोग।
0: पर कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: जी
0: हाँ, तो ये
1: थैंक
0: बहुत जरूरी।
1: यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है, हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बारी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100% थैंक
0: हाँ,
1: यू
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सब, और
1: मैम।
0: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको और मराठी में बताएं, ठीक है।
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
1: थैंक यू मैम।
3: हेलो मैम।
0: हाँ जी, हेलो, नमस्ते,
3: मैम नमस्ते,
0: मैं
3: कैसे हो आप
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
3: मैम? आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्रॉब्लम्स
3: ओके थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी
1: सीरियसली आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया,
0: उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर
1: एनर्जी
0: दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग बहुत अच्छे से। आगे इस पे कोशिश करेंगे
3: मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
0: जी मैम जी
3: वो
0: मैम
3: जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। प्लीज
0: जी मैम जी मैम जी
3: बनाना।
0: मैम जी मैम थैंक यू सो मच मैम।
3: थैंक
4: नमस्ते
3: यू।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गए। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है हमें उसको समझना चाहिए, लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम। और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। थैंक यू मैम।
3: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
1: थैंक यू मैम इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल गुरुजी ने चाहा तो बहुत जरूरी। थैंक यू मैम।
3: थैंक यू सुमन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
0: नमस्ते मैम। आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमारे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
3: ठीक है जरूर सर।
1: गुड
3: गुड
0: आफ्टरनून।
3: आफ्टरनून। कैसी हो? ठीक है।
5: अच्छा आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
3: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है
5: जी
3: ना।
5: मैम मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
3: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेंगे। ठीक है। गुड
5: थैंक यू मैम। नमस्ते
1: इवनिंग
3: मैम।
1: मैम।
3: जी क्या हाल है मीना?
6: नहीं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
6: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
3: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो अब, मुझे पक्का विश्वास
6: जी
3: है
6: मैम।
3: ना। हाँ, और गुंजन के आगे बढ़ेगी बहुत।
6: जी मैम अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की जी।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
6: और मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
3: बहुत अच्छी बात है। सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ,
6: जी मैम।
3: तभी इस सेशन का फायदा है। नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे, वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आज जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे। आज इसका फर्स्ट सेशन है एंड प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमन टर्म्स में क्या बोलोगे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना,
1: हाँ सर, बिजनेस मतलब धंधा व्यापार।
0: व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई चीज ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उसको आप कहीं से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, क्योंकि आप जब एक बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम रेटों में मिलती है, और फिर उस चीज को आप रिटेल करते हो, मार्केट करते हो और एंड यूजर तक पहुंचाते हो। जो एंड यूजर मतलब जो लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई आप लोगों सबको या नहीं आई? इजी इजी लैंग्वेज थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को?
1: ना
0: चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको और फिर उसको आप मार्केट कर रहे हो, या फिर आप क्या करोगे, किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है जो आपको, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज है, इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, तो ये अच्छी चीज है। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो उस स्तर पे आपको इन चीजों को करने की जरूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है अपना, अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, इसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
1: नो
0: अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो।
1: अभी जो आपने समझाया एकदम मतलब आसान भाषा में तो सबको क्लियर हो गया मतलब।
0: अच्छा, थैंक यू।
2: जी
0: अच्छा
2: फैजान
0: जी
2: जी नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते।
2: वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे।
0: ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना यस, जब भी मैं कुछ
2: बिल्कुल
0: पूछूंगा तो।
2: बिल्कुल सर।
0: ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक एक लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया, अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या बना रहे हो, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सब सबने यही बोला है कि ये होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो, ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के, तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो 1 साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो, और इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज के लिए। एएमसी पता है, इवन ये मशीन में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंट्रो पे यूज करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती है कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 500-1,000 रुपए, और इस पूरे 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ, कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है?
2: इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो
0: हाँ
2: जाते हैं। ये तो 2-4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए, तो वो जो सर्विस की बात है ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी उनको
0: राइट,
2: पे कर देती हैं
0: चलिए
2: एडवांस
0: ठीक है।
2: वाला।
0: हाँ वही वही
2: जी
0: मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
2: बिल्कुल
0: कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है, लेकिन 1 साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सबने करा होगा ना।
2: जी हाँ
1: जी
0: इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया, मान लो चलो कोई चीज आपकी खराब हो गई तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो, आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा, लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको?
1: यस
0: ठीक है,
1: सर
0: ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। इट इज अ बिजनेस विच बाइज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड सेल इट एट रिटेल प्राइस, इट इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल अ बिजनेस। तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो, ठीक किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज़ मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा, क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपये। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपये बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो ताकि आपको वो चीज़ सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज़ के बारे में?
1: यस करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं, होलसेलर।
0: हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती है, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अभी हम
1: यस सर,
0: थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर मशीन एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्रोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है?
2: नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया गीजगढ़ से।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा, जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ है, जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारे कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको?
1: यस सर, यस
0: ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे?
1: सर। सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदर।
0: ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको?
1: सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था।
0: ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है, जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, उसको
0: नहीं
1: भी
0: पैसे,
1: प्रॉफिट
0: हाँ
1: हो सके हमें भी।
0: मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक
1: हाँ
0: है,
1: सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे, जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या, मतलब वो गैस देते नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट।
1: मैचिंग, वो मैचिंग डायनेस बिजनेस, जिसमें हम
0: चलो,
1: बना
0: हाँ
1: हुआ सामान खरीदते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही। बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका हो है उससे कम पैसों में मिलता है, एंड जब हम उसको
1: यस
0: मार्केट करते हैं तो हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो
1: हाँ
0: कोई
1: सर,
0: चीज़ 10 रुपए की है, तो हम उसको बड़े
1: तीस
0: बाजार से, जैसे
1: या
0: आपने
1: फिर
0: बोला,
1: फिफ्टी, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं।
0: राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी आप कोई और बताओ,
1: ओके सर, थैंक यू।
0: कौन बताएगा?
3: मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहाँ पे हमको सस्ता मिल रहा है वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उसके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीजें जो भी वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है, चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट आपको कोई चीज शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वपड़ा जो भी चीज है वो सब आपने ही अरेंज कराए और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी। अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है, उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी तक ये सबको समझ आ गया?
1: यस सर,
0: ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमेन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है? मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस में हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस, इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले, और अच्छी कैसे चलेगी, जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है प्लीज दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें। ठीक है, तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे अभी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए और वो जो भी मैं बनाऊं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है, और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जाम्पल में आए तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस, इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब इस ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को, और विजन क्या है, जब आपको बड़ा बनना है बिजनेस, हमेशा आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूं, फिर उसको मैं 80 कर सकूं, या जो भी है एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे तो आपका अपने आप, और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी तो आपका विजन, एक तरह से आप अपने विजन पे चलने लगोगे कि आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है, यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहां तक सबको समझ आ गया?
1: जी सर,
0: बाकी लोग कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया, यस नो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी अभी तक कोई भी चीज़ है अगर समझ नहीं आई है तो।
4: यस सर, समझ में आ गया सर।
0: आ गया समझ सबको? ठीक है, तो अभी हमने पार्ट वन कवर कर लिया, अब हम पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो। कोई बोलेगा कुछ? लिखा हुआ तो है ही आगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस?
4: सर, इसमें
0: कोई
4: प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक प्रोडक्ट फिक्स कर ले, एक मिशन फिक्स करिए, हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है।
0: ठीक है, सो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट देन टेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग इट। इट कैन बी एडवर्टाइज इजीली इन द मार्केट। तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया ही हो गया, अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है तो एग्जाम्पल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप दिया लोगे तो दिए को आप एक वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है। तो उससे उसका मतलब हो गया टेंजिबल भी हो गया, और फिजिकल मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट एंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड, अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी की चीजें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
3: नो सर,
0: हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4, 5, 6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज, इट एश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो यहां तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया?
3: यस
1: यस
3: सर,
1: यस सर।
0: चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे जो मैंने अभी समझाया?
1: मैं
0: बताओ जवाब।
1: दयाराम बोल रहा हूँ।
5: दयाराम, तुमको छोड़ करके मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम, तुमको
0: हाँ,
5: छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं।
0: अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा।
3: सर मैं खुशी जैन।
0: हाँ
3: सर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी
0: कहाँ
3: भी
0: से हो आप,
3: चीज
0: कहाँ से हो?
3: को हम, सर समरानिया से, 12 डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अपन किसी चीज को प्रोडक्ट है उसका अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज मालूम कर सकते हैं, और अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं।
0: हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद आपने हाथों से पता कर सकते हैं, आंखों से देख के कि हाँ भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये हमें लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब बारान के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज कोई अनम्यूट करके बोली।
5: महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो।
0: जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट रहे, हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज़ आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशन ले रहे हैं आप लोगों के साथ।
6: हेलो सर,
0: जी
6: मैं
0: जी
6: रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: सर, हमें काफी मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे बिजनेस
0: चलिए अच्छा
3: क्या
0: आपको
3: क्या
0: समझ आ गया सारा। एक
3: है,
0: बार
3: सर्विस
0: जो मैंने स्टार्टिंग में
3: बिजनेस,
0: बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने लिखे हैं।
3: एक सर्विस बिजनेस था, एक
0: हाँ
3: मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्चेंट डिजाइनिंग, और एक
0: हाँ
3: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था।
0: ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी।
3: जी सर, सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो या फिर ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं, तो
0: हाँ बिल्कुल
3: हम
0: बिल्कुल राइट,
3: होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
0: ठीक है, थैंक यू
3: और
0: सो मच।
3: जो
0: ऐसी
3: मर्चेंट
0: थोड़ा सा
3: डिजाइनिंग है।
0: बस बस
3: जी
0: बस
3: सर,
0: आप बस बस ठीक है ठीक है, आप बाकी बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही है चीजें, क्योंकि ये आपको मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट टू में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी, आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है, वो इंट्रैक्शन जो होता है, वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूज़र से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पॉर्टेंट सारे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया बिल्डिंग का, या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है, आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना, क्योंकि आपने उस रेंट को, एक एक चीज़ जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि एक एक चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज़ में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट सबको समझ आ गए? ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो, आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज़ बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज़ को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज़ पता लगेगी और इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज में काम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल में मैं ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज। तो अभी हमने दो चीजें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज करोगे तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है?
6: सर, अगर हम अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है।
0: हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
6: पहले सर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा कुछ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो
0: हाँ
6: पहले उस चीज का जैसे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और
0: राइट,
6: इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्या पहले सर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और क्या ऐड कर सकते हैं हम?
2: इसके
0: और
2: साथ
0: सर
2: जैसे
0: इसमें
2: ट्रांसपोर्टेशन का
0: और
2: खर्चा
0: क्या क्या
2: था,
0: ऐड कर
2: भंडारण
0: सकते
2: का,
0: हैं सर?
2: सर ये देखना पड़ता पड़ेगा, लोडिंग बोर्डिंग पर कितना बैन होगा, किस जगह पर आएगा, उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी।
0: सही बात है। क्या
6: सर इसमें एक और पॉइंट है सर, ऐड कर सकते हैं इसमें
0: सर?
6: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर, ये बहुत नेसेसरी है सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए सर।
0: क्या कर सकते हैं?
6: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें जो
0: बिल्कुल
6: बिजनेस।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा क्योंकि अभी जो हम फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी रहती है, ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, और अगर आप एक
6: ये
0: प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है।
6: और
0: आप
6: प्रोडक्ट
0: इस
6: की
0: चीज़ों
6: एक्यूरेसी भी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है?
6: जी सर, एक
0: हेलो
6: इसमें ये है जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका है नहीं है, सारा कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मीना जी आप कुछ बोल रही थी?
7: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
7: हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें काम कौन करेगा, कितनी
0: राइट
7: महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं
0: राइट
7: उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा,
0: राइट
7: ये भी
0: तो
7: देखना
0: ये
7: पड़ेगा हमको भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी,
0: बहुत
7: तो
0: बढ़िया। तो
7: वो
0: मतलब आप
7: सारा।
0: ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें रिसोर्स मैनेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी पता
6: जी
0: लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1,000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मीना जी? ठीक
7: जी जी सर।
0: है जी। और फिर हम आगे बढ़े हैं इसमें, कुछ आप लोगों को और ऐड करना है?
7: नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे।
1: सर इसमें टाइमिंग का, सर वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा
0: बिल्कुल
1: दिवाली नजदीक और हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग का
0: बिल्कुल
1: भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: राइट राइट बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चाहे आप वो फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा बेकरी करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है और टाइम आर एलोकेटेड, इसको हम उसी हिसाब से फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है। आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं वो चीज होती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, तो आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसी इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो जरूर लोगों में रेकमेंड करें। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे? क्योंकि हम तो ये काम करते ही है ना, आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा?
6: जैसे सर कि हम नेटवर्किंग को इम्प्रूवमेंट ला नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल गए हैं, आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इन सब चीज़ों में लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस यू आर सेलिंग टू देम एंड हाउ इट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के, सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप एक चीज़ बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके 100 ही व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे तो आप जो चीज़ बेच रहे हो बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज़ बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है,

0: हाँ भाई, अगर आपके आप इसको ले जाते हो, अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में, तो आप प्लीज उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको ठीक सही करके दूंगा। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको बोल सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट आएगी, इतना ही लगेगा, और मैं उसको ठीक करके दे दूंगा। कोई रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, तो आपका एक कस्टमर अच्छा बेस बन जाएगा। इसको कस्टमर रिलेशनशिप में भी काउंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कस्टमर के लिए। क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल के बाद आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, जो भी जर्नी होती है इसकी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। कोई सा भी
1: जी
0: पॉइंट
1: सर,
0: आप ले लो, कोई सा भी पॉइंट के बारे में बता दो।
1: जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की, मतलब प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें।
0: ठीक है, ठीक है।
1: तो
0: और ऐसा कोई काम कुशलता अभी तक किया है आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाए हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीज जो भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन
1: जी
0: सब
1: सर, हमें
0: चीजों को अप्लाई
1: कैसे
0: करते हुए?
1: बनाएंगे?
0: क्या बनाया है? पुष्पेंद्र, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है। पुष्पेंद्र, तुम्हारा आवाज
1: आवाज
0: क्लियर नहीं।
1: आवाज कट रहा है पुष्पेंद्र आपकी।
0: हाँ, कुछ लता बताओ कोई भी।
1: जी
0: ये
1: सर, हाँ, इसमें हमने दरिया भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर, क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है।
0: वेरी गुड। और बाकी और लोग कहाँ हैं? ये तो 5 पॉइंट हैं, एक को सुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का, बाकी और कौन? नेटवर्किंग कौन बताएगा? बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है।
2: स्वाति, जी सर, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप अगर प्रोडक्शन किए हो, कुछ चीजें सेल की हो, तो ये कौन सा
1: जी
0: पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपने कैसे किया था उस चीज का मैनेजमेंट?
1: सर, इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
1: बाकी
0: बिल्कुल
1: सभी
0: बताइए।
1: पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कैसे हो ये सोचते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बात, कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इसको सुधारूंगी। थैंक यू सर। जी
0: ठीक है,
1: सर,
0: तो बस एक छोटा सा नीचे लिस्टिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट टू हम खत्म कर देंगे आज, आज पार्ट टू तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है, इसका ये जो है लिखा हुआ, इसमें लिखा है, डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज़ अगर कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज़ के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, ये इसलिए अलग है, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं उनसे इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो, तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना, हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज़ आपसे लेना है, तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है, अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो।

0: भी ऊपर होगा। मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। वी हैव टू लिसन टू आर कस्टमर्स नीड एंड वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इज टू बी अलाइंड विद द कस्टमर। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि आप चीजें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज समझ नहीं आती, तो वहां पे इसका रोल आता है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपनी खुद रिक्वायरमेंट बता दो, मैं उसी हिसाब से चीज आपको दे दूंगा। होता है ना सबके साथ कि वो पहले वो अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, चीजें बता रहा होता है, लेकिन आप फिर उसे बताते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आपसे वो डायरेक्टली पूछता है फिर कि सर या मैम आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्वालिटी कैसी चाहिए, बजट क्या है, किस तरह से। तो आप जब उस चीज को ध्यान में रख के फिर आप अगर चीजें देखो निकालोगे तो शायद आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आपसे खरीद भी लेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पर, या अभी कोई डाउट है किसी को?
1: जी सर, आ गया। यस
0: तो इसको हम अभी कंक्लूड इसी यहीं तक करेंगे कि लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने कस्टमर, कोई आपके पास क्लाइंट आता है दुकान पे, कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो आप उसको सुनो कि वो क्या चीज़ आप लोग आपसे चाह रहा है, किस क्वालिटी का चाह रहा है, किस बजट में चाह रहा है, कितनी लाइफ की चीज़ चाह रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप सुन के उसको फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ और उसमें वेराइटी दिखाओ। तो ये इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आज पार्ट वन एंड पार्ट टू खत्म करा है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या स्किल जरूरी होती हैं एक बिजनेस के लिए, मिशन विजन एंड आपको कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने, पांच सात चीज़ें हमने आज कवर करी हैं। तो आज वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम पर होगा, ठीक है? तो बाकी अब जब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे तो पहले प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कवर करा है इसमें, ठीक
1: ओके सर, ओके
0: है?
1: ओके
0: थैंक यू फॉर
1: सर,
0: ज्वाइनिंग।
1: थैंक यू सर।

0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन हमारा है वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइमरी जो हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे 10th के बाद में मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शन लेते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद में, क्या क्या वो कर सकते हैं, तो आज उन सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी जो मेडिकल प्रोफेशन है आज वो हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो लोगों ने पहले भी सेशंस अटेंड किए हैं तो हम काफी चीजें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने कॉमर्स से रिलेटेड एक सेशन किया था और भी डिफेंस एग्जाम्स का है, गवर्नमेंट जॉब्स का, तो हम काफी चीजें पहले कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा फोकस है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। एंड आई होप जो बच्चे अभी 10th क्लास से नीचे हैं, 9th में है, 8th में है, 7th में है, तो उनके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है। और आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे, देखिए आज के टाइम में कोरोना के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से सबसे जो सेफ लोग हैं, जो जिनके इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो या तो कौन है बेटे, जो डॉक्टर्स हैं एक टाइप से, जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, या फिर आपके जो बनिए हैं, बनिए मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिनकी शॉप्स हैं एक टाइप से, तो उनका काम चल रहा है। बाकी तो देखो सभी के लिए किसी ना किसी टाइप से चैलेंज है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक तरह से नेक्स्ट टू गॉड है, कि भगवान के बाद अगर और कोई है तो हमारे लिए कौन होता है, डॉक्टर होता है, क्योंकि उसी का वही एक ऐसा है जो हमारी जान को बचा सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है और बच्चे अगर मेहनत करें और उनका ठीक ठाक कोर्स में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ये पीपीटी शेयर किया था, इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन रिमार्क मैंने दिया था कि जनरली हमारे मन में ये होता है कि जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो वो किताबों में खोए रहते हैं, ठीक है। वो किताबों में खोना इसलिए पड़ता है कि अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है जिसमें पीएमटी है, आपका नीट का एग्जाम है, या इसके अलावा और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी रहती है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसलिए जनरली माइंड में भी हमारे एक अप्रोच होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 12th में पहली चीज तो क्या है कि जब आप मेडिकल साइड लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्राइमरी मेडिकल और नॉन मेडिकल में फर्क इतना ही है कि नॉन मेडिकल में आप मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होता है, और वही अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ना रहता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको लेना है, प्लस वन प्लस टू में आप पढ़ते हैं। मेडिकल साइड लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मेडिकल स्ट्रीम पर बेस्ड है, ठीक है, उन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑलमोस्ट वही का वही है जो आप प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBA होटल मैनेजमेंट लॉ का एग्जाम देंगे तो आपको कोर्स के अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट आप अगर नीट का एग्जाम देते हैं तो जो आपने प्लस वन प्लस टू में एज ए सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है वही चीज आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा टारगेट है। आप देखेंगे ये बीच में एक इमेज के अंदर दिखा हुआ है, ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले आपको मैं एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम इन डिटेल बात करेंगे एक एक बात के ऊपर। सबसे पहला जो मेडिकल साइड का, जो एक तरह से जो बच्चा मेडिकल साइड लेता है तो एक सबसे ऊपर उसके मन में क्या होती है कि उसे MBBS करनी है, उसे मतलब डॉक्टर बनना है। सबसे पहली चीज जो है, कोई बच्चा जो मेडिकल साइड लेता है तो पहला एम, पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। और डॉक्टर्स में भी सबसे टॉप पे MBBS आता है, जिसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके नाम के पीछे डिग्रीज लिखी होती है, MBBS है, MS है, MD है। तो MBBS एक तरह की बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, आपकी सर्जरी एंड मेडिसिन के अंदर, राइट। और MBBS एक आपकी जनरल डिग्री है, उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और स्पेशलाइजेशन में आप MD करते हैं आगे, फिर ये डिवाइड होता है कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों का MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो BMS करते हैं, ये आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी होती है, BMS जिसका नाम होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, राइट, और उनका भी काम ऑलमोस्ट एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, बट कुछ एंगल्स पे हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि एमबीबीएस में पर्सन को सर्जरी करने का एक तरह से उसके पास में पे वो स्पेशलाइजेशन करता है। सिमिलरली होम्योपैथी के डॉक्टर भी होते हैं जिसको हम बीएचएमएस कहते हैं, दैट इज होम्योपैथिक एंड द मेडिसिन। यू हैव द बीडीएस भी होते हैं, आपके जो डेंटल साइंस से डॉक्टर होते हैं जो आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं, या बीएनवाईएस भी होते हैं, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। आप देखेंगे आज के टाइम में का ये एक्यूप्रेशर काफी ज्यादा स्कोप है, तो ये एक आपके पास में ऑप्शन होता है मेडिकल साइंस के अंदर अगर आप मेडिकल साइंस में रहना चाहते हैं। और इन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम है, आपको नीट का एग्जाम देना होगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे अपने इन एक तरह से इन चीजों में करियर मेक करना चाह रहे हैं तो उनको नीट का एग्जाम देना। अभी मैं नीट के एग्जाम पे भी आता हूँ। सेकेंड होता है बेटे एलाइड मेडिकल सर्विसेज। एलाइड मेडिकल मतलब जिसको हम पैरामेडिकल भी कह देते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग टॉप पे रहता है। आप मानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर किसी भी, वैसे तो आजकल पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग जो होती थी वो गर्ल्स के लिए होती थी, ठीक है, बट आज के समय में बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बॉयज भी आ सकते हैं, मतलब बॉयज के लिए भी ओपन होती है। तो जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा 100% उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो कम से कम 10-12 नर्सेज उस डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब लेने का। इसके साथ साथ आप बीएससी रेडियोलॉजी और मतलब काफी स्ट्रीम्स हैं जो आप एक तरह से पैरामेडिकल सर्विसेज में उसे हम कहते हैं, या फिर आप फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी, फार्मेसी डी फार्मेसी होती है। तो मतलब एक काफी ज्यादा स्कोप है अगर बच्चा मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहे तो। देखिए चार्ट है, इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप पे एमबीबीएस है, फिर आपका बीडीएस है, उसके बाद आपका बीपीटी है, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस है, होम्योपैथी। पहले तो आपको नाम भी उसके मतलब भी पता होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं उसके बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है रवि कुमार बीएचएमएस, तो आपको जैसे ही बीएचएमएस आपने पढ़ा तो आपको पता है भी होम्योपैथी का डॉक्टर है, ठीक है। उसके नाम के नीचे अगर आपका लिखा हुआ है बीएमएस लिखा हुआ है तो आपको पता है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बच्चे को नॉलेज होनी भी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होता है उतने ही आप अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये एक सारे तरह से अलग अलग कोर्सेज है जो बच्चे के पास में ट्वेल्थ के बाद ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टाइप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है कि जो मेडिकल साइंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हम एक एक करके इन डिटेल बात करते हैं इन सबके ऊपर, और भी क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या स्कोप है ट्वेल्थ के बाद में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए बेटे ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपको मेडिकल साइंस में करियर बनाना है तो आज के समय में आपको नीट का एग्जाम देना है। मतलब नीट का एग्जाम होता है एट प्रेजेंट जो एग्जाम का नाम है, हो सकता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो उस टाइम पर नया पैटर्न हो, पर आज के टाइम पे जो है वो नीट का एग्जाम होता है। 3 आवर का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 180 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जो भी आपने +1 +2 में पढ़ा है सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो भी नीट का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। तो एक चीज आप मान सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है तो नीट का एग्जाम देना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब 180 मार्क्स का जो पेपर आता है वो कैसे डिवाइडेड है, उसके बेटे 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट फिजिक्स का है 45 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का है 45 आपके क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड होता है बायोलॉजी 90 क्वेश्चन। मतलब बायोलॉजी का जो फोकस है वो नीट के एग्जाम में ज्यादा रहता है। ठीक है, एक चीज और मैं बीच में ऐड कर दूं कि बहुत बच्चे बेटे आप में से ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए मेडिकल साइंस से नहीं है, मेडिकल साइड से नहीं है, फिर भी उन्हें अलग अलग करियर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या उसके पीछे, कि अगर आप अपने टाइम में इन चीजों की प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कम से कम आपके छोटे भाई बहन है, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपको पता होगा कि आप किसी को एडवाइस कर पाएंगे। तो तभी मैं बार बार हमेशा कहता हूं हर सेशन के अंदर कि आपको हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, बट हमारे आने वाली जनरेशन जो है, आपके नोन के बच्चे हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अभी नहीं बेटे ऐसे तैयारी करनी है, स्कोप काफी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी अपना इंटरेस्ट लेके समझे। तो 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो प्लस वन प्लस टू में आपने पढ़ा है वहीं से आपका आना है सारा का सारा। थोड़ा एडिशनल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो मतलब आप नीट की अगर आप एक टारगेट करें तो, और ये हार्ड वर्किंग काम है, ट्वेल्थ के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है। ट्वेल्थ में आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हो, चाहे कम भी है, तो अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो ये एक टारगेटेड एग्जाम है। और जितने भी मेडिकल साइंस के कोर्स हैं, चाहे आपको मैंने BHMS बताया, चाहे आपको मैंने MBBS बताया, चाहे आपको मैंने BMS बताया, तो सभी नीट से ही आपका एडमिशन लेंगे, सभी के सभी नीट से ही एडमिशन लेंगे। और जैसे BSc नर्सिंग है, ये सभी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपने टारगेट करना है अगर आप आगे फ्यूचर में मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लस वन प्लस टू में आपके पास में मेडिकल साइड अगर है तो। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने BMS BHMS बताया, ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं, फार्मेसिस्ट बनते हैं। आपके पास बी फार्मेसी का कोर्स होता है जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, 4 ईयर का कोर्स रहता है आपका। ठीक है, और बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास में काफी स्कोप है। मैं आपको थोड़ा स्कोप, सबसे पहला क्या है कि बेटे फार्मेसी करने के बाद आप अपनी फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे आज के टाइम में फार्मेसी का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, इतनी भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, फूड हैबिट्स कह लीजिए या हमारा वर्क कल्चर कह लीजिए, कि उसमें हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हेल्थ पे ज्यादा ध्यान
1: मेरा पता सिखाने का मन कर रहा है पर
0: क्या
1: अरे ब्रदर तो आज मेरे
0: हाँ जी, तो अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसमें आपको मतलब आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। तो फार्मेसी जो है वो एक बहुत आसान जरिया होता है भी, आप उसके बाद अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप एज ए MR का काम कर सकते हैं जिसको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर आप आगे फ्यूचर में और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहें, एम फार्मा करना चाहें, तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। और एम फार्मा करने के बाद टीचिंग में, रिसर्च में, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप है फार्मेसी का। ऑल्दो MBBS के मुकाबले फार्मेसी की जो डिग्री को अगर हम MBBS से कंपेयर करें तो लो माना जाता है, बट अपने आप में फार्मेसी का स्कोप है। देखिए जितनी भी दवाइयां बनती हैं वो सब फार्मेसी वाले ही बनाते हैं। मतलब MBBS जो है ना, जो डॉक्टर है वो तो उसे प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो एक्चुअल में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो फार्मेसिस्ट ही बनाता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्कोप है। और आप इसको फ्यूचर में अगर जो बच्चे मतलब एक तरह से फार्मेसी में जाना चाहें तो बी फार्मा उन्हें करना रहता है। और दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, आप मानेंगे फार्मेसी के इंडिया में काफी कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसमें कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काफी कम रहती है, तो बहुत ही कम पैसा स्पेंड किया आप अपना एक बार। मेन थिंग इज दैट कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और नीट की प्रिपरेशन में जो लो स्कोरर्स होते हैं जिनका एक तरह से MBBS या BDS में नहीं हो पाता है, तो फिर वो फार्मेसी की तरफ जाते हैं। ऐसे ही फिजियोथेरेपी एक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का प्रोफेशन है। आज भी जो फिजियो है, आज भी फिजियोथेरेपिस्ट की इनकम काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में भी करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, आप अपना काम कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को आप देखिए, अगर आप इफ यू स्टे इन दिल्ली और इन एनी प्लेस, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक सिटिंग के ही 1000 रुपीज चार्ज कर लेता है, मतलब एक आधे घंटे के 500 से 1000 रुपए चार्ज कर लेता है। और फिजियोथेरेपिस्ट में अपना काम करना बहुत आसान है, वैकेंसीज काफी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या करना रहता है, आपको बीपीटी करना होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर आपका डिग्री है, और उसके बाद में 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। फिर आप अलग अलग स्ट्रीम के फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे, उसके अंदर अगर आप मास्टर डिग्री करें तो स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं, मतलब हाँ एक्चुअली क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट में फी स्ट्रक्चर जो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनमें तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, उनमें तो स्टाइफंड तक मिलते हैं, मतलब जो आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें फीस काफी कम है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में पर एनम फीस होती है 50,000-60,000 के आसपास एनुअल फीस रहती है। बट देखिए क्या रहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी हैं, बाकी इसके अंदर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। तो एडवाइस यही किया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ताकि आपको ज्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी का, जिसको आप एज ए करियर बना सकते हैं। बीएससी फाइनल के बाद आपके डिप्लोमाज होते हैं। देखिए सर क्या रहता है कि आपके दो तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो तो एक तरह से 4 साल का आपका फिजियोथेरेपी का ही कोर्स है। इसमें क्या रहता है कि जो लोग 12th के बाद नहीं कर पाते वो बीएससी कर लेते हैं। तो बीएससी कर डिप्लोमेज होते हैं आपके, 2 ईयर का है डिप्लोमा, आपने 2 साल का फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी ऐसे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल्सो इन द मार्केट। तो मैं अभी जब अभी आगे स्लाइड्स के अंदर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें कई सारे मैं बताऊंगा आपको ये डिप्लोमाज होते हैं जो आप 12th के बाद में या बीएससी के बाद में कर सकते हैं, और उसके अंदर भी बहुत इजीली अपना करियर बनाया जा सकता है। इसके बाद जो बच्चे एक तरह से साइंस लेते हैं, मेडिकल साइंस लेते हैं, तो उनके पास में हाँ ये भी है, बीएससी के बाद में लेटरल एंट्री मिलता है बिल्कुल, अगर आप उसके अंदर बीपीटी करना चाहें तो आपको मतलब 1 साल का एडवांटेज हो जाता है। आप बिल्कुल अकबर जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो ऐसी आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होता है वेटरनरी साइंस का, जिसको हम बीबीएससी कहते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो इसका एग्जाम होता था, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, AIPVT। ये बेसिकली जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आप देखें इंडिया में जानवरों के डॉक्टरों का भी काफी स्कोप है। रूरल एरियाज की बात करें जिसमें गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए AIPVT का एग्जाम था लास्ट ईयर तक, इस बार तो नीट का ही एग्जाम लिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, तो एक ही एग्जाम कर लिया। तो ये वेटरनरी साइंस होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक काउंसिल है, वेटरनरी काउंसिल है, उसमें आपका BBSC होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसमें जानवरों से रिलेटेड आपको जैसे आप MBBS करते हैं तो वो ह्यूमन से आपका डील करता है, तो वही आपका जो BBSC है वो डील करता है एनिमल से। और काफी कॉलेजेस हैं इसके भी इंडिया में, असम में है, जोरहाट में है, बॉम्बे में है, ऐसे हिसार में भी आपके आसपास में, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। जब आप कोई बच्चा एक स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो BBSC के अंदर तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, तो उसे इंडिया लेवल पे काफी इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो वेटरनरी के अंदर टीच करते हैं। और इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि रूरल एरियाज में एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे हर गांव में एनिमल का हॉस्पिटल होता है, तो एनिमल का हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टर भी चाहिए, राइट। तो जो इसमें डॉक्टर होते हैं वो आपके BBSC होते हैं, तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का भी काफी स्कोप है। अगर आपने BBSC किया हुआ है तो बहुत इजीली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है। तो ये भी एक स्कोप रहता है, अगर आप साइंस साइड आप ले रहे हैं तो आप वेटरनरी के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये एक कोर स्ट्रक्चर है BBSC का, जिसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कहते हैं। इसकी जो कोर्स फीस है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां तो 5-10 हजार रुपए एनुअल फीस है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख तक फीस है उसके अंदर 1 साल का। और 5.5 साल का कोर्स है और उसमें फिर आपकी जो सैलरी है अच्छी सैलरी मिल जाती है। मतलब ये मतलब एक टाइप से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा रहती है, तो गवर्नमेंट जॉब में आप एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो जो एक तरह से डॉक्टर का स्केल रहता है तो वो स्केल रहता है। तो स्टार्टिंग में 5-1 लाख के आसपास आपका एनुअल सैलरी रहता है, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं एज ए करियर, वेटरनरी साइंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी एक ऑप्शन रहता है कि जिन बच्चों ने 12th में मेडिकल साइड लिया है, ठीक है, उनका अगर इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एमबीबीएस और वेटरनरी साइंस, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती हैं। जैसे आप हरियाणा में देखें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, आप दिल्ली में देखें तो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वहां पे आपकी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने कई सारे मतलब एक तरह से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, नर्सरी के बिजनेस में काम कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक्स होती हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में लैंड अवेलेबल है तो अपनी उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम में तो वैसे भी अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो जो फार्मर की जहां तक बात है ना, हमारे फार्मर जो है वो मतलब एक तरह से एजुकेशन कम है उनके अंदर, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं हो पाते, तो वो एक तरह से जो स्टैंडर्ड चीजें चल रही हैं उन्हीं पे ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स अगर एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं, तो आप बहुत हद तक उन्हें एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। इसके साथ साथ काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं। आप देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके असिस्टेंट कंजर्वेटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर जहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो बीएससी एग्रीकल्चर मांगी जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो इन सब गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं और आपको एक सिंपल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे ही आप इसमें रिसर्च में जाना चाहें तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसमें आप एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सोयल साइंसेज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब काफी बड़ा स्ट्रीम है ये। आप किसी एग्रीकल्चर, अगर आपने कभी किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके देखा हो तो आप देखेंगे इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें यू कैन गो फॉर द मास्टर डिग्री ऑल्सो। आप एमबीए भी कर सकते हैं एग्री बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे एग्री बिजनेस का भी स्कोप काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो एमबीए इन एग्रीकल्चर भी ऑफर करती है, तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कोप इज वेरी वाइड, डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। बाकी एक चीज मैं फिर आपको यहां पर ऐड करूंगा कि +1 +2 में मेडिकल साइंस लेने का मतलब एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस कतई नहीं है। एमबीबीएस तो उन बच्चों के लिए है जिनका वो टारगेट है, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस आप और भी कई जगहों पर कई चीजों में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और इन चीजों का भी अपना पूरा स्कोप है, ठीक है, वो इंटरेस्ट की बात हो जाती है। तो इन तो दैट इज अ वेरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा आपका स्कोप है एग्रीकल्चर का भी, बीएससी एग्रीकल्चर का। फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज, पहले तो हम ये समझें कि पैरामेडिकल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करता है, फिर उसके साथ में उसकी असिस्टेंस के लिए नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे और भी हॉस्पिटल में काफी लोग हैं। काफी लोग में क्या क्या हैं, आप देखेंगे एक फार्मासिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन आपको देता है। अगर आप लैब में जाएंगे आपको टेस्टिंग करवानी है तो लैब टेक्नीशियन आपको मिलेगा। अगर आपका एक्सरे होना है तो एक्सरे असिस्टेंट अलग से होगा। ऑपरेशन अगर आपका होना है तो एनेस्थीसिया जो एक तरह से आदमी को बेहोश करता है वो अलग से होगा। तो इस तरह से मतलब काफी बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट एक तरह से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्यादा आगे टाइम वेट नहीं कर सकते या जो एक तरह से हम ये कहें कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, तो उन्हें ये लगता है भी ठीक है एमबीबीएस करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो चलो हम मेडिकल प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, तो आप उनकी बजाय आपने और कोई कोर्स कर लिया। तो उसमें सबसे पहला कोर्स आपका होता है जीएनएम का, जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं। जीएनएम का कोर्स होता है, आप देखते हैं आपके आसपास में एएनएम और जीएनएम के कोर्स किए जाते हैं। तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है ट्वेल्थ के बाद में, ठीक है। तो इसमें आप एडमिशन सकते हैं ले, इसमें काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एएनएम और जीएनएम के लिए और काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपने अगर जीएनएम का कोर्स कर लिया तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्टाफ नर्स होता है। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इसके बाद भी आपको नर्सिंग जॉब मिलती है। अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो इसके बाद आपको जो जॉब टाइप मिलेगी वो आपको नर्सिंग टाइप जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन होते जा रहे हैं और आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे आज ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं कि जैसे आपका मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है और ऐसे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मतलब एक तरह से इट्स लाइक ए 5-star होटल्स। तो वहां पर काम करने का मजा अपना ही है, चाहे आप मतलब इफ यू आर नॉट एमबीबीएस कोई बात नहीं, उससे नीचे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक वे ऑफ लिविंग है और आजकल हॉस्पिटल्स काफी ठीक ठाक सैलरी भी पे करते हैं, तो ये एक आपके पास में स्कोप रहता है। ऐसे ही आप एनेस्थीशियन असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, 2 मंथ का कोर्स रहता है, बट इसमें स्कोप थोड़ा कम है। मैं यहाँ एक बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स होता है। ये बेटे ये आप मान के चलिएगा ये एक ऐसा कोर्स है एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स जो है, एक तो वो 10th बेस पे होता है, एक तो उसका जो एडमिशन होता है 10th बेस पे होता है। हर स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट में आप चले जाओ एक स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हरियाणा का जो है वो रोहतक में है, ठीक है। यहां पर मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है जिसको हम एमपीएसडब्ल्यू कहते हैं। आप जैसे बेटे गांव से बिलोंग करते होंगे आप में से काफी बच्चे, तो आप देखते हैं कि गांवों में मलेरिया एक टाइप से जो वर्कर होते हैं, ठीक है, पहले उन्हें मलेरिया वर्कर कहा जाता था, तो वो एमपीएसडब्ल्यू होते हैं। अगर आपने एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स किया हुआ है तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है तो एक साथ वैकेंसी निकलती है, ठीक है। जब भी वैकेंसी आती है तो पुराने जिन्होंने कोर्स किया होता है सबकी जॉब लग जाती है। तो एमपीएसडब्ल्यू का वर्कर का कोर्स होता है, हेल्थ वर्कर का कोर्स होता है, 18 महीने से 2 साल का कोर्स होता है 10th के बाद में, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने का स्कोप ज्यादा रहता है। ऐसे ही आपका FMHW होता है, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स रहता है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और 10th बेस पे एडमिशन और मार्क्स बेस्ड एडमिशन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपको सिंपल मार्क्स आपके जो 10th में आए हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली बात है। बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करके देखा, ठीक है। बट अगर ये है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो और आप थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, जैसे आपकी 10th हो गई तो आप थोड़ा पता करिए कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। हरियाणा का तो मैं आपको सकता हूँ बता, हरियाणा का रोहतक में इंस्टीट्यूट है और ये आपका पीजीआई के अंदर ही है, ठीक है। तो यहां पर आपका कोर्स रहता है एमपीएसडब्ल्यू का। ऐसे ही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होता है। आप देखो बेटे, आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो डॉक्टर आपके टेस्ट लिख देता है, आपका ब्लड टेस्ट लिख दिया, ये कराओ वो कराओ, तो वो टेस्ट करने वाले कौन लोग हैं, वो टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, जिसे हम LT कहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 2 साल का कोर्स रहता है 12th के बेसिस पर, और LT के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट काफी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स हैं। और अगर आपने LT का कोर्स किया हुआ है तो आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं सबसे पहली चीज, या आप किसी लैब में काम कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी लैब में काम किया, किसी भी एक तरह से लेबोरेटरी में आपने वर्क किया, और उसके बाद फिर आप अपना भी एक तरह से ये जो लैब का अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, जिसको हम LT कहते हैं, लैब टेक्नीशियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का भी देखिए, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, जितने ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो उनके उतने ही ज्यादा टेस्ट होंगे। अब जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट तो लैब टेक्नीशियन ही करेगा, एलटी करेगा, तो एलटी करेगा तो एलटी का भी स्कोप काफी ज्यादा है। आप देखेंगे गांवों में जो एलटी होते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने एक सिंपल एलटी का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, जैसे कि उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन के नाम याद कर लिए, थोड़ा देख लिया अभी बुखार है तो ये दवाई देनी है, ये हो गया तो ऐसे करना है, और कुछ उन्होंने साथ साथ कुछ एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चीजें सीख ली, और उन्होंने गांव में अपनी क्लिनिक ओपन कर रखी है। बढ़िया काम चलता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब हर चीज का स्कोप है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है तो उसमें भी कोर्स रहता है आपका, ऑपरेशन थिएटर का भी कोर्स रहता है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, जैसे आप देखते हैं अभी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते समय उसके चारों तरफ काफी लोग होते हैं जो डॉक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या उसके साथ साथ काफी चीजें ऐसी हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन करने से पहले जो करनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है जिसको हम ओटीए स्टाफ कहते हैं। तो ये काफी कोर्सेज है, मतलब जो आप डिप्लोमा या एज ए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और जिनको करने के बाद में मेडिकल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप अपना एक प्लेस बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, बट आप कहीं ना कहीं अपना एक एक अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा आपको कि मेडिकल लेना, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूं प्लस वन प्लस टू में वो दे टेक द मेडिकल साइड, पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ने में अगर ज्यादा अच्छे नहीं है तो एमबीबीएस में तो नहीं हो पाएगा, बहुत क्लियर सी बात है। फिर ऐसा नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो मेडिकल साइड लिया बिल्कुल छोड़कर फिर वो बीए में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं, मतलब आप बीए में एडमिशन लेने की बजाय आप कुछ एक्सप्लोर करके देखो, कुछ और कोर्सेज के बारे में जान के देखो कि एमबीबीएस नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप और ऐसा कोर्स कर लीजिए जिसके बाद कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो मैंने आपको इतनी सारी कोर्सेज के बारे में बताया, तो इसमें से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जिन कोर्सेज में जॉब्स निकलती हैं तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, और दूसरा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जो बीएमएस मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक होता है, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसमें एमडी भी होती है, मतलब देखिए क्या है कि जितने भी आपके जो कोर्सेज हैं, आपने एमबीबीएस किया चाहे आपने बीएचएमएस किया चाहे आपने बीडीएस किया, सभी में मास्टर डिग्री भी होती है, तो मास्टर डिग्री में थोड़ा और स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो जो ज्यादा स्पेशलाइजेशन है उसमें आप आगे जा सकते हैं, तो वहां से आपको काफी एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं करा, जितने कोर्सेज की हमने बात करी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करा, तो फिर आप ट्वेल्थ मेडिकल साइड के बाद में आप बीएससी कर सकते हैं, सिंपल बीएससी जिसको हम जनरल बीएससी कहते हैं, या बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स स्पेशलाइज हो जाती है, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने किया, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, और बीएससी जनरल में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, और बीएससी करने के बाद अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, हमने एक पूरा अलग से सेशन लिया था कि टीचिंग प्रोफेशन का क्या स्कोप है, कैसे कैसे उसमें आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बीएससी करने के बाद में एटलीस्ट टीजीटी के लिए अप्लाई हो जाते हैं, मतलब आपने बीएससी किया उसके बाद बीएड कर लिया, तो बीएड करने के बाद 8th क्लास तक के स्कूल में आप बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और साइंस पढ़ाया जाता है आपके, आप साइंस पढ़ा सकते हैं, और आप देखिए बीएससी करने के बाद तो आप प्लस वन प्लस टू लेवल तक की साइंस भी इजिली पढ़ा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आप अपनी जो मास्टर डिग्री है वो साथ साथ करते रहिए, बीएससी किया है आपने, एमएससी किया, बीएड किया, वो ठीक है, बट क्या होता है कि जब आपने बीएससी कर ही लिया है तो एटलीस्ट प्राइवेट में इधर उधर आप कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक टाइप से गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप तो है ही, हमेशा ही रहा है कि मैंने आपको बताया था कि आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया है चाहे बीए किया है, अगर आप एसएससी बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, एसएससी बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक तरह की आपकी मास्टर डिग्री है, तो मतलब एक तरह से ये आपकी बैचलर जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है, तो आप ऐसा नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएससी कर लेते हैं और बीएससी करने के बाद में वो एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वो एग्जाम्स देते हैं, राइट, तो ये सारी चीजें आपके पास में है। एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि बीएससी करना मतलब हार्ड वर्किंग काम है, ऐसा नहीं जैसे आप लोग बीए करते हैं, बीए में आपने बहुत ही लाइट सब्जेक्ट आपने ले लिए, आपने हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, तो वो बहुत लाइट सब्जेक्ट है। बट अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी इजी नहीं है, आपको उसमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स, एक बहुत काफी मेहनत वाला काम है। पर यह है कि एक बार साइंस में आपकी कमांड हो जाए तो कम से कम ट्वेल्थ लेवल तक के बच्चे को भी अगर आप एज ए कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट करें तो भी आपकी काफी इनकम है। मतलब स्कोप हर चीज का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट और पढ़ने की बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी शहर में हो, हर शहर में आप देखेंगे कि साइंस के काफी टॉप टीचर्स होते हैं। आप उनके अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने बीएससी या एमएससी किया होता है, ठीक है। बट अगर आप उनके पास पढ़ने वाले बच्चों की लाइन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाखों में इनकम है। उस तो एक तरह से आप किसी भी फील्ड में जाइए, उसको तो अच्छे ढंग से करना, वही आपको एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाता है। तो ये कहना हम बहुत बच्चों से सुनते हैं, कई बच्चे आप भी आपस में बात करते होंगे भी बीए बीएससी करना क्या करना, बट ऐसा नहीं है। अच्छे ढंग से की हुई हर चीज, एक अच्छी इंटेंशन से की हुई, हार्ड वर्क से की हुई का हमेशा स्कोप रहता है। मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद आप जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एक तरह से कॉलेज कैडर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, वो मैंने आपको एक अलग से सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको उसके बाद नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, सीएसआईआर कंडक्ट कराती है, तो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो ये सारे स्कोप आपके पास में है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी आपको लगे भी कुछ नहीं करना, तो बेटे प्राइवेट स्कूल तो है ही अपना, प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही सकते हैं। बीएससी एमएससी करने के बाद में आपको जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बीएससी एमएससी के बेसिस पर वैकेंसी आती हैं, लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस का एक मोटा मोटा, ये मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया। तो आप लास्ट में ये जरूर समझ सकते हैं कि बीएससी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं एसएससी बैंकिंग के थ्रू, तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे बीए आपने किया, चाहे आपने बीएससी किया, चाहे आपने बीकॉम किया, वो सब इक्विवेलेंट है। बट कुछ प्लेसेस पर टीचिंग में साइंस के टीचर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। रीजन क्या है? क्योंकि साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी साइंस में कमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल पाई तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक मतलब ये सारा स्कोप जो है, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब हम आपके एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपके मिले काफी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके जो दो क्वेश्चन हैं आप अपने चैट बॉक्स के अंदर या वैसे आप पूछ सकते हैं।
2: सर, फार्मास्यूटिकल्स के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में कितने बेनिफिट?
0: देखिए क्या होता है कि हर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। पहली चीज, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, आप कभी चले जाइए, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, हर पीजीआई में फार्मासिस्ट होते हैं, तो उन सब की वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। हाँ, ये है कि क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 फार्मासिस्ट होंगे। क्योंकि फार्मासिस्ट का काम क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो उनका काम होता है कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आगे जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो जाके फार्मेसी से लेते हैं, तो ये एक जो मेन काम होता है फार्मासिस्ट का। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या पीजीआई में, इन सब में काफी वैकेंसीज निकलती हैं, इनकी पहली चीज। सेकेंडली क्या होता है कि बीए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है तो इंडिया में जो ड्रग इंस्टीट्यूट है, मतलब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, जो ड्रग इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च की जाती है या क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, तो वहां पर भी फार्मेसी की वैकेंसीज आती है। तो वहां भी आप एज ए फार्मेसिस्ट काम कर सकते हैं, या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप अपना एक तरह से यू कैन ओपन योर ओन केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं, या एमआर का वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा स्कोप रहता है फार्मेसिस्ट का। हम मनोज जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ यू वांट टू ओपन ए क्लिनिक इन रूरल एरिया, तो देखिए क्या होता है कि एमबीबीएस के अलावा आप बीएमएस बीएचएमएस कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है तो आपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर आपने बीएमएस किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक में किया हुआ है, तो भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। या उसका एक तरीका क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने ये चीजें नहीं की हुई है तो फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए पैरामेडिकल कोर्स करके। देखिए ऑल्दो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में क्लिनिक मतलब एक तरह से आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर क्या रहता है कि आपने पैरामेडिकल कोर्स कर लिया और आपको फील्ड की अच्छी नॉलेज है, राइट। तो आपने जैसे मान लीजिए एक्यूप्रेशर और एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी में आपने किया हुआ है, तो आपने उसके नाम से क्लिनिक ओपन किया, पर पेशेंट्स तो हर तरह के आएंगे आपके पास में। देखिए क्या होता है ना, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो एंटाइटल्ड है, अपने नाम के नीचे स्पेसिफाई कर सकता है ये फील्ड के पेशेंट मेरे पास आएंगे। आपने कोई और कोर्स किया, फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक ओपन करी और इनडायरेक्टली आप उस वहां पर एज ए क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, उसी के अंदर ही इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत केमिस्ट ऐसे हैं जो जो आपके डॉक्टर का काम है ना वो केमिस्ट्री कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज बेटे आपको पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है कि आप पहले एक चाहिए एक, अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास आएंगे तो पहले तो आपको 500 रुपए की आपकी पर्ची काटेगा, फिर आपकी बात पूछेगा आपसे, फिर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है। और मैं आपको एंश्योर कर रहा हूं, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप किसी केमिस्ट के पास भी चले जाइए और केमिस्ट को बता दीजिए भी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट अपने आप आपको वो मेडिसिन दे देगा। 99% चांसेस में जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है 500 रुपए लेने के बाद में वही मेडिसिन केमिस्ट आपको देगा 99% केसेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो केमिस्ट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली डॉक्टर का काम कर रहा है।
3: जैसे A&M करना हो तो प्लस वन या प्लस टू में साइंस जरूरी है या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं? फिर
0: देखिए क्या रहता है कि A&M और GNM के लिए तो साइंस जरूरी है, मतलब तो साइंस रहेगी आपकी A&M के कोर्स के लिए, तो 12th में साइंस होना चाहिए आपके पास, इसमें मतलब 12th साइंस होना चाहिए इसमें। ओनली MPSW के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपने अगर 10th किया हुआ है, क्योंकि उसमें तो कोई स्ट्रीम नहीं होता है, तो उसमें आप बिना किसी स्ट्रीम के आप कर सकते हैं MPSW। बाकी में काफी कोर्सेज में साइंस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी।
3: जैसे सर प्राइवेट कॉलेज में करवाते हैं ना, जो होते हैं ना आर्ट्स वाले उनको भी करवाते हैं,
0: जो GNM का कोर्स है ना उसमें तो साइंस चाहिए, A&M में नहीं। देखो इसमें भी दो कोर्सेज आपके, एक आपका GNM है और एक आपका A&M है। A&M में बिना साइंस के भी हो जाता है, बट जो GNM है वहां साइंस चाहिए आपको।
3: जी सर, मैं A&M की बात कर रहा था।
0: हाँ, जो A&M में हो जाएगा वो हो जाएगा, बट तो ये मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे आप इनडेप्थ जाएंगे ना तो अलग अलग आगे इनडेप्थ, उसमें अलग अलग डिवीजन होता जाता है। ऐसी जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये देखिए ये जो सारी चीजें है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्राइमरी आपकी IT वर्क है। IT मतलब हम ये करें कि जो बैक एंड से आपकी वो रहती है, सपोर्ट रहती है, ठीक है। उसमें तो आपके कोर्सेज होते हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। उसमें जनरल आपने BA BCOM किया हुआ है, BSc किया हुआ है, आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, या आपको एक तरह से IT से रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड है, तो ये काफी वैकेंसीज होती हैं। क्या है ना, देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि दो तरह की जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक वो जॉब्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, और सेकंड जॉब्स हैं जो स्पेशलाइज्ड नहीं है। हाँ, जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग स्टैंड फॉर CMS एंड ED कोर्सेज, देखिए क्या रहता है ना, ये सब आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ एरियाज आर देयर जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। हम तो एक जनरली MBBS या नर्सिंग की बात करते हैं, बट उसके अलावा भी कई तरह की वैकेंसी होती हैं, तो ये भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग आपका। जैसे एक टाइप से जो असेंशियल ड्रग का कोर्स है, तो उसमें उन्हीं फील्ड्स में जॉब मिल जाता है आपको, बट क्या है कि ना इनके स्कोप ज्यादा नहीं है। स्कोप मतलब की वैकेंसीज कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है, वैकेंसीज कम होती है, तो इसलिए फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती और उतने फेमस कोर्सेज नहीं होते हैं। ये थोड़ा देखा जाता है। बाकी जॉब्स तो देखिए है ही, आप देखिए हर सेक्टर में अगर कोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप भी है। एट द एंड हम एक बात कह सकते हैं, अगर भी कोर्स किया है ना, चाहे आपने कितना भी, चाहे आपने 6 महीने का या साल का भी किया है, तो उसका कहीं ना कहीं स्कोप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाती है। डाइटिशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपका है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो वहां भी आप देखते हैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियन की वैकेंसीज होती हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो मतलब हेल्थ का जो फील्ड है दैट इज ऑलवेज द ग्रे एरिया, हमेशा ही जॉब्स हैं इसके अंदर इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ. तो थोड़ा सा एक तरह से आगे बढ़ के काम करने वाली बात है, बाकी स्कोप है हेल्थ का हमेशा से. ठीक है, क्या है कि फार्मेसी करने के बाद में ना इंडस्ट्री में क्या रहता है कि थोड़ा सा जैसे आप एमआर की जॉब करते हैं या कोई भी टाइप की जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिल जाते हैं, बट इसमें धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है. मतलब देखो थोड़ा टाइम लगता है. ये फील्ड वो नहीं है कि आपने आज ही आपने अपना फार्मेसी किया और पहले दिन ही आपको 1,00,000 रुपए की जॉब मिल गई, बट ये है कि आप देखेंगे 2-3 सालों के अंदर अंदर आप काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं. हाँ, फार्मेसिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं. उसमें क्या है, देखिए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है उसके बाद एम फार्मा आपने किया हुआ है, देखिए क्या होता है ना कि जो बिजनेस मतलब आपने इंडस्ट्री ओपन करने में, तो आपने अगर बी फार्मेसी भी किया हुआ है तो बी फार्मेसी भी अपना एक तरह से फार्मेसी ओपन कर सकता है, जिसमें वो स्टार्टिंग में जो ड्रग्स मतलब हम ये कहें कि जो मेडिसिन होती है स्मॉल जो आपकी मेडिसिन है जहां इन्वेस्टमेंट कम है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, बट उसमें भी कॉम्पिटिशन है. आपको स्टार्टिंग में यू नीड सम इन्वेस्टमेंट इन दैट, आपको उससे जो एसोसिएटेड जो सॉल्ट परचेज करने रहते हैं, फिर आप अपना काम कर सकते हैं. तो मतलब जो फार्मेसी में कुछ भी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बी फार्मेसी है. आपने एक बार बी फार्मेसी कर लिया तो आप ऑलमोस्ट फार्मेसी से रिलेटेड हर काम करने के लिए एंटाइटल है. तो टीचिंग का तो स्कोप ऑलमोस्ट हर फील्ड में, जैसे आपने अगर बी फार्मेसी किया है एम फार्मा कर लो तो एम फार्मा करने के बाद में यू कैन बिकम द टीचर. आपने एमबीबीएस किया, आपने एमडी कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं. तो हर फील्ड में, क्योंकि कोई भी फील्ड है जहां कोर्सेज है तो उन कोर्सेज में पढ़ाने वाले टीचर भी चाहिए होंगे, तो उससे रिलेटेड जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो अपना उसमें एज ए करियर दे कैन मेक देयर करियर. देखिए 12th में अगर आर्ट्स आपके पास है और आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं ना, तो आप जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. मतलब आप फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, या इस तरह के जो है उनमें आपको, क्योंकि देखिए जो जनरली जैसे एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस वो तो सब 12th में आपके मेडिकल साइंस पर उसके बेसिस पर है. ठीक है, आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रीम की फाउंडेशन नहीं है. ठीक है, तो मतलब इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं. बाकी जो कोर मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें तो आपको 12th में मेडिकल साइड होना चाहिए, बट उसके अलावा जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको 12th में नहीं है. आप जो मैंने आपको एमपीएसडब्ल्यू के बारे में बताया था, जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं, वहां पर आपको प्लस वन प्लस टू में स्ट्रीम का कोई वो नहीं है. तो ये थोड़ा और भी इन डिटेल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अभी एक तो पहली देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको ये स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मेडिकल साइंस जो है वो बहुत वाइड है. ठीक है, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा ये देखिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, फिर उसमें आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए, क्योंकि काफी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो उसके उनको करने के बाद में आप अपना उस फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं.
3: ठीक है सर, मेरे ख्याल में और कोई क्वेरी नहीं है किसी का.
0: थैंक यू.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो. रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है. रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है. आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो.

0: अब हमारे बीच में है मैम जो एटीटीसी से आए गुड़गांव से और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी सांगवन से, बबीता सांगवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती है, 50,000 फीस ही देके ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाते हैं और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट यस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम वी गॉट योर
1: पर्सनल अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर। हम लोगों के पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं ट्रेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली इटीसी 100% जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा। तो सबसे फर्स्ट बात वहां पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से भी स्टार्ट हुए आई थिंक बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है?

पंत जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल। आप भी शायद बहुत बार सुनते हो स्किल, तो एक्चुअल में स्किल क्या है? कोई वैसे बताइए स्किल। हाँ जी, स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गाने करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आज भी मुझे लगता है 99% में श्योर हूँ कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना। तो जब आपने वो स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे, इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ सीखा। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे, मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा धर के कैसे चलाना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हूँ और यहाँ आके जैसे उनको पता लगा कि उनका स्किल स्ट्रांग है तो आप उन्होंने ये ट्रेनिंग के थ्रू अपने उस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो जब आपने 90 डेज के कोर्स में ये सब कोर्स किया, अब आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी हिंदी कंडक्ट हुए होंगे, आई डोंट नो मैम। तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग मशीन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या उसकी उपाधि मिलने वाली थी। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर एक्चुअल में दो तरह से हम बात कर सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं और एक हम बात कर सकते हैं टेलर जो आप बुटीक में भी देखते हैं या फिर मशीन को जो चलाते हैं दैट इज टेलर। तो आपको इसकी अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें तो अपैरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की, और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहां पर दो तीन टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का निडल चलता है तब तक बिजनेस है, जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका इनकम कम। तो दैट मीन्स जो मशीन की निडल वहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो देट मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल होने बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन केस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई

0: छोटा सा ओपन करते हैं उसमें वो आपको हेल्प करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या लाना चाहिए? सबसे पहले आपको मशीन चलाना चाहिए, दूसरा कपड़ा सीना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीन्स आनी चाहिए। सीन्स का मतलब है कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीन्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इको सीम होगी, फैन सीम होगी, माउ सीम होगी, ये बहुत सारी टेक्निकल सीन्स के नाम है। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज्ड सीन कहते हैं। हर सीन्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंड सीन जिसे लोकल भाषा में लोग फोर्थ सीन भी बोलते हैं, जो कि आपको पूरे गार्मेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीन को सिर्फ सीन कर दो है ना, उसको बट उसको फिनिश कैसे कर दें, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीन क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहां पर किस एरिया में कौन सा सीन यूज आपका होना है, कहां सुपर इम्पोज सीन यूज होना है, कहां फ्रेंड सीन यूज होना है आपका, कहां लेट सीन यूज होना है आपका, कहां फेल्ट एंड फेल्ट सीन यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीन, सीन मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहां यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जो जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं, तो उनको छिपाने का काम करते हैं। या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं, या फिर हम गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम इसको फैंसी बोलते हैं। तो मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपके दो तरह के मार्केट में मशीन अवेलेबल है, सिंपल डोमेस्टिक मशीन जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं, सेकेंड आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SLLS सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करती है। तो ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SLLS मशीन तो आने भी चाहिए, ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये दो मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए। सीम क्लासेस कौन सी सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए एक सीम मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई, थर्ड थिंग क्वालिटी मेंटेन। क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है, जब आप कोई भी गार्मेंट को स्टिच करते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं, उसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब दो स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब, उसको हम बैक कट बोलते हैं। तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना, ओवरलॉक यदि आप कर रहे हैं तो ओवरलॉक भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके भी थ्रेड आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। तो देट मीन्स कोई भी जब आप स्टिच करते हो आपको टेक्निक के साथ साथ क्वालिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के बाद जो सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट, स्पीड है ना। यदि आपकी स्पीड है तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहां से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में आपका पीस रेट पे काम होता है, समटाइम पीस रेट पर, समटाइम मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आनी ही आनी चाहिए। इवन आप अपने बुटीक भी ओपन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें क्वालिटी, स्पीड, टेक्निक, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्किल की बात की गारमेंट इंडस्ट्री में या क्या इसका वैल्यू है, तो हम लोगों की बेसिक नीड, यदि हम एक सिंपल इंसान की बेसिक नीड क्या हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान है ना। आई थिंक सब इससे सहमत है, रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो यदि हम बात करें कपड़ा जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो यदि हम कपड़े टेक्सटाइल लाइन की बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं या अपैरल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे ही है डिमांड वाइज। तो यदि आप इसमें फ्यूचर बनाते हैं और उसमें आप अपना हार्डवर्क करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और अपनी फैमिली को ही नहीं आप अपने पूरी टीम को साथ में लेकर जा सकते हैं। शायद शाही एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी बच्चे ने शाही एक्सपोर्ट हाउस? गारमेंट इंडस्ट्री है, शेयर किया होगा। तो मैं उनकी थोड़ी सी आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि वहां की जो अभी मेन ऑनर है, मतलब कि वो रिटायर हो चुकी है अभी, सरला आहूजा जी, वो बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस एक ऑपरेटर से किया, सिर्फ एक ऑपरेटर से। लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो उनकी 50 यूनिट्स है, उनके वहां पर 11 लाख के आसपास जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, 75,000 के आसपास यहाँ पर फीमेल जो है काम कर रही है। तो जब एक ऑपरेटर, एक सिंपल हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, लेकिन यदि वो ऑपरेटर भी यदि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है तो आप शाही क्या किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अंदर जरूर होना चाहिए। सरला आहूजा जी का नाम सुना है? सोनम कपूर का नाम सुना है? कौन है? अनिल कपूर का नाम सुना है? अनिल कपूर की जो डॉटर है सोनम कपूर, और सोनम कपूर सरला आहूजा जी की बहू है। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको उनकी बहुत स्टोरी मिलेंगी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को आप सिंपल ना समझिए, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन उसको किस डेडिकेशन के साथ, किस हार्डवर्क के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपको आगे लेकर जाना है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ आपको आधे घंटे का लेक्चर दे देंगे, मैम आपको शेयर करेंगे, अभी मैम ने शेयर किया आपको क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप यहाँ से सुनते हो यहाँ से निकालते हो तो आई थिंक मुझे लगता है ना तो हमारा कोई वैल्यू है ना ट्रेनिंग का कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है। लेकिन यदि आप यहां से सुन के और सीधा आपने दिमाग में डालते तो 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोर्स किया, आप घर बैठ गए, एक दो सिंपल सिंपल चीजें स्टिच कर दी, तो ना तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे ना मैं सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपको इसका वैल्यू समझना है कि मैम ने जो ट्रेनिंग दिलवाई है आपको उसको कहां तक आपको लेकर जाना है। अभी 17 इयर्स मुझे सेम इसी फील्ड में हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने क्लासेस ली है, पैटर्न मेकिंग, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन, कैट की मैं क्लासेस लेती हूँ। तो मेरा मेन जो है वो टेस्ट स्विंग मशीन से रिलेटेड ही है। स्विंग मशीन मेरी एक्चुअल में फ्रेंड है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ। आपको नींद आ रही है? मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ। और ऐसे मैंने कितने ही जानों हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, तो आज के टाइम में अच्छे गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बुटीक फैशन स्टूडियो ओपन किया, बहुत अच्छा वो रीड कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट, आप क्यों? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन मैम ने सब सिखा दिया, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गार्मेंट में इम्प्लीमेंट करनी है, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा मेन शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपए में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1,000 रुपीज में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4,000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10,000 में भी मिल रही है। तो क्या रीजन इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे, बट जब भी आप कोई गारमेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गारमेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं, 100 रुपीज रखना चाहते हैं या 1000। 100 रुपीज के लिए हो सकता है आप चलता फिरता काम करें, हो सकता है कस्टमर एक बार ले लेगा, पर अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे, गारमेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है। तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है, और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा मैं आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से इस स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दिए तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया। उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आई, और एक गारमेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना। आजकल तो गारमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी, बट उस टाइम में वो नहीं थी, उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपकी टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने के कुछ एक मैं छोटा सा आपसे शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैम ने आपको दिखाया था, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए किसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होनी है आपकी, SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवरलॉक मशीन यूज करनी है ना। यदि गार्मेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की। वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो निट फैब्रिक होता है, ठीक है। तो वुमन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहाँ पर कौन सी सीम लगने वाली है ना, आप ये डिसाइड करेंगे और वो किस टाइप का डिजाइन है। तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होगी। आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली, एक क्वेश्चन कवर आप दो दिन में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है, आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके टाइम लॉसेस और काफी कुछ हो जाते हैं। तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे आपको मेन फोकस करना है। और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी, बहुत ज्यादा आप गुड़गांव सेंट्रल गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्री एरिया, उद्योग विहार मानेसर आप जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है। स्किल्ड मतलब क्योंकि मैं मुझे एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गारमेंट इंडस्ट्री में, मैट्रिक्स क्लोदिंग में, मुडलामा में, तो वहां असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं। तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं, उनका काम देखते हैं, सी बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं, इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं, उनको कोई भी पोस्ट नहीं होता, सिर्फ काम से निकला होता है ना। और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गारमेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा। जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग में यदि बात करो, एक मेन शर्ट, आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है, मेन शर्ट, हाँ जी मेन शर्ट आपने किया है, जिसने मेन शर्ट कर लिया ना, आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है। मेन शर्ट में सारी सीम क्लासेस यूज होती है, कैसे कॉलर अटैच करना है, कैसे पॉकेट अटैच करनी है, लेफ्ट सीन क्या होती है, आपकी कप कैसे बनाना है, पैकेट कैसे बनाना है, आप ये समझिए कोई भी गार्मेंट स्टिच कर सकता है। तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है। तीन घंटे। और किसी को कोई शेयर करेगा कितना? दो घंटे।
1: काम तो मैंने टाइम तो लगता है मेरे को थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेट ही नहीं कर सकता क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है।
1: जी मैम, मैं कोशिश करूंगी मैम टाइम मैनेजमेंट करने की।
0: और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा। यदि वो आपको नहीं पता हो, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लीज बैठिए। एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए। अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इम्प्रूव करना है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से, बहुत स्पीड से काम होता है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, है ना। यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए, स्पीड और क्वालिटी। तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है, 26 मिनट के आसपास। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। ये नहीं बताओ मुझे टाइमिंग का, क्वेश्चन कवर है, सिंपल क्वेश्चन कवर है तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट या 15 मिनट। यदि आप 10 मिनट में ही क्वेश्चन कवर स्टिच करते हैं तो 50 क्वेश्चन कवर को आप कैसे कितने टाइम में स्टिच करेंगे, तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन करा सकते हैं। यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं, दो तीन टेलर नहीं तो हो सकता है आप ही 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट, 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना। ये नहीं, बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपको उसमें एस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं, कैसा गार्मेंट है, उसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आप इस लेवल पे कर रहे हो जब आप बाहर शॉप भी लेंगे, हो सकता है रेंट पर हो सकता है टेलर हो, आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी। बहुत सारी चीजें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं। हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें, स्पेशली रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए। आज मौका मिला है। बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, बोल के नहीं आती, एकदम से आ जाती है, तो उसको पकड़ लेना चाहिए।
2: हाँ जी, मेरी आगे बुटीक के नाम की छोटी सी दुकान है, मैंने अभी डाली है पिछले साल से।
0: हाँ जी,
2: तो उसमें सिलाई भी खुद ही करती है, तो मेरे को ग्राहक बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं?
2: मैं अभी तो छोटा मोटा ही चल रहा है, तो आते हैं सिलाई करके देते हैं, छोटी मोटी
0: तो देखिए। यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर में आए, कस्टमर आए आपके शॉप पर तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में देगी कि क्या स्टिच किया है। सेकेंड थिंग डिजाइनिंग, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर 2 घंटे में फैशन चेंज होता है।
2: मुझे ज्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक में चीज साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज्यादा ध्यान है तो सिलाई का ही ध्यान है, ज्यादातर मुझे सिलाई का ही करना है, इसलिए आगे बुटीक नाम
0: बताया। सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसा डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिजाइन चाहिए। वो आपके पास आया ही इसलिए है कुछ नया डिजाइन देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिजाइन होते हैं माइंड में, होता है कि ऐसा गला चाहिए, ऐसे बाजू चाहिए, मुझे ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आप उनको बता दें, आप फोन को बताना है, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि आजकल यही फैशन चल रहा है मैम, आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर को रीड करना है। रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए,
2: मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जल्दी दूसरों को बताऊंगा।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को ही डिजाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर सेकेंड थिंग, कस्टमर किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं, आप लोगों को रीड करना पड़ेगा। कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर की आप भीड़ बढ़ेगी। तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कोई भी दो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो जैसे तो अभी मेरे पास ये लोग का तीन कस्टमर है, आपका नाम सुनीता है, आपका नाम सितारा है और आपका नाम खुशी है। तो ये तीन कस्टमर है आपके सामने और इनको आप समझिए कुछ स्टिच करा रहे हैं। आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच करा रहे हैं। आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच करा रहे हैं वो अपने माइंड में रखना है आपको। सबसे पहले जो कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आया है तो हमें पहले इसके लुक को समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं, फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गार्मेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। किस टाइप की फैशन, वो किस लिमिट तक वो जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है, एक इनको सूट स्टिच कराना है, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे। आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ, यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा, है ना। तो आप एक बार डील कर लीजिए, ये सबके लिए एग्जाम्पल है। प्लीज आप एक एक पॉइंट को, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहां से ना सुने, यहां से सुने और यहां से ना निकालें, यहां से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो
2: आपको कैसा सूट सिलवाना है, तो जैसे डिजाइन सिलवाना है तो आप डिजाइन बता सकते हैं, मतलब
0: हाँ,
2: तो जैसा आप बताओगे वैसा हम सिल
0: देंगे। पिछले तक आवाज आ रहा है, पिछले तक। देखिए मुझे ये लगता है यदि आप लोगों की टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ जाएगी, है ना। तो आपको टेंशन देनी है, इतना स्लोगी वो नहीं हुए हैं, तो प्लीज।
2: तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बताएंगे वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बना लेंगे।
0: आपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए?
2: जी ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन,
0: लोग की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ,
2: हाँ मतलब जो भी आती है मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है, और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे
0: आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब कस्टमर आपके सामने आते हैं, आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ आना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए। यदि उसने लूज डाला है
2: तो दैट मींस ऐसा ही बनाना है,
0: तो दैट मींस उसको लूज फिटिंग में चाहिए। यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर देंगे तो वो फिर कैसे आएगा, स्माइल करता हुआ या
2: गुस्से से?
0: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सर थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सकता है वो आपके मुंह पे मारती जाएगा, कपड़े क्या स्टिच कर दिया मेरे कपड़े वापस, ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे
2: नहीं, मैम मेरे साथ हुआ था ना ऐसे, एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का, तो गुस्सा कर रहे थे इतना टाइट कर दिया आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ऐसे बोला उन्होंने।
0: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये माइंड मैपिंग कर रही है, माइंड में देखना है कस्टमर को, देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है, टाइट पसंद है, वो देख के पता चल जाता है फिटिंग है ना। यदि हम इन कस्टमर की बात करें है ना, तो इनके लिए आपके डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी किस टाइप का उनको पसंद है ना। एज ग्रुप उसमें मैटर करता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपकी ड्रेस डिजाइन हो सकती है। अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे, इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे है ना। तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे, अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यदि ये कस्टमर है जो कि आपकी क्या एज 15 ईयर की है, यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ, इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ, यहाँ तक का गला बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए, उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो ऐसे ऐसे झुमके आप, तो क्या वो कस्टमर खुश होगा। हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिजाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस उसके ऊपर नहीं रख सकते, हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिजाइन करेंगे, तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है। बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें भी बतानी है कि देखो मैम ये फैशन में न्यू है, हम ये करेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा है। हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं
2: थोड़ा पॉइंट ये भी दे पाती हूँ,
0: कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है, ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता, कुछ डिफरेंट डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट बाजू के डिजाइन बनाना चाहता है। तो वो जो डिजाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिजाइन देगी और मेरे बजट के अंदर। समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें बहुत टाइम लगता है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उस टाइम पे टाइम की बात कर। समटाइम कुछ डिजाइन्स में हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो जहां ज्यादा टाइम लगेगा वहां आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। ओके एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइपिंग लगाते हो तो दोनों में सेम टाइम लगेगा नहीं, अलग अलग लगेगा क्योंकि इसमें पैटर्न लगी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा है ना। तो वो यदि आपके किसी डिजाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में, तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिजाइन में मैम आपको लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका, लेकिन आपके पास अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिजाइन मैं आपको बना के दूंगी, लोग आप लोगों से पूछे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, या बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर जिससे भी है जो भी एक्स वाई जेड है आप उससे बात करते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में जरूर रखना है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं, छोटे टेलर्स हैं आपके, वहां पर इस टाइप को आप डील कर सकते हैं। प्लीज हम थैंक यू सबसे पहले तो क्लैपिंग एंड टीम बच्चों के लिए खड़े हुए। अरे मुझे लगता है आप खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपका कॉन्फिडेंस ना, मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए, मैम मैं करूंगी। जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा।
3: अभी जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मुझे अपना जुनून समझ लो इस चीज के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हटके मुझे करना है उस चीज के लिए। तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था उन्होंने इसे कम्प्लीट करके दिया है, पर मुझे वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया, एक तो क्वालिटी में कोई वो नहीं है, चैलेंज क्या आया, एक तो कपड़े का जीएसएम का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज के लिए जो उनका रेट है। अगर मान लो शर्ट का रेट मुझे 143 रुपए देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ कई बार नहीं दे पा रही हूँ कि क्वालिटी में वो चीज क्या होगी कि वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए। तो उस चीज के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज के लिए, उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही उस चीज के लिए।
0: थैंक यू।
4: मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंज हर कोई फील करता है यदि हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें, तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है. फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए.
3: पहला ऑर्डर में नो प्रॉफिट नो लॉस में.
4: सेकंड, आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँ, मेरा ये कॉस्ट है, क्योंकि आपको अपना वैल्यू को भी शो करना है. जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे, और शो करना नहीं है वो आपके गार्मेंट में अपना दिखेगा, वो वैल्यू क्वालिटी आपके गार्मेंट में दिखेगा 100% वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास. और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जीएसएम के अकॉर्डिंग आपको देखा, तो इसमें सबसे मेन चीज है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए, इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से.
3: एक महीने पूरा सर्च किया मार्केट को, गांधीनगर, यहाँ तक कि कपड़े की क्वालिटी को, बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी है, स्पन है, उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फर्क नहीं पता लगा, इवन दुकानदार को भी फर्क नहीं पता लगा. एक शॉपर ने भी मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाया, मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में, तब मुझे कपड़े का जीएसएम समझ में आया उस टाइम पे.
4: बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अभी जैसे मैंने शेयर किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी आपने 90 डेज का कोर्स किया है, तो 90 डेज के कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है. तो दैट्स व्हाई चीजों के लिए जो है 6 मंथ के कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं, उसमें आपको नॉट स्विंग टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइंस क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं. और इन केस आपको कुछ इस टाइप के हर्डल्स आते हैं, तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में, अपना ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, एज ए गाइडेंस के लिए आप वहां भी आ सकते हैं. और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन, कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई हो, कुछ क्वेरी नहीं है? तो मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं. जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे वन, मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ, डे वन ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ, और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताना, क्योंकि आपने किस चीज में क्या ज्वाइन जो भी किया है, किस पर्पज से किया है. जैसे अभी मैम ने भी कहा कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरा करने के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं, तो सॉरी, इस टाइप की सीट्स आपने मुझे मिल रही है. तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है. आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है, नो, आप उससे आगे सोचिए, आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कैसे आप अर्न मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा. यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो देट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा. वेरी गुड, श्याम
5: बात बताइए. दो बच्चे मैं इसी वजह से घर से ज्यादा निकल नहीं पाती, तो इंस्टीट्यूट में ये इंस्टीट्यूट जब मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं 2 घंटे लगा जाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं 2 घंटे लगा जाती हूँ. लेकिन अभी जैसे काम हो गए हैं तो मैं घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे संभालना और मेरी एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी खोल रखा नहीं घर पे, तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि घर पे कोई ऐसा काम आए कि मैं घर पे बैठ के आराम से कर
4: सकती हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ तक इधर बैठी फीमेल का बात है या वुमेन की बात है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मैम, हम लोग सब इस चीज को फेस करते हैं. बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल गया हो, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, आपके टाइम आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा, आपको आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक और कितना? आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा। घर बैठे चीजें नहीं मिलेंगी, अब वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें, है ना, कैसे आप सेटिंग करें, वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है। हमें घर भी देखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है थर्ड क्लास में बच्चा पड़ता है, मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली भी संभालती हूँ, और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट है, उनको मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, बाहर जाना, इंडस्ट्री में जाना, एज ए आप लोगों के पास भी यहाँ शेयरिंग, हमें ऐसे भी जाना पड़ता है। तो एज ए अपने आपको आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीजें आए, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। मीन वाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर बैठे, जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? दृढ़ निश्चय। इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज है,
2: प्रैक्टिस करके।
4: यस, आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया, एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। तो वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को, यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है, तो आपको स्किल इम्प्रूव होता है ना। तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेके आप अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। इस बेटे लास्ट में आपको कही है, इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं आप, कुछ पूछना आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है। इधर से पीछे, मैं तो अपने बच्चों को यू नो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती हूँ, यदि वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे। बोलना बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को बताना जरूरी है। हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए, कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए। हाँ जी, ये आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो आप क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उसी चीज को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू करते हैं? और आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मार लेते हैं। गाँव में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिजाइनिंग रिटेल, तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फैशन डिजाइनिंग को लोग सिर्फ अच्छा दिखने में आई थिंक सोचते हैं, बट फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कपड़ा कैसा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, कैसे उसको कलरिंग होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हो गई, आपको बहुत सारी चीजें उसमें तो इसमें फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा कोर्सेज भी है, वो भी बहुत ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा। यदि मैं स्ट्रेंथ बोलूं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है दैट इज EMT कोर्स के लिए आती है। EMT मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी, मीन्स सबसे ज्यादा यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात यदि हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है इसमें हमें 100% बच्चों को हम प्लेसमेंट दे पाते हैं। बट यदि फैशन डिजाइनिंग में जब बच्चे करते हैं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा सर हम हर्डल्स करते हैं। या तो बच्चे अपने बुटीक ओपन कर सकते हैं, फैशन स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, बट एज ए डिजाइनर यदि इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहां पर बहुत कम पोस्ट होती है एज ए डिजाइनिंग के। तो यदि आप डिजाइनिंग यदि अपना बुटीक अपना फैशन स्टूडियो या फिर इस टाइप का कुछ अपना डिजाइनर ब्रांड ओपन कर सकते हैं, तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें काम हो रहा है, उसमें भी आप ला सकते हैं। तो यदि आप गुरुगांव सेंटर में करेंगे तो इधर IIFD है, इंकर यूनिवर्सिटी है, आंसर यूनिवर्सिटी है, इधर पैराग्राइन डिजाइन सेंटर है, वो भी मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। इवन काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां पर फ्री कोर्सेज भी, नॉट फ्री, स्पॉन्सर्ड कोर्सेज, सीएसएफ के अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेड अनपेड दोनों।

0: अभिदा और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और
1: बिल्कुल
0: ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल। वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के खर्च की। पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूं घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था। बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया। काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के जरिए ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहां फर्स्ट आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अपन लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया। और मैंने ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही कमा भी रही हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: जी मैम,
0: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
1: जी मैम,
0: और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अविदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अविदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
1: जी मैम,
0: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अविदा की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी। तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे।
2: मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई फर्क है, जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां ला के दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम

0: से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है। पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
1: थैंक
0: अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: मैम। ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी है जिनकी फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उनका, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने और अपने पेरेंट जो

0: इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी और जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: मैम बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे, तो अभी हमें रीड इंडिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग बूट स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग बूट स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है, तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए, लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30-30 चुन्नी बांटी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हूँ, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग खुल जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां
1: वेरी गुड, बहुत
0: कर रही
1: अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं
0: हैं।
1: बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिजाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आविदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया, तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं थोड़ा बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस ये कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, धोती शलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी, कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अभिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीड के जरिए हूँ और मैं रीड के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीड इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीड इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीड इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ। और अपने आप पूरे करूं, अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो जो उसका फायदा है, वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ये सेशन हमें जागरूक करता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे एक डायरेक्शन देनी है, और वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बार हमें आदत पड़ जाएगी छोटे छोटे स्टेप्स लेके, अगर हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है हमारी हमारी जिंदगी तो सुधरेगी सुधरेगी, उसके साथ जो आसपास लोग हैं हमारे, उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। और मैं बहुत ज्यादा कोई टॉपिक्स जो चुनती हूँ, मैं किसी बुक से या बहुत हाई लेवल की बात नहीं करती हूँ। ये जो सेशन है मेयरली है कि हम एक कन्वर्सेशन मोड पे आए और हम अपनी जिंदगी को पहचाने और अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, और उसी से जो आउटकम है, जो इसका निचोड़ है, वो लीडर है, कि हम अपनी जिंदगी में लीडर बने। लीडर का रोल मैंने बहुत पहले भी बताया था, लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है। मैनेजर क्या करता है कि एक टर्म डिक्टेट कर देता कि आपको 10 बच्चों को पढ़ाना है, बस पढ़ा के मेरे को बता दो आपने 10 बच्चों को पढ़ा दिया। पर क्या आपको पढ़ाना आता है? आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? आप क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? आपको कोई इनहिबिशंस हैं? आपको क्या सामान चाहिए पढ़ाने के लिए? आप किन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? वो लोग क्या अपनी जिंदगी में करेंगे? ये सारी बातें अगर हम समझते हैं और अगर हम पूछते हैं, तो जो मेंटरशिप होती है, जो लीडरशिप होती है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो जितने भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो जानते हैं कि रीट इंडिया का वर्किंग पैटर्न क्या है और हम कैसे काम करते हैं। हमने कभी भी वर्किंग पैटर्न में डिक्टेटरशिप नहीं लाया है कि हम डिक्टेट नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये काम हमें करना है और ये काम हमें आपके सपोर्ट से करना है, और वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज आप इस चीज को समझिए, हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं और आप लोग सेंटर्स में हैं। हम कनेक्शन करते हैं जो हमें फंडिंग देते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, वो फिर हम आप लोगों को कहते हैं करने के लिए। और अगर हम खाली कह के छोड़ देंगे, उस काम का रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम आपको छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी अंदर से जिज्ञासा बढ़ती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपका क्या जुड़ता है? एक्शन, है ना? जैसे आपके दिल में एक बात आई कि हाँ रीट इंडिया ने बोला है कि 25 लोगों को कंप्यूटर सिखाना है, राइट? अब कंप्यूटर में क्या सिखाना है वो भी रीट इंडिया ने बता दिया, कंप्यूटर्स भी रीट इंडिया ने दे दिए, और लेसन प्लान्स भी दे दिए, प्री असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए, पोस्ट असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए। पर उस जो सोच है, जो आपके दिल में है, जो आपके हार्ट में है, उसको एक्शन में कौन उतार रहा है? आप लोग उतार रहे हैं ना? जब आप उसको एक्शन में उतार रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपके दिल में है, उसको जब आप एक्शन में उतार रहे हैं, तो उनका 100% सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कह दिया हेड ऑफिस ने, वो लोग तो वहां बैठे हैं, यहाँ पे हमें ऑर्डर दे देते हैं ऐसे करने के लिए। नहीं, आपको ये प्रिविलेज समझना चाहिए कि हेड ऑफिस की मजबूरी है, वो हर समय आके यहाँ पे नहीं हमारे साथ बैठ सकते, तो वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ट्रेनिंग्स करिए, आप हमारे बिहाफ पे लोगों को सक्षम करिए। तो हमने क्या किया, रीट इंडिया ने आप लोगों को एक हायर पेडेस्टल पे रखा। एम आई राइट? आप समझ रहे हैं? ये हमारी सोच है, जो आपको समझना, आपको इम्बाइब करना, आपको हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो आपको हमने एक ऐसे पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया जहां पे आप एक हायर लेवल पे आ गए हैं, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है दूसरों को सक्षम करने की। अब हम खाली अगर यही सोचे, छोटी सोच रखे कि हाँ भाई 2 घंटे सिखाना है, सिखा देंगे, सीखा नहीं सीखा बात तो एक ही है, नाम तो चला ही गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गई, ये एक सोच है। दूसरी सोच क्या है, नहीं मुझे हेड ऑफिस से ये मैसेज आया है कि मुझे इन लोगों को सिखाना है, और मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से, अपने हार्ट और अपने एक्शन को इतना जबरदस्त सिंक्रोनाइज कर लो कि क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट खाली हेड ऑफिस को नहीं दिखाना है, ये आप मिथ से निकल जाएं। हेड ऑफिस तो कर लेगा अपने आप, क्योंकि हेड ऑफिस ने फंड रेज करा है तो वो करेगा ही करेगा, उसकी अपनी लेवल की कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट क्या है, आपकी पहचान क्या है, समुदाय है, लोग आपके बारे में आपको पहचानेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके दिल के साथ जुड़ेंगे, आपकी क्षमता को पहचानेंगे, और 10 लोगों के बीच में खड़े होके आपको सलाम करेंगे, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप इस तरीके से इन सब चीजों को सोचिए। जो लोग मेरे इस थॉट प्रोसेस से सहमत है, प्लीज आप चैट में यस लिख दीजिए फटाफट, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं खाली भाषण दे रही हूँ, मैं लीडरशिप का सेशन नहीं ले रही हूँ। आप सहमत हैं जो मैंने कहा है, डिफरेंस आप समझते हैं जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप रीड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। रीड इंडिया में अगर आप, मैं लीडर हूँ, मेरा नाम गीता है, तो गीता की पर्सनालिटी के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना है। गीता के दिल में क्या है, स्मिता के दिल में क्या है, रीड की टीम के दिल में क्या है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके जब आप बात करेंगे कम्युनिटी में, तो ये तो हम आपको अपने लेवल से ऊपर उठा के बोल रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी है। अब मैं देख रही हूँ, अगर आप इतनी इतनी दूर से दयाराम लिख रहे हैं, यस मैम, तो दयाराम तो बारन में है, अब मैं तो ट्रेनिंग देने बारन में नहीं जा सकती, या मेरी टीम तो नहीं जा सकती है ना। तो हमने आपको एक हायर पेडेस्टल दे दिया कि हमने इतना विश्वास आपके ऊपर जमा लिया कि यस हमारी टीम कर सकती है, और हम आपके गुण गाते हैं डोनर के सामने, बोलते हैं कि नहीं हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम जो भी उनको बोल रहे हैं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर दी। और आप लोग, जब मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूँ, मैं सबको तो नहीं देती हूँ जो यहाँ पे आते हैं, या जब भी मैं सेंटर में जाती हूँ और जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, आपका जोश देखती हूँ, आपकी कमिटमेंट देखती हूँ, एंड दैट इज सच ए फुलफिलिंग मोमेंट फॉर मी टू नो दैट देयर आर लीडर्स इन द विलेजेस हु आर ट्रांसफॉर्मिंग। हम एक दूसरी स्टेटमेंट अभी लिखते हैं हर एक जगह पे, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, मतलब कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन समाज बना रहे हैं अपने इंटरवेंशंस के द्वारा। पर जब ये स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर हमारा पीछे काम ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, आप बताओ। और काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो। आपके बिहाफ पे मैं लिखती हूँ कि रीड इंडिया इज कमिटेड फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है, हमारे हर एक पेज पे टैगलाइन जाती है इस चीज की, मैं किसके बिहाफ पे लिख रहे हूँ, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि हम, हमारे बिहाफ पे आप सेंटर्स में काम कर। एम आई राइट? यहाँ तक किसी का कोई कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, मैं आगे चलूँ, कोई एक अपना ऑन करके बोल सकते हैं कि यस मैम यू कैन प्रोसीड फर्दर।
1: यस मैम,
0: यस
1: आगे बिल्कुल समझ में आ रहा है।
2: मैम,
0: ठीक
2: बहुत अच्छी तरीका।
0: है ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आप लोगों का और हमारे करेक्टरिस्टिक पे आता है, हमारी पर्सनालिटी पे आता है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है कि हम क्या है, बहुत नोबल हैं। नोबल इन द सेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नोबल को, कि हम बहुत वाइज हैं, हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? जब हम एक सुप्रीम नोबिलिटी पे आ जाते हैं तो हमारे में हम्बलनेस आ जाती है, और जब हमारे में हम्बलनेस आती है तो हम समाज में काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार आप सुनते होंगे ये स्टेटमेंट्स कि ये बंदा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ये तो बस अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। किसी और को हम कहते हैं कि ही इज सो मच आउट गोइंग, वो तो दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है और दूसरों के बारे में ही करता है हर कुछ, जो भी करता है दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो मैं आप लोगों को सबको सेकेंड लेवल पे देखती हूँ, मतलब क्या है, विजुअलाइज दैट यू पीपल आर एट द सेकेंड लेवल, क्योंकि आप में सुप्रीम नोबिलिटी है, आप नोबल हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये लीडरशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, तो आप नोबल हैं, आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये आपको हैबिट पड़ गई है, ये प्रोग्राम्स। मैं आज आपकी पर्सनालिटी आपके सामने रख रही हूँ, आपको आदत पड़ गई है सोचने की हमेशा दूसरों के बारे में। आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनको किस लेवल तक ला सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा, आपका ये सब करने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। क्या आती है? एक आत्मविश्वास आता है कि यस आई कैन डू। ये जब आत्मविश्वास आता है आप में, तो नोबलनेस और स्ट्रेंथन हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप तो, आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि मैं तो दूसरों के लिए ही हूँ, मैं तो दूसरों के लिए ही भगवान ने मुझे इस धरती पर उतारा है और मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ। मैं साथ में ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ को नहीं देखना, हम हेल्दी होंगे, हम स्मार्ट होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, हमारे में विजडम होगी, हमारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। बट यस, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जब तीसरी बात, इसका जो आउटकम आता है नोबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, तो हम क्या, मतलब कि लोग हमें क्या कहते हैं, कहते होंगे आप सब लोगों को, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी हैं, कहते हैं, जरूर कहते होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई नहीं कहता आभारी, तो आप प्लीज बताएं, या कहते हैं तो वो भी बताएं, कोई भी ऑन करके बताएं कि हाँ हमें कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं।
2: जी नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी, मीना जी बोलिए।
2: जी मैम, मेरे से तो पता है ना, कितने सारे लड़कियों ने महिलाओं ने कई बार बोल दिया कि आपने अगर हम लोगों की ये चीज नहीं करवाते तो शायद हम सक्सेस नहीं होते, तो आपका
0: हाँ
2: जितना भी धन्यवाद करे वो कम है।
0: हाँ तो आ गया ना, ग्रेटफुलनेस आ गई है ना। और जब ग्रेटफुलनेस आती है लोगों के मन में, तो हम और भी नोबल बन जाते हैं, हम और भी हम्बल बन जाते हैं, फिर हमारा दिल करता है हम और करें, हम और लोगों के बीच करें, और हम ये अपनी लाइफ का एक मिशन बना लें, है ना। तो
2: जी मैम,
0: ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ही आज मेरा सेशन है, क्योंकि आपको समझना है कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर, है ना। तो जब हम सच्चाई से काम करते हैं, मैं थर्ड स्टेप आपको बोल रही हूँ, जब हम पूरी सच्चाई से काम करते हैं और हमारे मन में डेडिकेशन है और हम पूरी अपनी सोच समझ से और विजडम से काम करते हैं, तो हमारे से हम क्या बोलते हैं, बहुत कंपैशनेट बन जाते हैं। तो कंपैशनेट का मतलब होता है कि हम आसपास के कंपैरिजन्स को नहीं देखते, है ना, कंपटीशन को नहीं देखते। हम इतने कंपैशन हो जाते हैं कि हमारे में डे एंड नाइट एक इग्निशन होती है कि हमें और करना है, और करना है, और करना है। हम और लोगों को रीच करेंगे, और लोगों के साथ काम करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो जो अंदर सोल है, वो एकदम प्योर हो जाती है। वहां से डस्ट हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। तो हमारी जो प्योरिटी है विद इन आवर हार्ट, मैं फिर हार्ट पे वापस आ रही हूँ, हार्ट से मैंने शुरू करा था। हार्ट हमें एक्शन करने के लिए प्रेरणा देता है, हार्ट और एक्शन हमारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम नोबिलिटी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ आती है और हम ग्रेटफुल बन जाते हैं दूसरों के लिए जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी उनको सर्व करने के लिए। और जब हम पूरी सच्चाई से चलते हैं तो हमारे में कोई लिमिट नहीं होती, जो हमारे में उत्साह आता है, इतना सारा उत्साह आ जाता है करने के लिए, हमारी विजडम डेवलप हो जाती है, हम कंपैशनेट बन जाते हैं, और इन सब स्टेप्स का निचोड़ होता है कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बिल्कुल प्योर बन जाती है। वहां से डस्ट हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं भी नेगेटिव बोलती हूँ किसी के बारे में, कोई बात अच्छी नहीं लगती है या नहीं मुझे पसंद आती, पर वो मैं किस किस से बोल रही हूँ, अपने विजडम से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच में वो गलत है ना। तो हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। दूसरा, इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है ना। नेगेटिव चीजें हमें किस तरफ लेके जाती है, मतलब कि हमारी सोच जब नेगेटिव जाती है तो हमें ये लगता है कि ये सब कुछ ना एक खटास में बदल रहा है ना। पर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें एक मिठास में कन्वर्ट कर दे, है ना, तो हम खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आने के लिए ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी। हम अपने आप को जब कहते हैं कि हम लीडर्स हैं, तो हमें ये सब चीजों को समझना है, और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर द लीडर्स। व्हाई यू आर द लीडर्स? बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी। मैं तो आपके सामने आपके चिट्ठे खोल रही हूँ, जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो फिर हम कहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, हम कहते हैं ना लोगों के सामने, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। बहुत लोग हमें भी कहते हैं कि यू आर एम्पावर्ड, और फिर हमारा मिशन क्या बन जाता है, हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है, दूसरों को भी उस लेवल तक लेकर आना है कि हम उनकी खुशी की तरफ चलें। अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जिंदगी की डेडिकेशन जो है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि हम अपनी जीवन की पर्सनालिटी को इस तरीके से ढाल लें कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए करें, और उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। देखिए कितना बड़ी बात है ये, कि जब हम अपनी सोच, अपने एक्शन, अपनी विजडम, अपना करेज, अपना अपना थॉट प्रोसेस को हम अपनी सोल को क्लींस करने के रास्ते पे चल जाते हैं तो हम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं और फिर जो सुप्रीम पावर है वो हमारी खुशी के लिए सोचता है। और इस सारे प्रोसेस में हम अपने जो कर्म हैं उनको भी अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं, है ना। जब हम कर्म की बात करते हैं हम उनको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं तो हम इंग्लिश में ये बोलते हैं कि हम कॉजेस क्रिएट करते हैं। कॉजेस मतलब कि मैंने मैंने आपको कुछ पढ़ाया, ये मैंने कॉज क्रिएट करा, है ना। और उसका इफेक्ट क्या आएगा कि मेरी लाइफ में कुछ एक अच्छा होगा जो मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है अच्छा मेरे पास, बट क्योंकि मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा आया। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बहुत हर मोमेंट पे होता है, हर सोच के एक्शन पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 20 दिन में अच्छा कुछ दान कर दिया तो मेरे पास धन आ जाएगा, नहीं। हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं हमारी डे टू डे जिंदगी में, हम कॉजेस क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता है। तो हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, या वो छोटी हो जाती हैं, या बिल्कुल हमारी जिंदगी से हट जाती हैं। तो लीडरशिप का जो मैंने पर्सनालिटी बताई है आपको, अगर हम ऐसे लीडर्स बन जाएं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बहुत सुधर जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आ जाता है और हमें अपनी जिंदगी को चयन करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? तो हम जब अपने कर्मास को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं, है ना। जब हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं दूर तो हमें रोशनी का एहसास होता है। रोशनी ये नहीं जो हमें लाइट से मिल रही है, रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। यू गेट अप विद योर फ्रेश माइंड, यू गेट अप विद योर फुल एनर्जी कि हाँ मुझे आज अपने आज इस दिन को मैंने इस तरीके से जीना है। एक बहुत अच्छा मैसेज अभी मैंने किसी को फॉरवर्ड करा था, मैंने पढ़ा था, वी रन आर डे और डे रन्स अस। मतलब कि क्या हम अपना दिन खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे चलाना है, या दिन डिसाइड करता है कि हमें अपना टाइम कैसे पास करना है। तो ये जो इस दोनों चीज का ये डिफरेंस है वो आज मैंने निचोड़ आपके सामने रखा कि मुझे अपना दिन कैसे पास करना है वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आज क्या-क्या करना है अपनी जिंदगी में, या फिर जो दिन है वो मेरे पे इतना हावी हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है। और रात को हम शुक्र करते हैं भगवान का, भगवान का मतलब कि हम कहते हैं थैंक गॉड रात हो गई अब तो सोने का टाइम। नहीं, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना दिन कैसे चलाना है। और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो लीडरशिप की ट्रेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा दिन हमारी मुट्ठी में है, हम डिसाइड करते हैं हमें अपने दिन को कैसे चलाना है। डिफिकल्टीज हर एक की लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आती हैं, पर विद प्योरिटी विद पॉजिटिविटी हमारे में इतनी विजडम डेवलप हो जाती है कि वो चैलेंजेस हमें छोटे लगते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं अपने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मैंने अभी किसी बुक में पढ़ा था, वो ये था, रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन विच इज सिंसियर। जो बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, जो औरतें आपके पास सीखने आती हैं, मैं वही एग्जाम्पल लूंगी, वो एक सिंसियरिटी से आती हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सिंसियर है और कौन जस्ट टाइम पास करने आ रहा है। आपकी अपनी इंटेंशंस और आपकी अपनी अटेंशन, दोनों इंटेंशन भी और अटेंशन भी उन पे ज्यादा फोकस करती है जो सिंसियर है ना। और फिर जब आप उनको रिस्पॉन्स करते हो वो विद अटमोस्ट सिंसियरिटी से करते हो। एम आई राइट? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं यहां बैठी हूं पर मुझे पूरा पता है कि आप किस तरीके से काम कर। मैं आज आपकी पर्सनालिटीज का चैप्टर आपके सामने खोल के रख रही हूं। एम आई राइट? कोई भी बोलेगा कि जो मैंने ये पॉइंट बोला है रिस्पॉन्डिंग टू सिंसेरिटी विद सिंसेरिटी यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। एम आई राइट?
3: जी मैम, जी मैम।
0: कौन बोल रहा है?
4: यस मैम।
0: हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि

हिस्सा बन जाती है। ये बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं, हाँ हम कंप्लेन मोड से कि उसने ऐसे किया, वो सुनती नहीं है, वो खराब है, वो ये है, उससे हम एक करुणा हमारे मन में आ जाती है। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, भगवान उसको भी अच्छी बुद्धि देगा, सक्षम बुद्धि देगा, अच्छी सोच देगा। हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, करुणा की करुणा आ जाती है हमारे दिल में, हमारे हमारे दिल में उसके लिए दया आ जाती है कि हम फिर हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान इस इंसान को सक्षम बुद्धि दे दो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि हम इंस्टेंटली कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोझा बोला तो उसका हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो जो कर्मा थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की, वो हमें हर स्टेप पे गाइड करती है, वो ही हमें लीड करती है कंप्लेनिंग टू कंपैशन मोड में आने के लिए। तो हम इस तरीके से जब कंप्लेनिंग मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, तो हम हर एक चैलेंज को ओवरकम करने की पावर रखते हैं अपने। हम कहते हैं देखो पावर सब में होती है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, किसी की लाइफ में जो चैलेंज आता है ना, वो फाइटिंग मोड से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम द फाइटर, आई कैन फाइट, बट फाइट कैसे करना है? फाइट गाली गलौज से करना है, या आर्ग्यूमेंट से करना है, या हमने उसको करुणा से रिजॉल्व करना है? देर इज अ डिफरेंस। ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है, जिसको ये पर्सनालिटी का ट्रेट समझ में आ जाता है ना, उसकी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं अपने आप। और ये जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, सबकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं, पर उन सरकमस्टांसेस को क्या हमने पहाड़ बना के अपने सिर पे रखना है, या उसको कंपैशन से, विजडम से रिजॉल्व करके अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो ये जिंदगी की गाड़ी जो है, नाव जो है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, तो हमारे में एक कन्विक्शन आ जाती है। कन्विक्शन क्या होता है कि एक दृढ़ता आ जाती है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना है, जिससे हमें भी खुशी मिले। अगर हम दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करेंगे तो हमें भी खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है। इफ वी थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स, वी गेट हैप्पीनेस, वी गेट सेटिस्फेक्शन। तो वो एक हैप्पीनेस कोई हम मार्केट में तो खरीदने नहीं जा सकते, जितना भी पैसा हो खुशी हम नहीं खरीद सकते। खुशी पाने के लिए ये जो आज मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी से आप खुशी पा सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट, एंड यू हैव टू बी वेरी विजनरी ऑल्सो, क्लियर विजन। कहीं पे भी झूठ का साथ नहीं, कहीं पे भी किसी को डाउन करने का हमारी सोच नहीं है, हम सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बट कोई हमें ये ना समझे कि हम वीक हैं, राइट? हमारी जो अच्छाई है वो वीकनेस के जरिए दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम अच्छे भी हैं, हम स्ट्रांग भी हैं, हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हम दूसरों की बातों में आने वाले नहीं हैं, और इस तरीके की पर्सनालिटी में हमें एक विजडम डेवलप होती है कि हम दूसरों को अच्छे से पहचान पाए। अगर दूसरे गलत भी हैं तो हम सोचते हैं

0: हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों खराब करें? हम अपने कर्मास में क्यों रेड स्पॉट्स लगाएं? अगर वो ऐसा है तो उसके कर्मास उसके साथ है, मेरे कर्मास मेरे साथ है। मैं टिट फॉर टैट के सर्कल से बाहर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब मैं एक 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगी जो मैंने बुक में ही पढ़ा था, किसी होली बुक में ही पढ़ा था। सब लोग साई, मैंने साई बाबा की बुक में पढ़ा था, साई सच्चरित्र में। ये बहुत बड़ा टॉपिक आता है, एक चैप्टर 39 है जो साई बाबा को मानते हैं और साई सच्चरित्र पढ़ते हैं। उसके 39 चैप्टर के लास्ट पेज में लिखा हुआ है, वो मतलब कि अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ना एक मिथ में रहते हैं। वो मिथ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। हम जब ये सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं, इंसान क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ना हमारी बॉडी है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है। पर हम बॉडी के बियॉन्ड तो सोचते ही नहीं है, बॉडी तो जानवरों की भी होती है, बॉडी तो कीड़ों मकोड़ों की भी होती है। पर भगवान ने हमें क्यों एक हायर पेडेस्टल पे रखा है? क्योंकि हमारे में एक आत्मा भी है, एक आत्मा भी है, और वो आत्मा जो मैं सोल की बात कर रही हूँ, वो सोल जो है वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान हम ना अपने नाम और अपनी बॉडी से करते हैं, पर हमारी असली पहचान क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल, वो कितनी प्योर है, उस पे कितना डस्ट लगा हुआ है, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, कितना हम दूसरों के लिए सोचते हैं, कितना हम अपने लिए सोचते हैं, कितना हम लोगों को माफ कर देते हैं, कितना हम लोगों की गलतियां पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये डिफरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। भगवान क्या है? किसी ने भगवान को देखे? जिसने देखे प्लीज अपना अनम्यूट करके यस बोल दीजिए, और जिसने नहीं देखा वो नो भी बोल दीजिए। किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने देखा है भगवान को?
1: मैम डेली देखते हैं,
0: हैं
1: डेली देखते हैं। देखो वो
0: आप?
1: बॉडी से नहीं दिखता, पर मन की आंखों से दिखता
0: यस, तो
1: है जो
0: सोल की,
1: सच।
0: सोल से दिखता है, हम फील करते हैं उसको, हम गुरुजी को देखते हैं जो
1: जी मैम,
0: बॉडी फॉर्म में हमारे सामने आए। पर उन्होंने भी यही बोला कि मेरे मेरे को कितने लोग समझ पाए, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि कितने लोगों ने मुझे समझा, कितने, कोई लोग मुझे भगवान कहते हैं, कोई लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई लोग मुझे कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारा, हमारी सोल, हमारा मतलब कि वो, ये इसका निचोड़ ये है कि भगवान, दुनिया और इंसान एक ही है। कोई भगवान हमें नजर नहीं आ रहा। भगवान ने तो ये बोला है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है,
1: यस
0: उस
1: मैम, यस
0: सोल को नर्चर करने की जरूरत है, उस सोल को पहचानने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने एक्शंस निर्भर करने की जरूरत है। उन एक्शंस को हम किस तरीके से करें कि उस सोल पे चोट मत पहुंचे। एम आई राइट? तो फिर क्या हुआ? भगवान, दुनिया और जो हम इंसान हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही है। पर डिफरेंसेस किसने क्रिएट करे हैं? हमारी सोच ने और हमारे एक्शन ने। बस दो ही चीजें हमारी लीडरशिप में काम आती हैं, एक हमारी सोच और एक हमारा एक्शन। हमें वो आसमान पे भी पहुंचा देता और मिट्टी में भी मिला देता। बस इनको पकड़ के हम चलेंगे तो हम बहुत हाई लेवल के लीडर्स बन जाएंगे। क्योंकि लीडरशिप क्या है? डूइंग फॉर अदर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, दैट इज द स्टेटमेंट। व्हेन वी से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हमारा सिर अपने आप झुकता है। और अगर हम बोलते हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो हमारा सिर ऊपर करके।